एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आज बृहस्पतिवार है, सक संवत 1948 आश्विन माह की तिथि 23, तदनुसार अक्टूबर 15 ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपये होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. PM Modi will on 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. PM will also address the gathering on the occasion. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Program for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi in New Delhi. The National Social Assistance Program has been renamed as Pradhan Mantri Samajik Sahayata Yojana. Mr. Vaishnav said the assistance under the Disability Pension Scheme will be 375 rupees for beneficiaries up to the age of 79 years and 625 rupees for those aged 80 years and above.
3: The eligibility threshold for disability pension has been reduced from 80% to 40%. This means that persons with disabilities with a 40% disability will now also be eligible for the pension. Earlier, disability pension was provided only to individuals above the age of 18. Now, persons with disabilities will be eligible for the pension from birth. The number of beneficiaries is expected to increase significantly, with approximately 27 lakh persons with disabilities expected to benefit under this pension scheme. The total number of beneficiaries will rise to around 3 crore 20 lakh.
2: Pension schemes for senior citizens and widows as well as the family benefit scheme will continue in their existing form. The union minister said the government has also given nod to the strategic restructuring of IDBI Bank. PM Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi today. The PM will also address the gathering on the occasion. India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. The Delhi government has announced a payment of 1,370 rupees to students of Municipal Corporation of Delhi schools through direct benefit transfer. In this regard, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that over 70 crore rupees was released yesterday through DBT for uniforms and school bags for more than 5 lakh MCD school students. On this occasion, she also inaugurated educational facilities such as 10 AI and robotics labs, 1,500 printers, signs on wheels and 60 Chromebooks. The Department of Agriculture and Farmers Welfare will celebrate the national level celebration of Mahila Kisan Divas 2026 in New Delhi today to recognize the women's contribution to Indian agriculture. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that women, being an integral part of India's agricultural system, play several pivotal roles from sowing, transplanting and harvesting to livestock management, seed conservation and natural resource management. Indian Embassy in Riyadh has urged all Indian nationals to continue to follow local authorities' instructions, stay indoors in case of aerial attack and refrain from circulating videos or news related to ongoing events in view of the current situation in Saudi Arabia. In a fresh advisory, the embassy informed that two Indian nationals who were injured in the Riyadh airport attack on 10th of October continue to remain in ICU. One Indian national has been shifted from ICU to high dependency unit. Four more Indian nationals continue to receive medical care in normal ward and one person was discharged from the hospital. Flight operations continue to remain suspended at King Khalid International Airport in Riyadh. Flight operations at Dammam, Jeddah and Medina continue with some disruptions. Indian carriers have suspended flights to and from Saudi Arabia until 17th of this month. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the fourth T20 international in Hyderabad last night. Chasing a target of 248 runs set by West Indies, India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was the top scorer with 56 runs. For West Indies, Kemo Paul scalped 5 wickets. Earlier, put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in stipulated 20 overs. West Indies captain Shea Hope scored unbeaten 102 runs off 50 balls. Shea Hope was adjudged the player of the match. The 5-match series is now levelled at 2-2. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं शोभना राव और मालिनी लंबियार।
5: टू टू सिक्स

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थी शोभना राव। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, जगजीत सिंह के स्वर में।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण जगजीत सिंह के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे मृणाली आखुरी के स्वर में। सुबह के 7 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रादेशिक समाचार। आप सुनेंगे दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे दोपहर के 2:55 पर आकाशवाणी रांची से। 3 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम के 4 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 4:02 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। शाम 5 बजे का समय होगा मुख्य समाचार का आकाशवाणी रांची से। शाम 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम के 5:05 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज आप सुनेंगे युगल गीत। शाम के 5:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम के 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी शाम के 6:02 का समय होगा बांग्ला कार्यक्रम सातरंग का। शाम के 6:30 का समय होगा संथाली कार्यक्रम का। शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से ही सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:15 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके पसंद। शाम के 7:30 का समय होगा किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसमें आज चर्चा होगी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और खेत की तैयारी। उसके बाद आप सुनेंगे हो लोकगीत बेलमती माई हंसता हो और साथी को। मौसम की जानकारी के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे उड़िया लोकगीत, कलाकार होंगी सुरोबी पान और साथी। रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9 बजे। रात्रि के 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 बजे आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं सुगम संगीत मृणाली आखुरी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत मृणाली आखोरी के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

पेश है कार्यक्रम जोहार चायबासा। कार्यक्रम जोहार चायबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म आरजू के इस गीत से, सोनू निगम के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अभी आपने सुना यह जरूरी संदेश। इस संदेश के बाद आपको सुनाते हैं अगला गीत फिल्म अपनापन से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अभी आपने सुना फिल्म अंधा कानून का ये गीत आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चाईबासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अवतार से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, अनुराधा पौडवाल और बाबू सुप्रियो की आवाजों में फिल्म ढाई अक्षर प्रेम की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म छोटा सा घर का ये गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चौहार चायवासा। ये आकाशवाणी का चायवासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5,00,000 से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
5: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
6: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
5: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
7: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी लाहौर के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
5: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
8: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
3: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
10: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य

0: खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: Anil Tiwari, a resident of Gautam Buddha Nagar, said that RERA has enhanced transparency between developers and buyers. He added that regulatory framework has encouraged builders to commence projects on time and enabled home buyers to receive possession of their homes as scheduled.
2: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा हैज हेल्प्ड इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन डेवलपर्स एंड बायर्स व्हाइल प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी बायर्स। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी न्यूज, लखनऊ।
3: As Panchami sets the stage for the main festivities, Bengal is ready to welcome Goddess Durga with devotion, grandeur, and the unmistakable spirit of togetherness. Here is a report from a Kolkata correspondent.
4: West Bengal is gearing up for Durga Puja as Panchami brings the festive excitement to a peak. Across Kolkata and other parts of the state, beautifully decorated pandals, dazzling lights and artistic idols of Goddess Durga are giving the streets a festive look. Around 57,500 Durga Pujas are being organized across West Bengal this year, including more than 3,300 in Kolkata alone. From grand theme-based pandals to traditional community and household worship, the celebrations showcase Bengal's rich cultural heritage and artistic creativity. Thousands of people have already begun visiting pandals, while crowds are expected to grow further over the coming days. Police and civic authorities have stepped up security, traffic management and crowd control arrangements to ensure safe and smooth celebrations. Shandipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
3: India Meteorological Department IMD has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab, Delhi, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. Weather agency has forecast heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh and south interior Karnataka today. According to IMD, East Rajasthan, Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttarakhand and West Uttar Pradesh will experience thunderstorms accompanied with hailstorm today. In men's cricket, West Indies defeated India by 24 runs in the fourth T20 International in Hyderabad last night, chasing a target of 248 runs set by the West Indies. India scored 223 for 9 in 19.3 overs. Sanju Samson was the top scorer with 56 runs. Tilak Varma scored 43 runs. Arshdeep Singh retired hurt with 5 runs. For West Indies, Kemo Paul scalped 5 wickets. Earlier put into bat, West Indies posted 247 runs for the loss of 3 wickets in the stipulated 20 overs. The 5-match series is now levelled at 2-2. The last match of the series will be played on the 17th of this month at the M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
5: Thank you, Abhishek. The Asian Age, quoting Prime Minister Modi, says, India's cultural heritage, a bridge to world. The paper adds, Prime Minister cites global reach of cinema, cuisine, yoga. Rail insurance mandatory from October 27, says Supreme Court, reports the Pioneer. Rajnath Singh calls for open, inclusive, Indo-Pacific, deeper defence ties with ASEAN, writes the Statesman. Civic body, MCD, plans to reserve 250 parks for women with female guards across Delhi, states the Hindustan Times. And finally, in some football news, in the UEFA Champions League, Arsenal-Barcelona cruise, Atletico stumps United, reports the Hindu. And with that, it's back to you, Abhishek.
3: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today. Union Cabinet approves productivity-linked bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the fourth T20 match to level series 2-2. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार। इसके पहले ये संदेश।
7: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
8: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
9: पर खर्चा?
8: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
9: तो ठीक है, पर खर्चा?
8: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
10: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
13: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
14: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। कई स्पर्धाओं में भारत ने रचा इतिहास, झारखंड की बेटियों ने भी बढ़ाया देश का मान। झारखंड में पुल गिरने के मामलों में हाईकोर्ट सख्त, धनबाद, पलामू और गुमला में दर्ज मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, जनहित के कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी, अधिकारियों को लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश। रिम्स शासी परिषद की 66वीं बैठक आज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी होंगे शामिल, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और राज्यभर में दुर्गा पूजा का उत्साह, रांची में कई पूजा पंडालों के खुले पट, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में आयोजित एशियाई गेम्स 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। एक रिपोर्ट।
15: जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत कारीगर व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
14: झारखंड में पुलों के ढहने के मामले की जांच वर्षों से लंबित रहने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद, पलामू और गुमला में दर्ज मामलों की जांच प्राथमिकता के आधार पर 3 महीने में पूरी कर अंतिम रिपोर्ट संबंधित अदालतों में दाखिल करने का निर्देश दिया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही भी 3 महीने में पूरी कराने का प्रयास करने को कहा गया है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सांसद सुखदेव भगत ने सभी विभागों को पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
16: सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी राशि है, उसका प्रॉपर वे में कार्य हो रहा है नहीं, हर विभाग में कोऑर्डिनेशन हो ताकि सरकार जो नीतियां

0: रही है उसका प्रॉपर वे में क्रियान्वयन हो। हर विभाग पर हमने चर्चाएं की है, जो अच्छा काम करते हैं वो प्रोत्साहन के पात्र हैं, जो काम के प्रति लापरवाही बरते हैं वो दंड के भागी है। आयुक्त महोदय से भी हमारी बातचीत हुई, उनको भी और डीडीसी को भी हमने निर्देश दिया है कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो हमारे सदस्यों को भी पहले दिया जाए ताकि उन चीजों को जांच कर पाए।
1: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कामकाज में देरी और लंबित मामलों को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कल आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आम लोगों को बेहतर पेयजल और स्वच्छता सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है, जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने फाइलों और अभिलेखों की जांच कर लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में निपटाने, पारदर्शिता बनाए रखने, योजना साइबर ठगी पर प्रहार के तहत न्यायालय में कल एलएडीसी चीफ की अध्यक्षता में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जागरूकता और पीड़ित सहायता योजना 2026 को लेकर 150 कार्यरत पीएलवी को प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर पीएलवी को निर्देश दिया गया कि पीड़ितों को न्यायालय और डालसा की योजनाओं के बारे में बताकर सहायता करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रिम्स शासी परिषद की आज 66वीं बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें रिम्स के निदेशक का सेवा विस्तार, संस्थान के प्रशासनिक, वित्तीय और मरीज सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। 12वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता इंस्पायर अवार्ड में चतरा के गिद्धौर प्रखंड के गंगा स्मारक उच्च विद्यालय के छात्र दीपक कुमार को दीपक देश में टॉप 60 पुरस्कार विजेताओं में अपना स्थान बना लिया है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। चतरा के दीपक कुमार ने प्रतियोगिता में स्मार्ट बोरवेल पाइप कटर का नवाचार प्रस्तुत किया था। प्रतियोगिता में रामगढ़ के छात्र पूरब जैन को देश भर में तीसरा स्थान मिला है। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बाघिन सुनैना ने 23 सितंबर को 2 मादा और 1 नर शावक को जन्म दिया। फिलहाल तीनों शावकों की स्थिति संतोषजनक है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। चिड़ियाघर प्रबंधन ने नामकरण के लिए मोबाइल नंबर 9438291637 पर आम लोगों से 19 अक्टूबर तक व्हाट्सएप या संदेश के जरिए सुझाव मांगे हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को सम्मानित किया जाएगा।
2: नागपुर से मेल लेकर आए थे, फीमेल के साथ मिलकर 3 बच्चों को जन्म दिया, 1 मेल है 2 फीमेल। रुद्रा के ये बच्चे हैं, सुनैना इनकी माता नाम है। सीसीटीवी से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते हैं बच्चे के साथ, और पब्लिक से 18 तारीख तक नाम मांगे हैं। उसके बाद जैसे नाम आ जाएंगे, पैनल में अच्छे नाम लगेंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे।
1: राज्यभर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह का माहौल है। कल रांची में कई प्रमुख पूजा पंडालों का उद्घाटन किया गया। इधर उपराजधानी दुमका में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर इंडोर स्टेडियम में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार और विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान सभी पूजा पंडालों में मैजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी।
3: दुर्गा पूजा में मंदिर ऐसा है लॉ एंड ऑर्डर और होने की भी घटनाएं देखना शहर है, इसलिए फोर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट जो है वो सभी पंडाल में तैनात किए जाएंगे। ऐसे लोग लॉ एंड ऑर्डर को जब कर सकते हैं, वैसे लोग भी चिन्हित हैं। ENS के द्वारा 126 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है।
1: दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला पुलिस द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में कल एसपी नगर और एसपी यातायात ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों और महत्वपूर्ण मार्गों का रूट वेरिफिकेशन तथा स्थल निरीक्षण किया। रांची जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भारतीय युवक संघ बकरी बाजार, ओसीसी क्लब त्रिकोण हवनकुंड और गीतांजलि क्लब मोराबादी दुर्गा पूजा पंडालों के भव्य उद्घाटन में शामिल होकर विधि व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की खबर को राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है 40% दिव्यांगता वालों को मिलेगी जन्म से पेंशन। दैनिक भास्कर लिखता है मां के दर्शन को खुले पंडालों के पट। हिंदुस्तान की सुर्खी है केंद्र ने दिया पेंशन बोनस का तोहफा। पूजा पर सुरक्षा का घेरा, जिलों में उतरेंगी केंद्रीय बलों की कंपनियां। प्रभात खबर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से करेंगे संवाद। कई स्पर्धाओं में भारत ने रचा इतिहास। झारखंड की बेटियों ने भी बढ़ाया देश का मान। झारखंड में पुलों के गिरने के मामलों में हाईकोर्ट सख्त। धनबाद, पलामू और गुमला में दर्ज मामलों की जांच 3 महीने में पूरी करने का निर्देश। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। जनहित के कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी। अधिकारियों को लंबित फाइलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश। रिम्स शासी परिषद की 66वीं बैठक आज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी होंगे शामिल। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और राज्य भर में दुर्गा पूजा का उत्साह। रांची में कई पूजा पंडालों के खुले पट। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मैं चली।
5: कहाँ?
4: बच्चे को पोलियो खुराक पिलवाने।
6: पोलियो खतरनाक बीमारी है जिससे बच्चा जीवन भर के लिए अपाहिज हो सकता है।
7: अचानक हाथ पांव लुंजपुंज हो जाता है या बच्चा चल फिर नहीं सकता।
6: बच्चे को 1 साल की उम्र तक पोलियो की 3 खुराकें
7: एक एक महीने के अंतर पर दिलाएं।
6: जानकारी के लिए सहिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें।
7: पोलियो की खुराक सभी सरकारी अस्पताल,
6: डिस्पेंसरी या हेल्थ सेंटर में मुफ्त मिलती है।
7: 2 बूंद जिंदगी के।
8: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: भूल गए आज कौन सा दिन है?
10: गुरुवार है, क्या हुआ तो?
9: अरे गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं।
10: अच्छा, चलो जल्दी फिर।
9: आप भी याद रखें, टीकाकरण कराएं और बच्चों की जिंदगी को सुरक्षित बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।
10: हर गुरुवार और शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगवाएं।
11: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे हो लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: मौसम ने फिर करवट ली है, तो आप स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है। किसी भी देश, समाज या परिवार की तरक्की में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं की न केवल सरकार बनाने में बल्कि सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में भी बराबर की हिस्सेदार होती है। आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण महिलाएं कई पहलुओं में पीछे हैं। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके मौलिक अधिकारों के जरिए उन्हें मजबूत करने के लिए हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस देश समेत दुनिया के अलग अलग देशों में मनाया जा रहा है, यानी कि आज इस खास अवसर पर। चलिए हम जानें इस दिवस को मनाने का उद्देश्य और थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाने का उद्देश्य कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी दूर करने में ग्रामीण महिलाओं का योगदान और उनकी भूमिका को सम्मान देना है। विश्व ग्रामीण महिला दिवस के खास अवसर पर देश दुनिया में विभिन्न कार्यक्रम और समारोह आयोजन कर देश और समाज की उन्नति एवं प्रगति में उनके योगदान को स्मरण किया जाता है। विश्व ग्रामीण महिला दिवस मनाने का सुझाव 1995 में बीजिंग में हुए चौथे विश्व महिला सम्मेलन में दिया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को अपने प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की, जिसके बाद इस दिन को प्रत्येक वर्ष आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा है। इस वर्ष विश्व ग्रामीण महिला दिवस की थीम सभी के लिए अच्छे भोजन का उत्पादन करने वाली ग्रामीण महिलाएं हैं। यह दिन उस बात पर जोर देता है कि कृषि, श्रम और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की अहम भूमिका है, लेकिन अभी भी उन्हें भूमि, तकनीक और वित्तीय संसाधनों तक समान अधिकार मिलने अभी भी बाकी है। यह दिन ग्रामीण और मूल निवासी महिलाओं के अहम योगदान को सम्मान करता है। इस दिन उन चुनौतियों को दूर करने की भी जरूरत पर जोर दिया जाता है जिसका सामना ग्रामीण महिलाओं को जमीन के अधिकार, वित्तीय सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंचने में करना पड़ता है। तो आइए हम मिलकर आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मुलाकात करते हैं उन ग्रामीण महिलाओं से जो अपने स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं, बालिकाओं को आगे बढ़ा रही हैं। आइए। आज हम परिचर्चा के माध्यम से ऐसी दो महिलाओं से बातें कर रहे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रही हैं, बचत करना सिखा रही हैं। श्रोताओं, आपको ये भी बता दूं कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने से पहले दोनों महिला समाख्या सोसाइटी में कार्य कर चुकी हैं। आइए हम उनके सफर के बारे में उन्हीं की जुबानी सुने। हमारी पहली मेहमान है लीला रानी कुंकल, जोहार।
1: जोहार।
0: और साथ में है आसिमा कुंकल। जोहार आसिमा जी।
2: जोहार।
0: स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। तो लीला जी, पहले आप बताइए, महिला समाख्या में आप पहले कार्य कर चुकी हैं, तो ये महिला समाख्या है क्या?
1: महिला समाख्या एक सोसाइटी है।
0: अच्छा।
1: इसमें महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए ही है।
0: अच्छा, ये महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के जागरूकता या जो भी है जागरूक करने के लिए, या फिर उनके बारे में जो कार्य करते वही है जी, महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए है। तो वहाँ आप किस रूप में कार्य कर रही थी?
1: पंचायत स्तर में जो सहयोगिनी के रूप में जाना जाती हूँ।
0: अच्छा, सहयोगिनी का कार्य क्या है मैम?
1: सहयोगिनी का काम गांव में ग्रुप बनाती है।
0: अच्छा,
1: और किशोरियों का भी, महिलाओं का ग्रुप बनाती है, किशोरियों का ग्रुप बनाती है, और जहाँ ज्यादा अनपढ़ किशोरी ग्रुप बनता है वहाँ पर हम लोग जगजगी केंद्र, जो कि उन लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए खोलते हैं।
0: अच्छा,
1: उसको जगजगी केंद्र बोला
0: जाता है।
1: और उसमें वहाँ पर ग्रुप में से ही एक सहेली का चयन करते हैं।
0: तो वो जो आप तो सहयोगिनी के रूप में कार्य कर रही थी
1: जी,
0: तो जगजगी केंद्र में वहाँ के लिए तो कोई कार्यकर्ता होगा, तो वहाँ भी कोई कार्य करने वाली होंगी?
1: तो वहाँ पर तो सहेली का चयन किया जाता है।
0: सहेली का चयन किया जाता है। अच्छा, तो असीमा जी आप किस रूप में कार्य कर रही थी वहाँ?
2: जी मैं सहेली के रूप में,
0: सहेली के रूप में जो जगजगी केंद्र चलाती है। तो आप, आपका कार्य क्या होता है?
2: जी अनपढ़ किशोरियों को पढ़ाती थी।
0: आप पढ़ाती थी उनको, जो आप पढ़ाती हैं जिनको, अलग अलग ग्रुप में पढ़ाती हैं या फिर जितने भी संख्या हो आप उतने को पढ़ाती हैं?
2: एक ही ग्रुप में पढ़ाते हैं।
0: एक ग्रुप में कितना संख्या होता है?
2: 15 से 30।
0: अच्छा, उम्र सीमा कोई होती थी?
2: नहीं,
1: महिलाओं का ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद उन लोगों को शिक्षा पर सिखाते हैं, उन लोगों को भी लिखना पढ़ना सब सिखाते हैं, अपना नाम लिखना सिखाते हैं।
0: जो निरक्षर है,
1: हाँ, जो निरक्षर,
0: जो पिछड़ी हुई है, जो कुछ नहीं जानती, ऐसी महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं को पढ़ाना सिखाती थी। और
1: हाँ, नाम लिखना सब सिखाते हैं, तो ग्रुप में बचत करना भी सिखाते हैं।
0: अच्छा,
1: उसके बाद बैंक तक पहुँचाते हैं।
0: जी जी जी, जब आप लोग पढ़ा लेते हैं तभी तो आगे बढ़ेगी, बैंक तक पहुंच जाएगी, बचत करना सीखेगी। तो कैसे प्रशिक्षण देते थे
1: लोग? प्रत्येक साप्ताहिक बैठक करते थे।
0: अच्छा,
1: तो साप्ताहिक बैठक में उन लोगों को लिखना सीखा, तो प्रत्येक गांव में ऐसे ही ग्रुप बनाते थे, और हर एक ग्रुप में यही सब लिखना सब सिखाते थे। और जहाँ जहाँ हम लोग जगजगी केंद्र खोलते थे वहाँ पर तो सहेली का चयन होता था, क्योंकि वो लोग तो हर रोज पढ़ती है
0: जी,
1: तो हम लोग तो नहीं जा पाते हैं
0: जी।
1: तो सहेली पढ़ाती है, रोज पढ़ाती है,
0: और सहेली रोज पढ़ाती है,
1: सहेली रोज पढ़ाती है।
0: साप्ताहिक उनका रिपोर्ट आप तक पहुंच जाता है। अच्छा जी, मैं वही जानना चाह रही थी, उनको साक्षर करने का, फिर बचत करने का, और स्वास्थ्य के बारे में आप बताते थे, क्योंकि ये आप कार्य कर चुकी हैं, इसीलिए ये आपके सफर की हम बातें कर रहे हैं। आज महिला समाख्या क्या कुछ कर रहा है? आज भी कुछ है कार्य करने के लिए?
1: अभी भी है, अभी हम लोगों का ग्रुप में अभी तसर से सूचक कातना सब सीख रही है
0: जी।
1: और भी ऐसे कोई कोई ग्रुप तो केवल बचत ही कर रही है, और दाल भात योजना भी चला रही है अभी तक भी है
0: जी।
1: ब्लॉक स्तर में 30 ग्रुप बनने पर एक छोटा रजिस्ट्रेशन होता है।
0: अच्छा।
1: फेडरेशन जो महासंघ बनता है
0: जी,
1: तो उस महासंघ में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं।
0: अच्छा।
1: उसके बाद धीरे धीरे और भी ग्रुप जो मजबूत होते जाता है उसमें जुड़ जाता है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फेडरेट नहीं कर पाए।
0: मैंने वो कार्य चालू है, आप कर ही रही है?
1: हाँ, अभी भी चालू है, और हम लोगों का जो फेडरेट में जो पैसा सब जमा हुआ है, और फेडरेट के लिए जो तैयार किए हैं कागज पत्र सब भी तैयार कर चुके हैं
0: जी,
1: और जमा भी कर दिए हैं
0: जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: अभी तक फेडरेट नहीं हो पाया
0: है।
1: फिर भी अभी हम लोग फेडरेशन के नाम पर हम लोग ऑफिस भी निर्माण कर चुके हैं
0: जी।
1: उसके बाद वहाँ पर हम लोगों का जो सामान सब, उसमें गद्दा तकिया और बर्तन सब भी है, और हम लोग अभी भी गद्दा सब का मांग करता है
0: जी। तो वो सामान का आप क्या करती हैं?
1: वो सामान सबको हम लोग भाड़ा में, कहीं कहीं ऐसा प्रोग्राम सब होता है तो भाड़ा में ले लेता है,
0: वहाँ से आय होता है।
1: हाँ, वहाँ से हम लोग,
0: वहाँ जो सामान आप लोग रखे हुए हैं उससे आप लोग अर्जित करते हैं जी जी। तो मैम एक बात और बताइए कि आप पंचायत स्तर में कार्य करती हैं, काफी सारी महिलाएं होंगी, तो एक जगजगी केंद्र में एक सहेली है असीमा जी, तो अब तक आपके पास कितने सारे जग जगह केंद्र है, कितनी सारी महिलाओं को आपने प्रशिक्षण दिया है या साक्षर किया? लगभग अनुमानित
1: 300 से 500 के बीच में तो जरूर,
0: लगभग 300 से 500 महिलाएं, ये संख्या कम नहीं है मैम। आपको बधाई मैं देना चाहूंगी या श्रोताओं की तरफ से भी, आप प्रेरणा का कार्य कर रही हैं। तो किसी ग्रामीण महिलाओं को या जो निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने का कार्य आप 300 से 500 की संख्या में आप बता रही, बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने आपके द्वारा शायद रास्ता पाया है, रास्ता देखा है, जागरूक हुई हैं आपके द्वारा, तो आज वो महिलाएं कुछ ना कुछ कार्य आपके द्वारा साक्षर होने के बाद कुछ ना कुछ कार्य कर रही होंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी।
1: अभी तक तो पैर में नहीं खड़ी है लेकिन पढ़ ही रही है
0: जी।
1: जैसे कि एक छू तो नर्स के लिए वो ट्रेनिंग कर रही है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और एक छू तो अभी ग्रेजुएशन की है।
0: तो आपने वो रास्ता दिखाया उनको? हाँ। वो ग्रामीण महिला है,
1: ग्रामीण महिला है और बहुत ही वैसे ग्रेजुएशन तक अभी पहुँच चुकी है।
0: आपके द्वारा मिला उनको रास्ता तो वहाँ तक पहुँची है, बहुत अच्छी बात है। असीमा जी, कि आप जब पढ़ाती हैं तो कई तरह की समस्याएं आती होंगी क्योंकि वो बिल्कुल निरक्षर होती हैं, तो उन समस्याओं के बारे में आप बताइए, कैसी कैसी समस्याएं आती थी और कैसे आप उनका समाधान करती थी?
2: जी, शुरू में तो गार्जियन सब भी नहीं समझ पा रहे थे
0: जी,
2: कि पढ़ाने के लिए मैं बुलाती थी
0: जी।
2: तो बहुत वो लोग भी बोले
0: कि
2: इस उम्र में क्या
0: पढ़ेगी
2: बोल करके
0: जी।
2: फिर धीरे धीरे बहुत सहयोगी दिलों के साथ मिल करके हम लोग गार्जियन सबको समझाएं, उसके बाद धीरे धीरे समझने लगे, उसके बाद खुद गार्जियन सब केंद्र तक पहुंचा देते थे।
0: अच्छा, वो तो उनको समझ में आ गया
2: जी
0: जी जी कि पढ़ाई का महत्व क्या है
2: जी। जग जगह में पढ़ करके फिर कैंप में डाले।
0: अच्छा, वो कैंप क्या होता है मैम?
2: MSK।
0: अच्छा, MSK क्या होता है मैम?
2: जी, महिलाओं का
1: किशोरियों
2: को ही पढ़ाया जाता।
0: अच्छा,
2: है
0: अच्छा, MSK में भी किशोरों को ही पढ़ाया जाता
1: महिला
0: है
1: शिक्षण।
0: अच्छा, महिला शिक्षण केंद्र कहना चाहिए
2: जी।
0: जी, अच्छा,
2: वहाँ पर 9 महीना में 1 से 5 क्लास तक का पढ़ाई होती है।
0: 9 महीने की अवधि में आप उन निरक्षर बालिकाओं को आप 5वां क्लास तक की शिक्षा दे देते हैं, इतना ऐसे प्रशिक्षण आप देते हैं? कहीं तो आप उनको स्कूल में डालते थे
2: जी, स्कूल में और
0: कस्तूरबा में
2: जी।
0: 9 महीने की अवधि में आप उनको 5वां क्लास तक पढ़ा करके कस्तूरबा विद्यालय में आप पढ़ने के लिए भेजती थी
2: जी।
0: इतने सारे कार्य एक जग जगह केंद्र में आप चली गए, फिर आप दूसरे ग्रुप को पढ़ाती थी
2: जी।
0: अच्छा अच्छा, आज आप क्या कर रही हैं
2: जी? आज भी अगर कोई ऐसा किशोरी आती है
0: जी,
2: कि हमको एडमिशन करा दीजिए बोलती है, तो मैं उसको एडमिशन करा देती हूँ।
0: आज भी आप कार्य कर ही रही हैं, स्कूल तक पहुँचाती हैं
2: जी।
0: लीला जी, आप बताइए, आज आप सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, आपके सफर की कहानी हम सुन रहे हैं, ये प्रेरणादायक है हमारे लिए, आज आप क्या कर रही हैं?
1: अभी भी प्रयास तो हम लोग महिलाओं के लिए ही करते हैं ना, तो अभी भी महिलाओं के लिए ही, जहाँ शिक्षा से हम लोग जोड़ते हैं, जो नहीं पढ़ पा रही है तो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए सब हम लोग उसको तुर्बा या विद्यालय में भी डालते हैं।
0: अच्छा, आज भी आप वो कार्य कर ही रही हैं
1: और महिलाओं के लिए भी हम लोग अभी भी, दूसरा संस्था आ गया है तो उसमें समिति में जो महिलाओं को भी अभी भी मैं समझाती हूँ।
0: अच्छा, आज भी आप कार्यरत हैं ही?
1: हाँ।
0: जी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप कार्य कर ही रही हैं।
1: समस्या महिलाओं का तो बहुत सारी समस्या भी आते रहती है, जैसे कि बलात्कार हुआ, हाँ, घरेलू हिंसा सब होता है, उस समय अभी भी मुझको बुलाया जाता है
0: जी,
1: और उसका समस्या का समाधान
0: करती हैं आप?
1: हाँ, अभी
0: जी जी जी। लीला जी, जब आप लोग महिला समाख्या सोसाइटी में जुड़ी हुई थी, प्रशिक्षण आप लोग को कहीं ना कहीं से तो आप लोग को मिलता था, कोई प्रशिक्षित करता
1: जी,
0: था?
1: मिलता था।
0: अच्छा, तो वहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता था?
1: हम लोगों का तो महिला समाख्या सोसाइटी बहुत सारी सोसाइटियों के साथ जुड़ी हुई थी।
0: अच्छा।
1: से शिक्षा परियोजना से और जोहार से और TRTC से।
0: अच्छा,
1: तो TRTC से भी हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में भी ट्रेनिंग देते थे और कानून जो घरेलू हिंसा के बारे में भी, वही लोग 3 रोज या 5 रोज का प्रशिक्षण।
0: अच्छा,
1: देते थे
0: जी जी।
1: अगर उन लोगों को समय नहीं मिल पाता था तो वही बिरसा जोहार वाले वो लोगों से हम लोगों को
0: प्रशिक्षित किया जाता था, जी। वही आप फिर महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को बताती हैं, जागरूक करती हैं,
1: जागरूक करती
0: जी। आप दोनों से बहुत कुछ जानकारी मिली, आप दोनों आज भी कार्य कर रही हैं, प्रेरणा स्रोत हैं आप दोनों हमारे लिए। आप यूं ही कार्य करते रहिए, रास्ता दिखाते रहिए महिलाओं को, हमें भी रास्ता दिखाते रहिए। हमारे कार्यक्रम में आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
2: जोहार।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आपने सुना एक जरूरी संदेश, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक कर का सिद्धांत अब वास्तविकता बन गया है, जिससे भारत को एकीकृत कर प्रणाली की ओर अग्रसर होने में सहायता मिल रही है। विगत 9 वर्षों में जीएसटी ने देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को मजबूत किया है। जीएसटी ने अलग अलग बिखरे हुए केंद्रीय और राज्य करों की जगह कराधान का एकीकृत ढांचा प्रस्तुत करके भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया है। इससे एक साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने और एक राष्ट्र एक कर के दृष्टिकोण का समर्थन करने में सहायता मिली है।

इसी गीत के साथ आज का हमारा विविधा का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजुरानी को दीजिए विदा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म चित चोर के इस गीत से, यशुदास के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म क्रिमिनल का ये गीत कुमार सानू के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दुश्मनी से, सपना अवस्थी और साथियों के स्वरों में।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: अभी आपने सुना यह जरूरी संदेश। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायवासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल्ली 6 से रेखा भारद्वाज और साथियों के आवाज़ों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग NCERT का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीस

छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो, टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ CIT NCERT की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने, और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक I am sorry बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी, यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थी। पहली थी USB पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को

0: एक साथ मिला दिया जाए? मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डोब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब आए, दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज पत्ती फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है, आपने कौन कौन से आम खाए हैं उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
8: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
9: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
10: वीर जोरावर की
11: जय।
10: वीर जोरावर की
11: जय।
10: जय जेरापुर, जय भारत।
11: जय जेरापुर, जय भारत।
8: राजा जोरावर सिंह,
12: हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
7: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
12: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
7: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
13: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
9: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
13: जी।
9: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
13: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
9: बिल्कुल,
13: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
9: जी मंत्री जी।
13: जी महाराज।
12: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
10: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
14: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
15: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
9: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
15: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
9: देखिए निजाम साहब।
15: जी फरमाइए।
9: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
15: जी।
9: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
15: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
9: जी।
15: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
16: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
12: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे।
8: वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
7: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
16: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
14: बिल्कुल।
16: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
14: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
16: लेकिन जरा होशियारी से।
14: जो हुकुम सरकार।

0: जोहार रांची कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त कार्यक्रम की होस्ट राजश्री
1: और मैं हूं आपके साथ उषा जायसवाल।
0: दोनों का आप सभी श्रोताओं का प्यार भरा
1: नमस्कार
0: और जोहार करते हुए उषा नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दें हम अपने श्रोताओं को।
1: एकदम
0: तो सभी श्रोताओं को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और बस हमें तो लगता है ना कि हमारे सभी श्रोता भी इस समय पूजा पाठ में लगे होंगे या फिर पूजा करके उठेंगे, यानी कि भक्ति में लीन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ भक्ति में, सिर्फ हमारे जो पूजा पाठ करने वाले ही नहीं, मतलब देखोगे तो पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश इस वक्त पूरा भक्ति में हो चुका है।
1: और माँ की आराधना में और शक्ति की आराधना में अगर हम लगते हैं तो समझ जाओ कि हमारे अंदर कितनी शक्ति आने लगती है।
0: बिल्कुल।
1: और ये शक्ति तभी आनी चाहिए, ये सकारात्मक होनी चाहिए, है ना, ताकि हम सभी आपस में प्यार बांटें, त्योहार के संग उमंग बांटें, ऐसा होना चाहिए हमारा विचार।
0: श्रोताओं, जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब हृदय में विश्वास का दीप जलता है और तब जो हमारी माता हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना हमें शक्ति, साहस और नई ऊर्जा प्रदान करती है।
1: और हम माँ की आराधना करेंगे तो साथ ही साथ चलो ना एक माँ का भजन भी सुनाते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मुझके सिर्फ बचाएंगे नहीं,
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों,
4: पीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोताओं, कहते हैं ना कि हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जरूरत है तो बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारा आज ही हमारे आने वाले कल की नींव रखता है।
6: बिल्कुल, और जानती हो किसी भी काम को अगर हम करते हैं ना, तो उसके लिए एक सार्थक लक्ष्य भी हमें बनाकर रखना चाहिए और उसी की तरफ में प्रयास भी करना चाहिए।
5: हाँ, बिल्कुल सही कहा उषा आपने। और हम किसी खास लक्ष्य को लेकर ही अपने जीवन यात्रा हमें हमेशा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर उधर भटकते रहे तो समय के साथ ये जो
6: पछतावा ही हाथ लगेगा,
5: तो होता ही है। और क्या हाथ लगेगा हमें, ये भी सोचो, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है।
6: इसलिए चाहिए ना कि एकाग्रचित मन रखें और अपने लक्ष्य की ओर में सकारात्मक दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़े और हमें अपनी मंजिल मिल जाए।
5: बिल्कुल, और हर दिन जिसे हम साधारण समझते हैं वो एक खास दिन बन सके, है कि नहीं?
6: और उसके लिए हमें अपने जिंदगी से प्यार करना पड़ेगा ना।
5: हाँ,
6: हार गए तो फिर कुछ नहीं।
5: बिल्कुल, तो हम कहते हैं ना, आई लव यू जिंदगी।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: और राजश्री, हम बातें कर रहे थे ना कि भगवान की आराधना करना है, अपने जिंदगी से प्यार करना है, सकारात्मक सोच रखनी है, कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना।
4: बहुत सारी बातों का। और हम भी आज जो ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं जोहार रांची आकाशवाणी के रांची केंद्र से, तो हमारे श्रोता भी ध्यान से सुन रहे होंगे कि हम किन किन बातों का ध्यान रख रहे हैं, हम सारे सेगमेंट्स को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
3: और देखो, समय रहते हम सभी सेगमेंट को कवर तो करेंगे ही और में बहुत सारी जानकारी भी अपने श्रोताओं को देंगे।
4: बिल्कुल।
3: तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर वो सोचते होंगे ना कि आप मौसम के बारे में कुछ नहीं बताए हैं तो जितनी सारी बातें हैं ना उसमें मौसम भी शामिल हो जाता है।
4: बिल्कुल, बिल्कुल।
3: अगर आपको गर्मी लगी तो बाहर में गर्मी का मौसम है ना। और सुबह सुबह और शाम के समय अगर आप घूमने निकलते हैं या पूजा की तैयारी के लिए सुबह उठते हैं तो शारदीय नवरात्र चल रहा है ना, तो शरद ऋतु का आगमन हो गया है।
4: बिल्कुल, आगमन हो गया है। और दिन में जो खिली खिली धूप है, जो इतनी वर्षा हो रही थी तो हर तरफ थोड़ा परेशानी थोड़ी सबको हो रही थी, और ये धूप देखकर सच में मन भी बिल्कुल खिल उठा है। और हर तरफ साफ सफाई, घर में सुखा करना, सफाई करना, ये सब शुरू हो गई है।
3: हाँ। नहीं, वो तो पूजा के पहले ही शुरू कर लिया हमने है ना, लेकिन अभी भी जैसे फूल बहुत,
4: ये सफाई जो उषा है ना वो दिवाली तक
3: नहीं होगी,
4: दिवाली तक तो पूरी तरह से चलती रहेगी
3: है ना। और ये कहो ना कि हम आसपास तो सफाई कर लेते हैं लेकिन अपने मन की सफाई सबसे जरूरी है।
4: ये बहुत गहरी बात आपने कही है।
3: मन की शुद्धता करनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं।
4: सही बात है।
3: और उनकी आराधना में सबसे पहले कोई भी भगवान ये देखते हैं कि हमारा मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, हम लोगों के साथ कितने प्यार के साथ में पेश आते हैं, है ना।
4: हम समझ गए उषा, आपका इशारा जो है वो मेरी जो थोड़ी थोड़ी समझ में बात आ रही है कि आज हम लोग पर्यटन में कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाने वाले हैं। आज हम अपने शहर के जो तमाम जो पंडाल बने हैं खूबसूरत, आज आप वहां का दर्शन हमें कराएंगी और हमें भ्रमण करवाएंगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंतजार करने देते हैं ना अपने श्रोताओं को। आज थोड़ा इतिहास के पन्नों पर भी हम नजर डालते हैं पहले,
3: क्योंकि पन्ने पलटने बहुत जरूरी होते हैं कि कल क्या हुआ था, तभी ना आज हमें राह मिलेगा। तो आज के दिन क्या क्या हुआ ये हम बता दें। भारतीय सेना में हर साल आज के दिन यानी 15 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर दिवस मनाया जाता है।
4: बहुत अच्छी जानकारी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, हम उनको भी शुभकामना देते चलते हैं, क्योंकि आज ये उन्हीं का दिन है, ये दिवस हम उन्हीं के नाम पर मना रहे हैं। और ये भी बता दें कि ईसाई कोर की स्थापना 15 अक्टूबर ईएमई कोर की स्थापना जो है वो 1943 को हुई थी,
3: और 84वां जो 84th कोर दिवस था वो 2026 में मनाया जा रहा है ना। और इसकी भूमिका क्या है ये भी बता दो।
4: भूमिका है, ये कोर भारतीय सेना के टैंकों, हथियारों, रडार, संचार प्रणालियों और अन्य तकनीकी उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य करती है।
3: और इस दिन तकनीकी योद्धाओं के योगदान को याद किया जाता है और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जैसे स्थानों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
4: बिल्कुल, और हम भी तो इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको
3: श्रद्धांजलि
4: श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
3: और राष्ट्रीय आज के दिन एक और बहुत खास दिन है जिसे हमने लेकर आया अपने श्रोताओं के लिए। आज है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हर साल आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन कृषि, पशुपालन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है।
4: और ये 15 अक्टूबर को तो मनाया जाता है, ये आपने बता ही दिया, लेकिन जो इसकी शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मान्यता दी गई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति और उनकी अहम भूमिका को दुनिया के सामने लाया जा सके।
3: बिल्कुल। और फसल उत्पादन, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और वितरण से लेकर परिवार का पेट भरने तक में हमारी ग्रामीण महिलाओं का श्रम सबसे बड़ा आधार होती है। तो हम उन्हें तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं,
4: उनका आभार प्रकट करते हैं,
3: कि वो अगर गांव की जो
4: उनकी इतनी
3: नींव है, नींव बीड़ा जो नहीं उठाती,
4: ये मजबूती उनकी बनी रहे।
3: हाँ, तो अगर वो बीड़ा नहीं उठाती गांव को संभालने का, तो हम यहाँ नहीं होते।
4: बिल्कुल सही कहा है।
3: तो उन्हें ये पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2008 को मनाया गया था, संकल्प लिया गया था 2007 में।
4: कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी को कम करने में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के योगदान को सम्मान देना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही उद्देश्य है इस कार्यक्रम को मनाने के
3: लिए। हाँ, और आज के ही दिन हम ये बता दें कि विश्व डाक सप्ताह भी मनाते हैं, है ना। तो ये 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है, यानी कि आज तक। लेकिन ये कहो ना राजश्री, की डाक दिवस अगर रोज जाए या रोज हम मनाते ही आए हैं कई पीढ़ियों से, तो कहना कोई गलत नहीं होगा।
4: क्योंकि उषा, कुछ शब्द कागज पर लिखे जाते हैं लेकिन उनका रिश्ता सीधे दिल से होता है।
3: हाँ।
4: कभी किसी चिट्ठी में माँ की ममता होती थी, कभी पिता की सीख होती थी, कभी अपनों का हाल और कभी किसी के आने का इंतजार। याद करो उषा, वो दौर जब घर के दरवाजे पर डाकिए की आहट सुनते ही दिल की धड़कने कैसे बढ़ जाती थी। लाल रंग की डाक पेटी, लिफाफे पर लिखा पता और इस चिट्ठी को खोलने की उत्सुकता, इन सब से एक अलग ही दुनिया बसी थी उषा।
3: हाँ, यानी कि जब डाक की बात होती थी ना, तो बस मन में कभी खुशियां, कभी जोश, कभी दुख भी झलकता था ना।
4: हाँ, और तभी तो शायर ने क्या खूब कहा है कि कागज की नाव थी, स्याही का समंदर था, एक चिट्ठी में सिमटा हुआ पूरा अपना घर था।
3: तो चलो ना, हम डाक से संबंधित एक प्यारा सा गीत, जिसमें पूरी दुनिया सिमटी है, ये सुनवाते हैं।
4: जरूर।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये डाकिया डाक लाया बहुत ही प्यारा गाना था, और एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं,
2: ये था 2026 का थीम है।
1: हाँ, और देखो उषा, समय बदल गया, तकनीक बदल गई, संवाद के तरीके भी बदल गए, लेकिन आज ईमेल, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल ने दूरियों को कम जरूर कर दिया है, लेकिन डाक सेवा का महत्व आज भी बना हुआ है। चाहे वो जरूरी दस्तावेज हो, पार्सल हो, या देश के कोने कोने तक सेवाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी हो, और इसीलिए ये जो थीम है इस बार का रखा गया है अनंत संभावनाएं।
2: अनंत संभावनाएं तो शुरू से ही हैं, लेकिन बस एक बात है, जब से चिट्ठियां कम हो गई है ना, संवेदनाएं कम हो गई है।
1: हाँ, ये बात बहुत सही कहा आपने,
2: है ना।
1: हाँ, और ये फिर से काश ये लौट जाए।
2: ये जो गीत अभी तुमने सुना ना, तो इसमें इतनी सारी बातें थी ना, वो सारी चीजें ना अब मोबाइल के व्हाट्सएप में, एसएमएस में सिमट कर रह गई है। आप कह तो देते हो गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड मॉर्निंग के भीतर में या आपकी मूड खराब है, लेकिन गुड मॉर्निंग भेजना है इसलिए भेज दिया,
1: भेज देते हैं, चाहे वो जो भी मूड हो,
2: जो भी मूड हो। तो वो बात नहीं होती है जो पहले सामने देख कर बोल कर होता था, लेकिन एक खासियत है मोबाइल में कि आप वीडियो कॉल में चेहरे को देख कर अपनी संभावना, अपनी संवेदनाएं दे सकते हैं।
1: यही तो बात है कि समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन डाक की जो महत्ता है वो कभी कम ना होगी,
2: कभी कम होनी भी नहीं चाहिए,
1: होनी भी नहीं चाहिए।
2: और ये तो इतिहास में चली गई ना कि हमारा डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन वो वर्तमान में भी चल रहा है, और इतिहास की और भी बहुत सारी बातें हैं। ये
1: तो अगले पन्ने की ओर आप चल रही हैं, ठीक है।
2: तो ये बताओ,
1: ये 1542 की बात हम बता रहे हैं। आज के दिन मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट सिंध में हुआ था,
2: और 1676 में ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे, जो अब मुंबई है, उसमें रुपया और पैसा ढालने की अनुमति दी थी।
1: और 1932 में आज ही के दिन टाटा सन्स लिमिटेड की पहली कॉमर्शियल विमान सेवा यानी टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी।
2: 1949 में मणिपुर और त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ था।
1: 1990 में आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
2: और 1997 में भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये तो जानकारी हो गई इतिहास में बहुत सारी
1: महत्वपूर्ण जानकारियां थी। और ये भी बता दें कि 1990 में सोवियत संघ ने राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और 1996 में आज ही के दिन फिजी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि करने वाला प्रथम देश बना था।
2: और 1998 में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: और 1999 में चीन ने आज ही के दिन 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाले DF-41 ICBM नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। जनरल जोसेफ रॉल्स्टन नाटो के सर्वोच्च वाइस कमांडर नियुक्त किए गए थे।
2: हम ये रहते हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अपने श्रोताओं को दें।
1: बिल्कुल, यानी 15 अक्टूबर को जिनका निधन हुआ था, अब हम उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये बता दें कि 1918 में

0: जिनको हम
1: हृदय से नमन करते हैं। साई बाबा का निधन हुआ था आज ही के दिन, और 1961 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि एक प्रसिद्ध जाने माने कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे, उनका निधन हुआ था।
0: 1975 में देवी प्रसाद रॉय चौधरी, पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार, इनका भी निधन आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर को हुआ था। और 1999 में दुर्गा भाभी, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थीं, उनका भी निधन हुआ था। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने श्रोताओं को दें।
1: जरूर, श्रोता भी ये जानना चाह रहे होंगे क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है,
0: जिन्होंने कि महिला क्रांतिकारी कितना उनके पास में उनके पास जिम्मेदारी होती है, उसके बाद देश के लिए लड़ना कितनी बड़ी बात है।
1: उनका असली नाम दुर्गावती देवी था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक महान और साहसी महिला क्रांतिकारी थी, और उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के रूप में भी याद किया जाता है।
0: इनका जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शहजादपुर गांव में हुआ था, और इनके पति भी महान क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा थे, है ना। और हम ये भी बता दें कि इनका निधन हमने बताया ना 1999
1: को हुआ था गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, और आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
0: और उनका योगदान क्या क्या रहा ये भी हम थोड़ी सी जानकारी दें कि दिसंबर 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या के बाद दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत की आंखों से बचाकर कोलकाता ले जाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का रूप धारण किया, अपने साथ अपने बच्चे को रखा और राजगुरु को नौकर बनाकर लाहौर से ट्रेन का सफर तय किया।
1: क्या साहसिक कदम था ये, साहसिक
0: कदम बुद्धिमता की बात
1: और बुद्धिमता की बात है। और 1929 में उन्होंने पंजाब के पूर्व गवर्नर लॉर्ड हैली पर बम से हमला करने की योजना में भी सहयोग दिया था।
0: और भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों तक पिस्तौल और हथियार पहुंचाती थी। कहा जाता है कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को जो पिस्तौल मिली थी वह भी दुर्गा भाभी ने ही उन्हें उपलब्ध कराई थी। तो सोच लो कि इतनी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाती थी अपने घर परिवार और बच्चों को भी देखकर, तो इनको याद करके हमारे दिल में भी सहरन हो रही है।
1: यही कारण तो है कि हम स्वतंत्रता संग्राम के उस वीर को आज हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके योगदान को हम योगदान के लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं।
0: और आज 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और इसे क्यों मनाते हैं ये भी प्रेरणा का दिवस है,
1: ये जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उद्देश्य में मनाया जाता है।
0: और इनका उद्देश्य शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देना, छात्रों को प्रोत्साहित करना और डॉक्टर कलाम के शिक्षा के प्रति उनके विचारों और योगदान को याद करना है। तो ये थी जानकारी इतिहास में हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, और थोड़ी सी इतिहास की बातें और भी हैं तो ये भी बता दें।
1: आज ही के दिन हम 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो 1988 में उज्ज्वला पाटिल एक नौका में दुनिया की यात्रा करने वाली पहली एशियाई महिला बनी, और साथ ही 2020 में 15 अक्टूबर को ही भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हुआ था।
0: और जब जन्म की भी बात कर रहे थे और हम निधन की भी बातें कर रहे थे तो जन्म की बातों में एक और हम शख्स को जोड़ना चाहते हैं, वो है हमारे फिल्मी सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सफल संगीतकार जोड़ियों में से एक थी, शंकर जयकिशन।
1: अच्छा, मतलब दोनों का जन्मदिन आज नहीं है?
0: नहीं, ये जोड़ी है, दो अलग अलग व्यक्ति,
1: शंकर और जयकिशन।
0: जयकिशन,
1: तो आज शंकर जी की जयंती है,
0: और इनका पूरा नाम था शंकर सिंह रघुवंशी, और जयकिशन का पूरा नाम क्या था?
1: जयकिशन दया भाई पांचाल। भाई मुझे भी पता है।
0: यानी कि दोनों अलग अलग है, यानी तू हमारे श्रोताओं को ठीक से बताना चाह रही थी, अगर वो भूल गए।
1: कई बार एक साथ नाम आता है ना, तो हम भी सोचते थे पहले शंकर जयकिशन एक ही नाम होगा, श्रोता को भी आज, हमारे श्रोताओं को भी ये आज स्पष्ट हो गया होगा कि नहीं, अलग अलग नाम है ये।
0: तो इनमें से शंकर जी का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में, और निधन हुआ था 26 अप्रैल को, और जयकिशन जो इनके साथ थे उनका

0: दिन है
1: उनका
0: चार
1: जन्म
0: नवंबर को।
1: 4 नवंबर को है, तो 4 नवंबर को हम फिर से उनको याद करेंगे,
0: याद करेंगे।
1: जयकिशन जी को। और हम बता रहे थे श्री शंकर जी और जयकिशन की जी जोड़ी के
0: जोड़ी।
1: बारे में, तो इन्होंने 1949 से 1971 तक एक साथ काम किया था। जयकिशन के निधन के बाद, जो जिनका जो 1971 में निधन हुआ था, उसके बाद शंकर जी ने 1987 तक अकेले शंकर जयकिशन के नाम से ही काम जारी रखा था।
0: यानी इनका नाम एक साथ जुड़ा है, तो फिर वो
1: ये
0: अलग
1: अलग
0: उन्होंने,
1: बिल्कुल
0: थी ना दोस्त, कि
1: हाँ,
0: वो
1: तभी तो
0: संगीत से
1: एक
0: जुड़ी
1: ऐसी
0: हुई
1: जोड़ी
0: थी।
1: बनी जो जिसे हम आज याद करते हैं। उनके बनाए हुए जो गीत हैं,
0: गीत
1: जो
0: है वो।
1: संगीत है, आज हम उनको सुनते रहते हैं बराबर। और ये सब भूले बिसरे गीत नहीं है, ये हमेशा याद रखने वाले
0: हमेशा।
1: सदाबहार गाने हैं।
0: तो फिर चलो ना, उनके राज कपूर की फिल्म बरसात, बतौर स्वतंत्र संगीतकार के रूप में उन्हें 1949 में पहली सफलता मिली थी, तो फिर हम क्यों ना इस फिल्म का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, एक सदाबहार गीत आपके लिए।

0: राजश्री, हम इतिहास की बातें कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमने दी, लेकिन दुर्गा पूजा जो अभी हम त्योहार मना रहे हैं उनके बारे में भी कुछ खास जानकारी हमारे पास है।
1: खास जानकारी है और बहुत ही रोचक इतिहास भी है हमारे पास में, जो हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। और माँ के जो नौ रूपों की महिमा है उसको तो हम नमन कर ही रहे हैं, उनको सब नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो ये जो नौ रूप है माता के, वो जीवन के नौ महत्वपूर्ण संदेश देते हैं हमें, साहस, तपस्या, संयम, सृजन, मातृत्व, संघर्ष, संतुलन, पवित्रता और सिद्धि। तो ये जो सब कुछ का जो सामंजस्य है वो जो एक जगह मिलता है, उषा माँ के पास मिलता है, और रांची में ऐसी कौन सी जगह है बताओ।
0: देखो, सबसे पुरानी जगह की बात जब हम करें जहाँ से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, वो है दुर्गाबाड़ी। वहाँ की पूजा में जब तुम शामिल हो जाओ ना, तो फिर वो जो रोमांचक जो क्षण होता है ना, उसे कभी भुलाए नहीं बोल सकते।
1: बिल्कुल, तो
0: हर परंपरा वहाँ पर आज भी जारी
1: है। हमारे श्रोता ये समझ गए होंगे कि जो जिस रोचक तथ्य की बात हमने अभी कही है वो दुर्गाबाड़ी के बारे में आप उनको बताने वाले हैं, क्योंकि ये 143 वर्षों का सफर है, 1863 से ये कायम है परंपरा। तो हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि दुर्गाबाड़ी पूजा का इतिहास 143 वर्ष पुराना है और इसकी शुरुआत वर्ष 1883 में हुई थी। इससे पहले वर्ष 1881 में और 1882 में ये पूजा जिला स्कूल प्रांगण में आयोजित होती थी। बाद में 1883 में इसे वर्तमान स्थल दुर्गाबाड़ी में स्थानांतरित किया गया था, और तभी से ये स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम केंद्र बन गया था। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में जरूर बताना होगा, वो ये है कि 1883 में जिस स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई थी ना, आज भी उसी रूप में माँ दुर्गा की प्रतिमा वहाँ गढ़ी जाती है। ना आधुनिकता का असर, ना शैली में कोई बदलाव, ना पूजा आयोजन की नींव मजबूत करने में, या फिर उसको
0: वहाँ की परंपरा भी बदलती नहीं।
1: बिल्कुल कोई परंपरा नहीं, कुछ भी नहीं बदलती है।
0: देखो राष्ट्रीय, जब परंपरा की बात होती है ना, तो दुर्गाबाड़ी से ही एक परंपरा शुरू हुई थी और वो है धुनुची नाच।
1: अच्छा,
0: धुनुची नाच किसे कहते हैं? वो होता है ना, नारियल के छिलके और सुलगते कोयले से धूपदानी में डाला जाता है लोबान, सुगंधित धूप।
1: हाँ, लग रहा है, मैंने देखा है, लेकिन इसके बारे में जानकारी नहीं है।
0: हाँ, ये अगर खास करके तुम बंगाल की पूजा में देखो या फिर दुर्गाबाड़ी में अगर आ जाओ, तो जिस दिन महालया होती है, माँ की आराधना शुरू होती है, से लेकर विदाई तक में ये धुनुची नाच का जरूर ही मतलब कार्य रखा जाता है।
1: अगर मतलब महालया में हमने इसे मिस कर दिया, तो हम किसी दिन भी जाकर
0: जिस दिन पूर्णा होती होगी उस दिन तुम इसे देख सकते।
1: हाँ,
0: माँ की आराधना शुरू से लेकर अंत तक ये धुनुची नाच होता है, बल्कि आज तो इनकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं, है ना। और धुनुची नाच के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत दुर्गाबाड़ी से ही मानी जाती है। इस वर्ष दुर्गाबाड़ी में 144वीं दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, और धुनुची नाच की शुरुआत जो हुई थी इसकी परंपरा की, वो 144 वर्ष पहले का अनुमान किया जाता है। दुर्गाबाड़ी से लेकर देश प्रिय क्लब, हरिमती, मतलब जितने भी वहाँ के आस पास के जो बंगाली संस्थान है जो दुर्गा माँ की पूजा आराधना करते हैं इस परंपरा से, वहां पर धुनुची नाच तो होता ही है। हाथ में धूपदानी लेकर और उसके जो नाच है उसे
1: क्या पूरा दृश्य मेरे सामने उभर रहा है
0: ना, जब उनको देखो तो लगता है कि सही में माँ हमारे आसपास है।
1: एक और खासियत बता दूं उषा कि यहाँ जो प्रतिमा निर्माण और जो पूजा दोनों ही एक ही परिवार की पीढ़ियों के द्वारा की जाती रही है। पहले मूर्तिकार वीरभूम के रहने वाले देवेंद्रनाथ सूत्रधार थे, और इसके बाद उनके पुत्र, और अभी लगातार कई वर्षों तक मूर्ति उन्होंने बनाई, और अभी अन्नदाता के पुत्र तपस्या सूत्रधार और पुत्र अंजल सूत्रधार के यहाँ के मूर्तिकार हैं, जबकि पुरोहित भी इसी परंपरा को जो निभाते हैं उसी परिवार से आते हैं,
0: उसी पर तभी तो वो परंपरा आज भी जीवित है ना।
1: हाँ,
0: और अगर हमारी परंपरा को बनाए रखना है तो उसमें पीढ़ी पीढ़ी लोग लगे रहते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी आएगी तो वो तो अपने मन की बात करेंगे ना, तो वो परंपरा जो आज हमने इतने सालों बाद भी वही परंपरा देख रहे हैं वो हमें नहीं मिल सकती है। तो ये जो परंपरा की शक्ति है वो माँ दुर्गा की शक्ति है, उनके साहस और सृजन का प्रतीक है, और हम इन 9 दिनों में नवरात्रि में बहुत ही श्रद्धा भावना से माँ की पूजा करते हैं और आपस में प्रेम भाव सद्भाव और उत्साह उल्लास को बांटते हैं।
1: तो हम अब इतिहास तो बता चुके, तो एक और गाना सुना दे, उसके बाद पंडाल घूमने चलते हैं।
0: देखो ये गीत सुनकर ना तुम्हें एकदम दुर्गोत्सव का पूरा आनंद आएगा,
1: तो चलो ना आनंद के साथ सुनते हैं।

0: कैसा उषा लगा?
1: अरे मत ना तुमने कौड़ियों और घुंघरों वाली चूड़ियां पहनूं और अपने गरबा डांडिया को एक नया लुक दूं
0: और उसके बाद में गरबा में जाकर शारदीय नवरात्र का सभी महिलाओं के साथ में मिलकर इसका आनंद उठाने जब डांडिया की जो बात आती है ना, तो आजकल नए नए फैशन के नए नए टिप्स भी आ रहे हैं ना, तो उसमें गुजराती स्टाइल के घाघरे, चनिया चोली की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, रंगीन धागे, कौड़िया जिसे तुमने बोला, और इन सबसे सजी हुई जो चौड़े फ्रेम वाली चूड़िया होती हैं, ये सभी ली जाती हैं, और उसके बाद में वो स्टिक जो रंगदार स्टिक होते हैं वो, और उसके बाद में ढेर सारी हंसी,
1: बिल्कुल पता है क्लासिक टच के साथ हम खुशियां भरते हैं अपने त्योहारों में। लेकिन ये जो स्टिक की बात की ना तुमने, ये ऐसे ही नहीं इसको खेला जाता है, इस पे कुछ प्रैक्टिस की भी जरूरत पड़ती है।
0: बिल्कुल, और इसके लिए करीब नवरात्रि से मुझे लगता है 10-15 दिन सभी

0: महिलाएं इसमें टाइम भी देती हैं
1: हाँ, और अब ये
0: ताकि
1: सिर्फ गुजरात के अंदर ही ये सीमित नहीं रह गया,
0: नहीं पूरे इंडिया
1: हर घर में, घर घर में अब ये, हर कॉलोनी में अब
0: में
1: इसके लिए देखोगे प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, रिहर्सल कर रहे हैं लोग, है ना, मतलब पूरी तरह से प्रैक्टिस करके और बहुत ही सुंदर ड्रेसअप के साथ, जैसे हमने अभी कहा है, तो वो इस अपने को लुक को एक नया लुक दे रहे हैं।
0: ओ, वो तुम्हें ना 19 और 20 तारीख को ही दिखाई देने लग जाएंगे कि जितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं वो तैयार हो जाती हैं, और जितने दिन नवरात्रि में जो पूजा होती है ना उसमें जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, जब उन्हें सजाना होता है और सजते हुए देखना होता है ना,
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो वो भी क्षण अद्भुत होता है।
1: सही
0: है
1: बोल रही हो।
0: लगता है कि सही में माँ हमारे द्वार आई हैं, जब तुम नौ कन्याओं को बुलाओ तो उस समय का भाव ही अलग हो जाता है। तो सिर्फ बुलाकर भोजन कराना ही हमारी परंपरा नहीं है, बात ये भी होनी चाहिए कि हम उन कन्याओं को उतना ही प्यार दें जब वो बड़ी हो जाए, उनका उतना ही सम्मान होना चाहिए जब वो महिला बन जाए, या फिर हमारे घर परिवार की जो महिलाएं हैं उनका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: सिर्फ
1: कह
0: पूजा
1: रही हो।
0: तक सीमित नहीं होना चाहिए, है ना,
1: पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब मुझसे इंतजार अब और नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम लोग घूमने के लिए निकले, तो ये तो बात हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आज हम लोग कहीं बाहर जाने का प्लान नहीं करेंगे।
0: बिल्कुल, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम बाहर कहीं जाओ अपने परिवार के साथ। हमारे रांची शहर में इतने जगह सुंदर सुंदर पूजा पंडाल बन रहे हैं ना, और माता की जो मूर्तियां हैं वो देखने लायक है, वहां की सजावट है ना, और वहां के जो तोरण द्वार हैं, और
1: हाँ,
0: उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है, और
1: है।
0: सबसे बड़ी बात है कि माता के जो अद्भुत रूप है उसे हमें निहारने का मौका मिलता है। तो फिर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ ही इनका आनंद लेना चाहिए।
1: हाँ,
0: लेकिन उसके लिए कुछ कुछ सावधानियां भी हैं।
1: सावधानियां तो बिल्कुल चाहिए। अब जैसे अब इतनी भीड़ होती है, अभी तो पहले तो याद है सप्तमी से पंडाल खुलते थे,
0: लेकिन
1: उसके बाद धीरे धीरे
0: कल से ही,
1: कल से ही खुल गए, यानी कल चतुर्थी था और कल से ही बहुत सारे पंडाल खुल गए हैं, और भीड़ भी उमड़ पड़ी है,
0: उमड़ पड़ी है। तो इससे क्या होता है ना कि जब कल से हो जाएगी तो भीड़ कुछ कम हो जाएगी ना, 3 दिन वाली भीड़ और अब 7 दिन वाली भीड़, बहुत अंतर हो जाएगा, और लोगों को मौका भी मिलेगा इतने अच्छे सजावट को देखने का।
1: सही बात है। और जो हम सावधानियों की बात कर रहे थे, तो बुजुर्गों का तो खास ख्याल रखना पड़ेगा हमें, और ऐसे तो आना जाना में कुछ तो प्रशासन की ओर से सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, लेकिन वो भी एक सीमित दूरी तक होती है, तो इन सब का ध्यान रखते हुए ही ये डिसाइड करना चाहिए कि हम किनको लेकर बाहर निकलें, या और आजकल तो लाइव का जमाना में घर बैठे ही लोग दर्शन करते हैं,
0: लेकिन ना बहुत लोग घूमना भी पसंद करते हैं ना कि पूजा पंडाल में जाएं, तो जो सक्षम है हमारे बुजुर्ग उन्हें ही भीड़ में लेके जाओ, कोई परेशानी ना हो भीड़ से, है ना। और दूसरी बात, अगर लेकर जाओ तो उनके पॉकेट में या उनके पास मोबाइल ना,
1: बुजुर्ग और बच्चे ये दोनों बच्चों के लिए हम कह रहे हैं,
0: उनके पॉकेट में मोबाइल ना देकर कुछ पर्चे डाल दो जिसमें एड्रेस हो, फोन नंबर हो, और उन्हें एक चौक चौराहा जरूर बताकर जाना चाहिए, है ना। ये हमारे बच्चे
1: कुछ आइडेंटिटी तो रहनी चाहिए।
0: छोटे समय में हमें भी ये कहा जाता था, इस दुकान के सामने तुम लोग खड़े
1: आके आ जाना, अगर किसी कारण से हाथ छूट
0: गया
1: तो यहाँ पे आके।
0: तो ये सहूलियत सभी को देकर ही आप कहीं घूमने जाएं, क्योंकि ना वो बीच में डाइवर्ट हो जाता है ना, पुरुष अलग महिला अलग, तो उसी के समय बिछड़ने की संभावना होती है। तो इससे बचने के लिए आप एक पॉइंट जरूर बताकर जाएं, और दूसरी बात, अगर वो सक्षम है तो वो सीधे घर पहुंच जाए, है ना।
1: हाँ, सही बात है। तो घर पहुंचने की तो बात है ही, और ये तो रात भर ये जो घूमना टहलना होता रहता है, और इसमें जो अनुशासन की बात हम कर रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से ये जो जितने भी हमारे जो जिन्होंने भी ये पंडाल का निर्माण करवाया है, उनके तरफ से भी ये सुविधा दी जाती है कि हम इसको दो पंक्तियों में करें, तो जो अनुशासन की अपेक्षा वो करते हैं, उस अनुशासन को हमें भी उसमें खरा उतरना चाहिए। ये नहीं है कि हम इधर से जाएंगे उधर से ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ऐसा करते हुए अगर हम घूमने निकलते हैं पंडाल की तरफ, तो जो देवी हमारे समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन माँ भगवती को हम नमन करते हुए अच्छे से जा सकते हैं। और जब श्रद्धा से हमारा मन भर जाता है, तो एक आराधना जो हम करते हैं, वो शक्ति, साहस और नई ऊर्जा का अनुभव हम सभी करेंगे, उस तमाम पंडाल की तरफ जाएंगे और घूमेंगे।
0: तो फिर चलो हम इतना ही करते हुए एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते चलते हैं, ताकि जिंदगी में कभी हार हो या जीत हो उससे हमें डरना नहीं है, बस अपने आप को संभाल कर जिंदगी में खुशियों की डगर ढूंढनी है।

0: और इसी गीत के साथ अपने साथियों से हम विदा लेना चाहते हैं जो हर रांची कार्यक्रम से, तो उषा जायसवाल और
1: राजश्री को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार
1: जोहार, और फिर से एक बार नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। पीडीएम 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी। दिन के 11:30 हो चुके हैं और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। सुनवाएंगे आपको गाने, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा संदेश।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे थे फिल्म दूसरा आदमी का ये प्यारा सा नगमा। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार, साथ में मोहम्मद रफी की। संगीतकार राजेश रोशन और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। इस गीत को पसंद किया था आप सब श्रोताओं ने। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, चीला शेख, कोकिलवारा ओराई जिला मुजफ्फरपुर से, मोहम्मद फैसल शेख, नुजरत जहां नाज। और इसी गाने को सुनना चाहा था शेख टोली समस्तीपुर से, मोहम्मद शहनाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कहो ना प्यार से। इस नगमे को पसंद किया है आप सब श्रोताओं ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक। और साथ ही इसी गाने को सुनना चाहते हैं जतुका किशनपुर आलम, दिलकश शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज। और पाकुड़ झारखंड से इसी गाने को सुनना चाहते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु तासु। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म कहो ना प्यार है का ये गाना, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत राजेश रोशन का है। लीजिए सुनिए।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगला गाना आप सबकी फरमाइश पर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और आसमानाज अंसारी। इसी गाने को सुनना चाहते हैं चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। इसी गाने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी, फर्जी अली अंसारी। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम और परमजीत आदिबा कौर। आप सब सुनना चाहते हैं कुमार शानू, अलका याग्निक और अजय देवगन की आवाज में फिल्म दिलवाले का ये गाना, जिसके संगीतकार हैं नदीम श्रवण और गीतकार समीर। लीजिए सुनिए।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा भी दिन के 12 बज रहे हैं और इस वक्त आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। दुर्गोत्सव की पावन घड़ी में आप अपने परिवार के साथ खुशियां मना रही हैं, हम भी आपकी खुशियों में शामिल हैं। सखियों, आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हैं हम दो सखियां, राखी और खुशबू।
1: सखियों, मेरा भी प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और नवरात्र के पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र का यह पावन अवसर नई ऊर्जा, नई उमंग और सकारात्मकता लेकर आता है और ढेर सारी खुशियां देकर जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल सही। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए हम माँ की आराधना करते हैं, है ना खुशबू?
1: हाँ, और इस यात्रा में हमारे विद्यार्थी भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम सब आजीवन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि जीवन में हर दिन एक नई सीख होती है और हर नया प्रयास हमें लक्ष्य के थोड़ा आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच हमारे अंदर उम्मीद जगाती है और मेहनत हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन छोटी छोटी कोशिशों से सफलता की नींव जो है वो मजबूत होती है। और हम सब तो विद्यार्थी है राखी, कोई भी शिक्षण संस्थान में ज्ञान लेता है तो कोई जीवन के अनुभवों से, है ना?
0: हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और सीखने की ये जो प्रक्रिया है अनवरत चलती रहती है। और बहनों, अगर विद्यार्थियों की बात करें तो उनके कुछ गुण, कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे कहा गया है, काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा यथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
1: इसका मतलब है सखियों, कौवे के समान निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए हमें, यानी विद्यार्थियों को, और बगुले के समान लक्ष्य पर ध्यान हमेशा केंद्रित रहना चाहिए। वहीं कुत्ते के समान हल्की नींद में रहना चाहिए और कम खाना चाहिए और घर की सुख सुविधाओं का त्याग करके बाहर ही रहना चाहिए।

0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: विद्यार्थी तभी सफल होते हैं जब वे मेहनत करते हैं, और मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है।
0: हाँ गृह त्यागी की बात तो खैर है अभी भी
1: हाँ
0: कि ठीक है, आज के विद्यार्थी गुरुकुल में सारे ना जाएं लेकिन हॉस्टल में रहते हैं अपने घर को छोड़कर, ये बात तो
1: बिल्कुल
0: है। अगर उस समय का सदुपयोग करें वो तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का भी बहुत महत्व है बहनों,
1: बिल्कुल
0: जैसा कि हमने कहा वो 5 लक्षणों में अनुशासन भी आता है, और बहनों यही हमें सफलता दिलाता है ये जो अनुशासन है। और आज के दौर में क्या हो रहा है खुशबू, कि स्क्रीन टाइम जो है ना वो हमारे समय पर बिल्कुल हावी हो रहा है, उसने अधिकार जमा रखा है। पढ़ाई के लिए जो समय हमारा जाना चाहिए था वो स्क्रीन पर चला जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हम अपने समय को कहीं और गवा रहे होते हैं। और विद्यार्थी जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन वह समय है जब बच्चों के सपनों की दिशा मिलती है और उनको व्यक्तित्व की नींव जो है इसी समय तैयार होती है। और जैसा कि राखी तुमने भी बताया कि अनुशासन बच्चों को समय को महत्व को समझाता है, और साथ ही साथ हमें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, और सही और अनुशासित होकर काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना भी हमें सीखना ही पड़ेगा या सीखना ही चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात कही तुमने खुशबू, और हमारे बच्चे ज़रूर ये बातें सीखेंगे। और जैसे पहले एक परंपरा थी ना, हम जिस समय छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है,
1: बिल्कुल
0: और बहुत सचमुच में वो अच्छा भी होता था। कहा जाता था कि उस समय माँ सरस्वती घूमती हैं, हमारे माता पिता कहते थे, और हम लोग क्या होता था कि उसी समय पढ़ने बैठ जाते थे, क्योंकि उस समय शांत वातावरण में की गई जो पढ़ाई है वो बहुत काम आती थी, तरोताजा मन होता था।
1: और हम सब कुछ है ना बहुत आसानी से पढ़ पाते थे, क्योंकि वातावरण बहुत शांत रहता था। और अब भी अगर विद्यार्थी इस समय पढ़ाई करे स्टूडेंट, तो वो काफी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और कहा भी जाता है कि इस समय अगर कुछ भी पढ़ा जाए तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है।
0: हाँ, हर दिन स्वयं से वादा करें, स्वयं को लक्ष्य दें कि आज कितनी पढ़ाई हमें करनी है, नया लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपने बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हमें ये समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल अच्छे अंक लाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनना है, और अपने सपनों को पूरा भी करना है, दूसरों का सम्मान भी करना है, जीवन की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा।
0: हाँ बिल्कुल, हम अनुशासन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि हर दिन के काम में ये जारी रखें। समय पर अपनी दिनचर्या पूरी करना, समय और ऊर्जा व्यर्थ न गंवाना, अपनी वाणी का सदुपयोग, व्यवहार में संतुलन, बड़ों का सम्मान, ये सब कुछ अगर हम अनुशासित होकर करें तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। और जीवन तो आशाओं का नाम है ना खुशबू,
1: बिल्कुल
0: आशाएं हैं तो जीवन में सफलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल आशाओं के साथ आप आगे बढ़ें, हम शुभकामना करते हैं।

0: टेस्ट करेंगे हम समझ के सिर्फ बचाएंगे नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए
4: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: लड़का लड़की है बराबर तो पूछना क्यों।
4: PNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपके साथ हैं हम दो सखियां राखी और खुशबू। और अब कार्यक्रम में आगे कुछ जानकारियों की बारी है।
6: हाँ बिल्कुल राखी, जैसा कि हमारी सभी सखियां जानती हैं कि आज है गुरुवार और आज हमारे विशेष अंग संजीवनी की बारी होती है, जिसमें हम आज बातें करेंगे महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच क्यों जरूरी है। और इस पे हमें विशेष जानकारी दे रही हैं डॉक्टर दिबांजलि बनर्जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और उनसे बातें कर रही हैं हमारी सखी सुभाषिनी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
7: कहा जाता है कि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार और समृद्ध समाज का निर्माण करती है। पूरे घर को अपनी ममता और फिक्र से संजोनी वाली महिलाएं अक्सर दूसरों की सेहत का ख्याल रखते रखते खुद की सेहत को भूल जाती हैं। छोटी मोटी तकलीफों को छुपाना या ये तो ठीक हो जाएगा कहकर टाल देना हमारे समाज में महिलाओं की एक आम आदत बन चुकी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमें ये समझना होगा आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच यानी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिबांजलि बनर्जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह हम नियमित स्वास्थ्य जांच अपना करा सकते हैं और क्या इसके फायदे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम।
8: थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।
7: तो आप हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें ये बताएं कि जो नियमित स्वास्थ्य जांच जो करवाना होता है वो क्यों जरूरी है और ये क्या होता है।
8: ओके तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हम कहते हैं नियमित स्वास्थ्य जांच, उसका उद्देश्य होता है बीमारी के होने के बाद उसका इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारी के होने से पहले ही उसका पहचान करना और उसे होने से रोकना। तो जैसे कई सारी है हमारे पास बीमारी, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, हाई BMI या ओबेसिटी या मोटापे की जो तकलीफें होती हैं, कई सारे कैंसर्स, बोन हेल्थ, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनका अगर टाइमली स्क्रीनिंग हम लोग कर सके, मतलब उनको होने के तुरंत तुरंत बाद ही पकड़ सके या फिर होने के पहले ही पकड़ सके, तो उनके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस कम किए जा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। महिलाओं के क्षेत्र में हम लोग देखें तो महिलाओं में हेल्थ चेकअप का क्या महत्व है, अगर हमसे ये पूछा जाए तो हम तो ये कहेंगे कि महिलाओं, पुरुष के मुकाबले महिलाओं के सामने ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। छोटी बच्चियों, जब से महावारी शुरू होता है तब से लेके मेनोपॉज तक और उसके बाद भी बॉडी में हर बार हर तरह की बदलाव वगैरह जो आती रहती हैं, उसमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लड़कियों को और औरतों को। तो इसीलिए कोई ऐसा फिक्स्ड एज हम नहीं कह सकते जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में करना चाहिए कि इतने एज के बाद आप करवाओ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पूरे एडल्ट लाइफ में अपने एज के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री, इंडिविजुअल रिस्क के हिसाब से चेकअप कराते रहना अच्छी बात है। हर साल हुआ या हर 2-3 सालों में डॉक्टर्स के पास जाना, छोटी मोटी जो भी इश्यूज हो रही हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना, ऐसे कंडीशंस में कुछ टेस्ट अगर करने हैं तो वो सब करते रहना, ये सारी चीजों को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हम लोग मान सकते हैं।
7: यानी कह सकते हैं कि जब से महावारी शुरू होती है तब से हमेशा जो नियमित स्वास्थ्य जांच है वो करवाते रहना अच्छी बात
8: है। जी बिल्कुल।
7: एक जो स्वस्थ महिला जो होती है उसके लिए रूटीन हेल्थ चेकअप्स जरूरी है, तो इसमें क्या क्या होता है? कहने का मतलब है कि रूटीन हेल्थ चेकअप में क्या जांच होती है, कौन सी जांच महत्वपूर्ण होती है, और अगर महिला को पहले से ही कोलेस्ट्रॉल है या फिर शुगर की बीमारी है, इस तरह की बहुत सी जो बीमारी अगर उन्हें पहले से है
8: जी,
7: तो उसका क्या महत्व हो जाता है जो नियमित स्वास्थ्य जांच हम कराते हैं?
8: जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रूटीन हेल्थ चेकअप के क्या क्या भाग है, मतलब क्या क्या पार्ट्स हैं।
7: जी
8: तो सबसे पहले तो एक जो हम लोग देखते हैं हमेशा डॉक्टर के पास जाने पर, एक बीपी का चेक जरूर होता है, ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का। नेक्स्ट जो हमें देखना होता है वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसे कहते हैं, कि हाइट के हिसाब से उनका वेट सही है कि ज्यादा है या फिर कम भी है। तो ज्यादा वेट या कम वेट से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो सेकंड वो है। थर्ड है शुगर की बीमारी, मधुमेह डायबिटीज है कि नहीं, क्योंकि वो भी काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। चौथा है लिपिड प्रोफाइल, जैसे आपने बताया हाई कोलेस्ट्रॉल, ये भी औरतों में आमतौर में बहुत पाया जाता है कॉमनली। ये तो जनरल एग्जामिनेशन में हो गया, अब महिलाओं का स्पेसिफिक्स हम लोग देखें तो कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे सर्विक्स। सर्विक्स मतलब होता है जो गर्भाशय के मुंह के का हिस्सा, सर्वाइकल, हाँ, जिसमें सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में अभी सबसे कॉमन है कैंसर फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर, तो वही सर्विक्स का स्क्रीनिंग भी होता है। उसके बाद हुआ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का अगर अल्ट्रासाउंड कराना है या फिर बस एक सिंपल मैनुअल एग्जामिनेशन भी अगर कर लेना है। उसके बाद आता है बोन हेल्थ, औरतों में मेनोपॉज के बाद हम जानते हैं कि बोन हेल्थ में काफ़ी गिरावट आता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी चीज़ें कॉमनली हो जाती हैं, जिससे हड्डियों की कमजोरी होती है, फ्रैक्चर्स ईजिली हो जाते हैं, दर्द बहुत रहता है, तो इसका भी स्क्रीनिंग हो सकता है, जिसको हम लोग बीएमडी स्क्रीनिंग बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी स्क्रीनिंग। और बाकी कुछ कुछ जैसे कि आमतौर पे हम लोग नहीं उतना सीरियसली लेते हैं, लेकिन वो है मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है लेडीज के, औरतों के लिए।
7: जी
8: तो जनरल हेल्थ चेकअप के यही सारे हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट कुछ कुछ होते हैं, थोड़ा बहुत फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और कुछ टारगेटेड टेस्ट जैसे सर्विक्स, ब्रेस्ट और बोन की टेस्ट होती हैं।
7: जी हड्डियों की जो समस्याएं आने लगती है प्री मेनोपॉज या आफ्टर मेनोपॉज ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसकी शुरुआती टेस्ट करना कब जरूरी रहता है, मतलब कब से टेस्ट करवाना सही माना जाता है?
8: जी मेनोपॉज के तुरंत बाद से ही इसका स्क्रीनिंग करवाना अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली जब 65 साल से ऊपर, उससे अधिक उम्र की महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की स्क्रीनिंग की सलाह दी जाती है, और यह कम से कम हर 2 साल में एक बार करवा लेना अच्छी बात है।
7: तो जैसे मेनोपॉज के दौरान, प्री मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज, इस दौरान और क्या क्या जो जरूरी हेल्थ चेकअप है वो कराया जाता है?
8: ब्लड टेस्ट्स होते हैं, जिसमें जो हम लोग देखते हैं मोस्टली शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों का हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर देखा जाता है, और साथ में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी काफ़ी मायने रखती है, एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग जो हम लोग पैप्समियर से करते हैं। सर्वाइकल स्क्रीनिंग होता है यूट्रस के मुंह के हिस्से से थोड़ा सा पानी निकाल के हम लोग जांच के लिए भेजते हैं, और उसमें अगर कुछ कैंसर का कीटाणु पनप रहा है कि नहीं वो जल्दी पकड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें पेरीमेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज के कुछ साल पहले, मेनोपॉज के दौरान और मेनोपॉज के बाद भी, तो ये सारी टेस्ट करवा लेना कम से कम साल में एक बार अच्छा होता है।
7: अच्छा होता है, बिल्कुल, यानी परेशानियों से बचने के लिए ये जरूरी होता है।
8: जी जी।
7: और जो नियमित जांच जो हम करवाते हैं, उसके अलावा जो हमारा खान पान है या जो हमारा रेगुलर एक्सरसाइज है या फिर हमारी नींद का भी बहुत महत्व है, तो इसके बारे में कुछ?
8: बिल्कुल, ओके। तो खान पान, व्यायाम और नींद, ये तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के नींव है। हमारे भोजन में वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियाँ, पकी हुई सब्जियाँ, फ्रूट्स, पल्सेस, पल्स मतलब दाल जो होता है, फिर होल ग्रेन्स, नट्स वगैरह, डेली के खान पान में ये सारी चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। एडिक्वेट प्रोटीन शामिल करना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन चाहे वेज सोर्स से हो या नॉन वेज सोर्स से हो, आप जैसा खाना खाते हैं उस हिसाब से प्रोटीन्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे, मछली, ये सारी बहुत अच्छी सोर्स हैं प्रोटीन के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन की जो बड़ियाँ आती हैं, पनीर हुआ, फिर पल्सेस वगैरह, दाल वगैरह, चने हो गए, राजमा हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोटीन में बहुत रिच हैं
5: जी।
8: इनके अलावा एक्सेस सॉल्ट, ऊपर से नमक खाना, चीनी या फिर हाईली प्रोसेस्ड फूड, ये सारी अपने डाइट से बिल्कुल हटा देना चाहिए। और रही व्यायाम की बात, तो WHO कहता है कि हफ्ते में कम से कम 150 मिनट का एक्सरसाइज हमें ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो हल्की फुल्की वॉकिंग हो या फिर कुछ योगा हुआ या हल्की जो हम लोग फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कहते हैं ना, वैसी वाली कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, तो ये सारी मॉडरेट एक्सरसाइजेस बोन हेल्थ और मसल स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है
5: जी।
8: और नींद की तो हम जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी से नींद कम हो जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर्स होते हैं, तो पूरा नींद लेना, और अगर नींद में कोई खराबी है या फिर नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करके उसके लिए जो जो हेल्प लेना है वो ज़रूर लें, और अपनी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें
5: जी। जी डॉक्टर बैनर्जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी तरह, अगर उन्हें आप ये कहें कि वो अपना ध्यान रखे किस तरह से और क्या क्या सावधानी रखे, तो वो जरूर आपकी बातों को सुनेंगी, आप बताएं।
8: ओके, तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इस ये सब होने पे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण वार्निंग साइंस है वो है, सबसे जरूरी असामान्य वजन हो जाना, आगे पीछे होना ब्लीडिंग, या फिर मेनोपॉज हो जाने के बाद भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना, या फिर स्तनों में कुछ नया गांठ दिख जाना, निपल से अगर स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, या ऐसा कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, ब्रेस्ट के स्किन में कोई बदलाव आ रहा है
5: जी,
8: या फिर अचानक से वेट गेन हो गया, या फिर अचानक से वेट लॉस हो गया, पेट के नीचे में हमेशा दर्द रहना, या फिर लगातार सफ़ेद स्राव जिसे हम वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं वो लगातार रहना, बहुत ज़्यादा थकान रहना, तो ऐसे ये सारे कई सिम्टम्स हैं जिन्हें हम कमजोरी बोल के नकार देते हैं, पर इनको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये सारी चीजें 1-2 महीने से ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह लें, एंड वो आपको गाइड करेंगे कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिन्हें आपको करना है, कोई बीमारी आपको है कि नहीं, और जल्दी आप इनका निवारण कर सकेंगे।
5: बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ पल आपने हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
6: सखियों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, विषय था महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, और बातें हो रही थी डॉक्टर देबांजलि बनर्जी से, और सुभाषिनी की बातें हो रही थी राखी, और राखी अब आगे क्या है?
9: आगे लेंगे एक छोटा सा विराम और साथ ही उसके बाद एक प्यारा सा गीत सुनवाएंगे बहनों को।
10: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो, और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
11: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
12: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

0: बहनों, आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। ऐसे में हम मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, सोशल मीडिया सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इसमें बहुत ही सावधानी हम रखें, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है।
1: बिल्कुल, अपनी ओटीपी, एटीएम पिन और अन्य गोपनीय जानकारी किसी से भी साझा ना करें।
0: तो बहनों, चलिए, ये तो बातें हो गई काम की, और अब खूब अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए। शुभकामनाएं आपको, और इसी के साथ अपनी सखी राखी।
1: और खुशबू को दे इजाजत। लेकिन जाते जाते आपको बता दे कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का। ये रही सबसे पहली पेशकश।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: आप सुन रहे थे फिल्म ताल का ये गाना, हम दिल दे चुके सनम का ये गाना। आवाजें थी कविता कृष्णमूर्ति और विनोद की, संगीतकार इस्माइल दरबार और गीतकार महबूब। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ताल से, लीजिए सुनिए।
4: तुम तनक तुम तन तक तुम तनक तुम

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये इस कार्यक्रम की अंतिम भेंट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत के संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और इसे लिखा है अनजान ने। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं और अब आप थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से लोगों का सफर
1: और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज देश से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। श्री शाह सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा किया और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन लोगों के पुनरुद्धार में शामिल है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31 तीन 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
0: ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के जनसेवा के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया है कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से था, जो अब बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने राज्यों को देश में डेटा सेंटरों के सतत विकास की योजना बनाने में मदद के लिए डेटा सेंटर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के डेटा सेंटर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में

0: गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित IUKFP बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मुंबई में आयोजित CII बिग पिक्चर सम्मेलन में श्री कुमार ने बौद्धिक संपदा को मजबूत करने, सतत राजस्व सुनिश्चित करने, अनुशासित निवेश को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री कुमार ने बताया कि वेब्स का अगला संस्करण अक्टूबर 2027 में मुंबई में आयोजित होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage and enhance water security in the region. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
2: उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है।
1: The newly inaugurated projects includes new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The modern terminal is spread over 23,800 square meters and is designed to handle 35 lakh passengers annually. The Prime Minister also dedicated to the nation the 298 kilometer long Nimu Padum Darcha Road, constructed by the Border Roads Organization, connecting Nimu in Leh with Darcha in Himachal Pradesh through the remote Zanskar Valley. The road provides an alternative connectivity corridor to Ladakh, supplementing the Srinagar-Leh and Manali-Leh highways. Mr. Modi also inaugurated the 9-megawatt Hanu small hydroelectric project and the 66-kilovolt double-circuit Da-Hanu-Khaltsi transmission line. Canada's Minister of International Trade, Maninder Sidhu, has said trade talks between India and Canada are gaining momentum and negotiations on the Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, are expected to conclude this year. Mr. Sidhu, who arrived in Mumbai yesterday, said the progress towards concluding the agreement would take bilateral relations to new heights and further strengthen the economic partnership between the two countries. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman arrived in Bangkok today to attend the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. She will participate in the G20 and G7 finance ministers and central bank governors meetings. She is also scheduled to hold bilateral meetings with many countries and organizations in Bangkok. In Punjab, a month call has been given to protest against the broad daylight murder of anti-drug activist Parvinder Singh Jota in Mansa on Tuesday and the prevailing drug menace in the state. Markets in several parts of the state are closed. Main and interior roads in some parts have been blocked. Slogans are being raised against the state government for its failure to contain the drug menace and control the prevailing law and order situation in the state. Police have made arrangements for maintaining peace. Several farmers' unions, political parties and traders' organizations have extended support to the band, called on the appeal of the father of the slain activist, ex-serviceman Bhim Singh. Indian wrestler Vishwajit Ramachandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram final, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. This marks India's first ever silver medal and first ever appearance in a Greco-Roman final at the Under-23 World Championships. Benchmark domestic equity indices were trading over 1.6% up in the afternoon session today. The Sensex surged 1,337 points to 74,119 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जिनके पास दस्तावेज नहीं उनकी बूथवार सूची बनाकर सहायता करेंगे चुनाव कर्मी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने से मिलेगी राहत, प्रखंड स्तर पर बनेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने तेज किया आंदोलन। गेट संख्या 9 और 10 किया जाम, वाहनों का परिचालन ठप। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में रामगढ़ के पूरब जैन को मिला रजत पदक। चतरा के दीपक कुमार भी टॉप 60 राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन बारिश की संभावना नहीं। दुर्गा पूजा में श्रद्धालु पंडालों में दर्शन और मेला का ले सकेंगे आनंद, सुबह कुहासे के आसार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने नोटिस सुनवाई तथा पारित आदेशों के डिजिटाइजेशन की जिलावार समीक्षा की। उन्होंने फॉर्म 6 भरते समय घोषणा पत्र के सहायक दस्तावेज तथा नोटिस की सुनवाई में दस्तावेजों के अभाव वाले व्यक्तियों की बूथवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि आउटरीच कार्यक्रम चलाकर ऐसे पात्र भारतीय नागरिकों की सहायता करें। के रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह ने कहा कि डॉ कलाम ने अपनी असाधारण वैज्ञानिक प्रतिभा का उपयोग भारत को एक प्रमुख सामरिक शक्ति बनाने के लिए किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में मिसाइल मैन को नमन किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में सामूहिक पक्के थ्रेसिंग फ्लोर बनाने की पहल की जाएगी। मंत्री ने नेपाल हाउस स्थित सचिवालय में भूमि संरक्षण निदेशालय के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में निर्देश देते हुए ये बातें कहीं। दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद स्कूली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने विशेष बैठक कर विद्यालयों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उपायुक्त ने पुलिस गश्ती बढ़ाने, छात्राओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, आत्मरक्षा प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों का आंदोलन उग्र हो गया है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के छठे दिन विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलनकारियों ने प्लांट की गेट संख्या 9 और 10 को जाम कर दिया, जिससे वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। आंदोलनकारियों ने कल से प्लांट के अन्य गेटों को भी जाम करने की चेतावनी दी।
3: विस्थापित अभ्यर्थी संघ के द्वारा शांतिपूर्ण तरीका से भूख हड़ताल किया जा रहा है, तो गेट को हम लोग अविलंब बंद करने का काम करेंगे और इसके बाद

0: अगर गठबंधन कुंभकर्णी निंद्रा में सोए रहता है और प्रशासन भी, तो हम लोग एक आध गेट छोड़ करके पूरे गेट को हम लोग जाम करने का काम करेंगे।
1: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेन देन पर व्यापारी छूट दर को स्थगित कर दिया है। इससे पहले यह दर आज से लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब नई दर दीपावली के बाद लागू की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कहा कि यह मिशन भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है।
2: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान है। इस मिशन के तहत देश के 6 राज्यों में 1,60,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।
1: इसके बारे में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट में कार्यरत जमशेदपुर की छात्राओं ने बताया कि सेमीकंडक्टर विकसित भारत 2047 के रीढ़ की हड्डी है।
3: मैं तनिषा गौतम, विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर उसकी रीढ़ की हड्डी है। डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का तेल कहा जाता है। चाहे हम स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या देश की सुरक्षा प्रणाली, हर जगह इन छोटी चिप्स का ही कमाल है।
4: मैं पल्लवी शर्मा, डिजिटल क्रांति का जो दौर चल रहा है उसकी असली ताकत ही सेमीकंडक्टर चिप है। भारत सरकार के सेमीकॉन इंडिया मिशन के तहत देश में ही बड़े पैमाने पर चिप मेकिंग इकोसिस्टम तैयार की जा रही है।
1: राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक की 12वीं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में आर्मी स्कूल रामगढ़ के पूरब जैन ने रजत पदक हासिल किया। साथ ही गंगा स्मारक उच्च विद्यालय गिद्धौर चतरा के दीपक कुमार को भी टॉप 60 राष्ट्रीय पुरस्कार में स्थान मिला है। भारत मंडपम में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,22,000 रुपए प्रति किलो है। साहिबगंज जिले में दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के मद्देनजर आमजनों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को लेकर मंडरों पर प्रखंड के विभिन्न होटलों और मिठाई दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार वर्मा और नौरंग देव कुमार के नेतृत्व में चलाए गए जांच अभियान के दौरान औद्योगिक रंगों के उपयोग से तैयार लगभग 15 किलोग्राम दूषित मिठाइयां मौके पर नष्ट कराई गयी। पदाधिकारियों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सिद्धगोड़ा काली पूजा दुर्गा पूजा कमेटी के 74वें दुर्गा पूजा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस बार पंडाल को बनारस के गंगा घाट की तर्ज पर बनाया गया है। रघुवर दास ने राज्यवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी और राष्ट्र की समृद्धि की कामना की।
5: शारदीय नवरात्र और दुर्गा पूजा के अवसर पर समस्त जमशेदपुर वासी सहित झारखंड वासियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो शक्ति का संचय हम कर रहे हैं तो हमारा देश को नई ऊंचाई पे ले जाने के हम सब शांति भाव से सद्भावना से दुर्गा पूजा पर्व मनाएं।
1: और अब मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु दशमी तक बिना मौसम की चिंता किए पंडालों में दर्शन और मेला घूमने का आनंद ले सकेंगे। हालांकि सुबह के समय कोहरा और कुहासा छाए रहने के आसार हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एसआईआर संबंधित कार्यों की समीक्षा की। जिनके पास दस्तावेज नहीं उनकी बूथवार सूची बनाकर सहायता करेंगे चुनाव कर्मी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा किसानों को महंगे कृषि यंत्र खरीदने से मिलेगी राहत। प्रखंड स्तर पर बनेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापितों ने तेज किया आंदोलन। गेट संख्या 9 और 10 किया जाम। वाहनों का परिचालन ठप। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में रामगढ़ के पूरब जैन को मिला रजत पदक। चतरा के दीपक कुमार भी टॉप 60 राष्ट्रीय पुरस्कार में शामिल। और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन बारिश की संभावना नहीं। दुर्गा पूजा में श्रद्धालु पंडालों में दर्शन और मेला का ले सकेंगे आनंद। सुबह कुहासे के आसार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा अनुरंजनी। लेकिन उससे पहले एक संदेश।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो लीजिए सुनिए उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकारा हैं अनिता सेन। अनिता सेन के स्वर में आप सुनेंगे आमिर खुसरो की लिखी बंदिश और साथ ही टप्पा।

आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की कलाकारा थी अनिता सेन। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस अब से कुछ ही क्षणों में आपके लिए लेकर आएंगे।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं सुगम संगीत का। आज की कलाकारा है आशा भोसले। लीजिए सुनिए चंद गजलें।

0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अ फ्लैगशिप कंपेन वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन January 22, 2015 फ्रॉम पानीपत इन हरियाणा. द कंपेन हैज प्लेड अ पाइवोटल रोल इन एम्पावरिंग द डॉटर्स एंड इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो इन हरियाणा. सुनील जागलन द फॉर्मर सरपंच ऑफ बीबीपुर विलेज इन जींद डिस्ट्रिक्ट एंड द इनिशिएटर ऑफ द सेल्फी विद डॉटर कंपेन स्टेटेड दैट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव हैज लेड टू इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ डॉटर्स अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन हरियाणा.
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी. लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी. उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है. इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं.
0: इट इज नोटवर्दी मोटिवेटेड बाय द पीएम स्पिरिट ऑफ जन सेवा से देश सेवा सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर कैंपेन कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फीलिंग द पीपल प्राउड आफ्टर पोस्टिंग सेल्फी विद देयर डॉटर्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रीक्वेंटली मेंशन सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर कैंपेन इन हिज मन की बात प्रोग्राम एंड हेल्प ट्रांसफॉर्म इट इंटू अ नेशन वाइड मूवमेंट. Originating from a remote area, this initiative has now evolved into a global campaign. Ashwini Kumar Sharma, Akashwani News, Chandigarh.
2: This is Akashwani giving you the news. Want more news? Follow us on X at AIR News Alerts and subscribe to News on Air Official on YouTube. Welcome back to the Midday News. Defence Minister Rajnath Singh has said that India is exporting indigenous defence products to nearly 100 countries worldwide. He said that India's defence exports have surged from just 686 crore rupees in 2013-14 to more than 38,000 crore rupees in 2025-26. Speaking at the Defence Conclave 2026 of a private channel in New Delhi today, Mr. Singh said India has achieved more than 90% self-reliance in ammunition variants.
3: Hope for the peace, but prepare for war. War that may be necessary to protect our country's sovereignty, territorial integrity and national security. Yani shant ki aasa rakhiye, lekin yuddh ke liye sadaiv tayar rahi.
2: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman met the UK Chancellor of the Exchequer John Healey on the sidelines of the annual meetings in Bangkok today. During the meeting, the Finance Minister reaffirmed India's commitment to working closely with UK towards shared priorities and a constructive, inclusive G20 process. Nirmala Sitharaman arrived in Bangkok today to attend the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. She will also participate in the G20 and G7 Finance Ministers and Central Bank Governors meetings. Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi this evening. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram category, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumidze in the final seconds of the bout. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall expected over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. The Met Department also said heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till the 21st of this month. The higher reaches of Doda district in Jammu and Kashmir experienced the season's first snowfall. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservations, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surge to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under-23 World Championships in Las Vegas. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
5: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
4: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
5: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
6: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31 तीन 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
4: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई, जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना

0: चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में ₹686 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹38,000 करोड़ हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
3: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक और हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
5: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
4: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूर दराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
6: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्से से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं जय भारती।

जी हाँ, इस देशभक्ति गीत को हमने लिया है फिल्म उपकार से। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, लेखक हैं गुलशन बावरा, आवाजें महेंद्र कपूर और साथियों की। लीजिए सुनिए ये देशभक्ति नगमा।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्मा का ये गाना, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों के स्वर में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पूरब और पश्चिम से, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी हैं और इस गाने को गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने, संगीत दिया है इंदीवर ने। तो लीजिए सुनिए ये नगमा।

0: श्रोताओं, अभी आप महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। इसी के साथ जय भारती कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के टेंडर की प्रगति पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने डीजीपी को सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी है। महाधिवक्ता रोहित राय ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके आवेदन 29 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अधिकारियों को 22 अक्टूबर तक दो बार नोटिस मिलने के बाद भी दस्तावेज जमा न करने वाले मतदाताओं की बूथवार सूची बनाने का निर्देश दिया है। यह सूची नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीएलए 2 की बैठक में साझा की जाएगी। पाकुड़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अक्षय मित्र जागरूकता रथ को उपायुक्त मेघा भारद्वाज और सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवण कुमार संथालिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में टीबी रोग के लक्षणों और इसके मुफ्त इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। उपायुक्त ने बताया कि जिले के अधिकारी टीबी मरीजों को गोद लेकर अगले 6 महीने तक उन्हें न्यूट्रिशन किट उपलब्ध कराएंगे, ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें।
1: और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से एक जागरूकता रथ जो है निकाला गया है सभी प्रखंड में टीबी के प्रति जांच अवेयरनेस और दवा जो डॉट्स का पूरा कोर्स है उसको करने के लिए जानकारी जो है दी जाएगी। तो सभी पदाधिकारियों के द्वारा 6 माह के लिए पेशेंट्स को गोद लिया जा रहा है, यानी कि उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो किट के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाएगी।
0: हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर 108 आपातकालीन एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा 16 सितंबर को दिए गए आश्वासन के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। वे एम्बुलेंस सेवा के सरकारी संचालन, न्यूनतम वेतन और ईपीएफ सुविधा की मांग कर रहे हैं। पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने आज अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर महाप्रबंधक विष्णु दत्ता दास ने ध्वज फहराया। ऑनलाइन जुड़े सीईओ एके सहगल और अध्यक्ष के एस सुंदरम ने बानर डी कोयला खनन परियोजना की प्रगति व सामाजिक विकास के लिए टीम की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम कुमार रजत और सिटी एसपी पारस राणा की अगुवाई में शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। सिटी एसपी ने संवेदनशील इलाकों का जायजा लेते हुए असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
2: सबसे पहले तो जिला प्रशासन की तरफ से पूरे रांचीवासियों को रात दुर्गा पूजा और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करना चाहता हूँ। फ्लैग मार्च के जरिए हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग ये बताएं कि हर तरीके से इस पर्व को सुरक्षित अर्थपूर्ण सक्षम।
0: देवघर एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि उड़ानों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए एयरपोर्ट के आसपास अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रबंधन को मॉकड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। चतरा की विशेष एनडीपीएस अदालत ने अफीम तस्करी के आरोपी भेखलाल साव को 15 साल के जुर्माना भी लगाया है। साल 2022 में राजपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी को 374 ग्राम अफीम पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। रांची के निर्मला कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय युवा महोत्सव ऊर्जोत्सव 2026 का कल समापन हो गया। इस महोत्सव में छात्राओं ने कला, संगीत, नृत्य और साहित्य के विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आदिवासी नृत्य जैसी स्पर्धाएं आकर्षण का केंद्र रहीं। रांची विश्वविद्यालय ने पीजी सेमेस्टर 4 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। बिना विलंब शुल्क के फॉर्म आज से 24 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 25 और 26 अक्टूबर को 400 रुपये विलंब शुल्क के साथ मौका मिलेगा।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं, रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। It was a great pleasure to listen to the poem The Crow in musical manner today. What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना। जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना। जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इजराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे।

वहाँ एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबरा कर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800044

0: 1-800-500-509 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है। आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
1: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
7: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय। जय जेरापुर, जय भारत।
2: जय जेरापुर, जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
3: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
1: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबार

0: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
0: जी,
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी,
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़ कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी।
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
1: जी, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
3: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: जाओ, चलो इसको, चलो
1: मुझे, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
3: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
3: देखो देखो, जो मैं हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
3: वाय,
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
3: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
3: एक्चुअली यू आर अ फूल।
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
5: काला पानी की सजा?
4: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
5: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
4: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
1: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
5: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा का 28वां संस्करण।
9: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
10: सदियों से भारत की पहचान खेती और किसानी से रही है। स्कूलों में हमें पढ़ाया गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। स्वाधीनता के तुरंत बाद देश की GDP में कृषि की हिस्सेदारी करीब 52% थी, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 17% के करीब ही रह गई है। बेशक GDP में हिस्सेदारी खेती की कम है, लेकिन खेती किसानी पर आज भी देश की बड़ी आबादी, करीब करीब 48% लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय विकास में खेती किसानी के महत्व को इन आंकड़ों से मोटे तौर पर समझा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार भी इसे समझती है। यही वजह है कि 12 साल के अपने शासनकाल में मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई। खेती किसानी के विकास में केंद्र सरकार के योगदान और उसकी योजनाओं को लेकर आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा की श्रृंखला के तहत आज हम खेती किसानी पर ही चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है किसान से कृषि उद्यम तक, जिसमें हिस्सा ले रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के पूर्व सचिव डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। डॉक्टर बंसल और हरवीर जी, आप दोनों का स्वागत है।
11: शुक्रिया मुंशी, धन्यवाद।
10: आज सबसे पहला सवाल डॉक्टर बंसल आपसे, किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने में मोदी सरकार ने किन किन योजनाओं पर बहुत ठीक से फोकस किया और उसमें कितना वो कामयाब रहे हैं?
11: मैं आपको एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में
10: जी
11: बता सकता हूं कि पिछले 10-12 साल में जो नई स्कीम्स आई हैं और जो बढ़ावा इस गवर्नमेंट ने दिया है, वो खास करके एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम जीनोम एडिटिंग कहते हैं। उस टेक्नोलॉजी को हमें बहुत प्रोत्साहित करते हुए किसानों के लिए नई नई किस्में बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। और मुझे खुशी है कि पहले जैसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर काम करते रहे हैं और अभी भी चल रहा है, लेकिन वहाँ रेगुलेशन के चलते हुए हम उतनी जो हमें प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। सिर्फ एक BT कॉटन को ही हम किसानों तक लेकर आ पाए कि जिससे हमारी पैदावार काफी बढ़ गई थी 14 मिलियन बेल से करीब 2002 में, और 2015-16 तक 40 मिलियन बेल तक चली गई थी। लेकिन अब GM टेक्नोलॉजी के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। 2020 में इस टेक्नोलॉजी को नोबेल प्राइज मिला है। और इस टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे GM एक बहुत रेगुलेटेड टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी ऐसा ही है, उसकी वजह से हमारी BT कॉटन के बाद कोई और दूसरी नई किस्म अभी तक क्रॉप्स में नहीं आ पाई है। लेकिन जीनोम एडिटिंग को हमें एनकरेजमेंट मिला इतना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोसेफ्टी रेगुलेशन से इसको हमें एग्जम्पशन दे दिया। मार्च 2022 में ये हमें एग्जम्पशन मिला कि हम जो भी बायोसेफ्टी असेसमेंट की जरूरत पड़ती है GM टेक्नोलॉजी में वो साइंटिफिकली स्पीकिंग साइंस के द्वारा इस चीज को हमें एविडेंस दिया गया और साइंटिस्ट ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया, हमारी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये प्रपोजल दिया कि इसमें बायोसेफ्टी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट से करीब 2 साल में एक एग्जम्पशन जो होता है वो मार्च 30, 2022 को उसका एग्जम्पशन हमें मिल गया। तुरंत साइंटिस्ट लोगों को इतनी से एनकरेजमेंट मिला कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अगस्त 2022 में और उस प्रोजेक्ट के तहत मई 4 2025 में हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये 2 जीनोमेडिटेड राइस वेराइटीज फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हमने लॉन्च कर दी है। उसके साथ साथ उसको और आगे बढ़ाने के लिए बाकी सभी करीब 40 क्रॉप्स में इस टेक्नोलॉजी के द्वारा नई किस्में बनाने के लिए जिसमें कि यील्ड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे मोर क्रॉप पर ड्रॉप की बात करें या नाइट्रोजन या और वाटर यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं या फिर ज्यादातर पल्सेस में ऑयल सीड्स में जो हमें अभी तक इतने हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उनका काम और ज्यादा आगे बढ़ाएं। इस तरह से इस काम को हमें खूब बढ़ावा मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारी प्रोडक्शन जो अभी 375 मिलियन टन के आसपास है, खास करके मैं ऑयल सीड्स और पल्सेस में हमें और मिलेट्स को भी साथ में लेकर इसमें बहुत हमें एनकरेजमेंट मिली है और हम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और आगे हमारे देश में बढ़ जाएगी और साइंटिस्ट लोग इसमें बहुत दिन रात से हम काम कर रहे हैं।
10: जी हरवीर जी, डॉक्टर बंसल ने तो बहुत ही एक तरह से गंभीर बात बताई और ये थोड़ा तकनीकी विषय है। जहां तक किसानों के हालात में जमीनी स्तर पर बदलाव की बात है तो आप लंबे समय से कृषि पत्रकारिता करते रहे हैं, खेती किसानी पर आपकी गहरी नजर रही है। मोदी सरकार की वो कौन योजनाएं रही जिन्होंने किसानों की जमीनी स्थिति को, जमीनी हालत को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है? हरवीर जी
12: देखिए, उमेश जी अगर हम देखें पिछले 12 साल को हम ध्यान से उस पर जाएं तो कई सारे ऐसे कदम हैं जो कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए जिनका योगदान है और काफी चेंजेस एग्रीकल्चर में आए। उसमें अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट काम था वो था जो एग्रीकल्चर का जो ढांचागत जो सुविधाएं हैं जिसमें सिंचाई सबसे इम्पोर्टेंट है
10: जी।
12: तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के जरिए सिंचाई के ऊपर फोकस किया गया और उसके बाद उसमें अगला कोशिश की गई टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मोर क्रॉप पर ड्रॉप करके
10: जी।
12: तो एक तो यह है कि जो हमारा कृषि का जो क्षेत्रफल था सिंचित, वो हम लोग करीब ओवरऑल जो हमारा कुल कृषि क्षेत्रफल है उसके करीब 45-50 के बीच में हम अटके हुए थे, 55% को भी शायद पार कर गया अगर आंकड़े हम लेटेस्ट देखेंगे। तो ये एक इतनी बड़ी चीज है क्योंकि सिंचाई की सुविधा का मतलब होता है कि किसान को उसकी फसल का एक एश्योरेंस मिलना, के आश्वासन मिलना कि उसकी फसल पैदा होगी और जब फसल को जरूरत होगी उसमें वो सिंचाई कर सकेगा। तो ये एक बड़ा कदम है कि हमने किस तरीके से जो निवेश के जरिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को सिंचित क्षेत्रफल के रूप में तब्दील करने की जो प्रयास हुए हैं। और उसके दो भाग जी, उसका दूसरा पक्ष जैसे मैं कहूँ, एक तो जो पहले से लंबित योजनाएं थी सिंचाई की उनको पूरा किया गया, दूसरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, क्योंकि पानी का भी एक चैलेंज हमारे सामने है और इसका एक ये इसमें जो गुणात्मक बदलाव होता है आमदनी में किसान की और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें बड़ा बदलाव हुआ, एक तो ये मैं कहूंगा। दूसरे अगर हम जाएं कि किसान को फसल की एक सुरक्षा देना जो है उसको रिस्क जो जिसे हम कहते हैं जो जोखिम को एक तरीके से कम करना और उसमें मदद करना, उसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें हर साल करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा 17,000 करोड़ तक जो है सरकार देती है उसमें जो प्रीमियम का हिस्सेदारी, और उसमें सब किसानों को शामिल किया गया। पहले क्या था कि जो कर्जदार किसान होते थे वो होते थे, इसमें फिर सबके लिए ओपन किया और इसको ऑप्शन बना दिया गया। तो ये एक इवॉल्विंग स्कीम है, उसमें अभी बहुत सारे बदलाव लगातार किए गए जो क्रॉप वैल्यू और किस तरह से भुगतान हो और सैटेलाइट मैपिंग और लॉसेस के वो कैसे कम किया जाए। तो ये एक बड़ा इसमें ये दूसरा मेरा ये मानना है कि इसमें एक बड़ा काम हुआ। इसके अलावा अगर हम जाएं जो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में ये हुआ कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि 2019 में शुरू किया गया। हाँ। तीन किस्तों में जो किसानों को, देश भर के जो एलिजिबल फार्मर है जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को, उनके खाते में सीधे तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसका मकसद ये था कि जो छोटे किसान है उनको हम किस तरीके से आर्थिक मदद कर सकते हैं उस वक्त जब उनको जरूरत हो इनपुट की, कि उनके पास खाद की खरीदने की क्षमता हो, उनके पास बीज खरीदने की क्षमता हो। ये छोटा है बट ये एक अहम भूमिका उसकी है। और इसके अलावा मैं अभी अगर आपको बताऊंगा और कई चीजें हम आगे बात करें,
10: जैसे
12: तीन बड़े कदम जो है। हाँ, एक और इसमें मैं कहूंगा आपको,
10: किसान क्रेडिट कार्ड जो था,
12: किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है क्योंकि ये 2003 के आसपास शुरू किया गया था। उसमें किसानों को जो छोटी अवधि का ऋण जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो मिलता है, खास तौर से उसका मकसद भी फसल की जो उनके जो इनपुट होते हैं उसकी आपूर्ति में मदद करता है। और उसमें जो क्रेडिट की जो मतलब दिया जाता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन सरकार देती है कि 7% पर वो किसानों को देती है, और जो किसान समय पर भुगतान कर देते हैं उनको अलग से 3% का और इंसेंटिव दिया जाता है। तो जो समय पर किसान लेकर के भुगतान कर देता है कर्ज का क्रेडिट कार्ड के तहत, उसका जो प्रभावी दर है वो 4% पे आ जाता है। तो ये कुछ चार ऐसे स्टेप्स जो है जिनकी हमने बात की वो एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर के गए हैं। दूसरे एक जो एमएसपी की कैलकुलेशन का तरीका था जिसमें C2 की किसानों की मांग रही है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन A2+FL जिसमें सभी लागतें थी और उन लागतों को जोड़ के जो लागत आती है उसके ऊपर फिर फार्मर को प्रॉफिट देने की प्रक्रिया को सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया MSP तय करने में। तो ये मैं देखता हूँ कि ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ाव इन दिनों में जो कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़े कदम, बड़े फैसले, बड़ी योजनाएं लागू हुई है उनको हम इस तरह से देख सकते हैं।
10: सही कहा आपने कि ये चार प्रमुख योजनाएं हैं, हालांकि तो बहुत सारी योजनाएं हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की कृषि से जुड़ी उपलब्धियों की चर्चा बिना पीएम किसान सम्मान की पूरी नहीं हो सकती। इस चर्चा में भी उसका बार बार जिक्र आया है। इस संदर्भ में 2022 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन की याद आना स्वाभाविक है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उस समय उन्होंने जो कहा था आइए उसे सुनते हैं।
13: साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।
10: डॉक्टर बंसल, जो बायोटेक किसान और बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है या नीम कोटेड यूरिया की, उसने किसानों की स्थिति को बदलने में और खेती में उपज को बढ़ावा देने में किस तरह से भूमिका निभाई है, और क्या इससे किसानों की जमीनी हालात बदलने में बड़ी मदद मिली है या अभी देर लगेगी?
11: नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुई मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दी, और अभी ये जो आप बायोटेक किसान की जो बात कर रहे हैं ये एक नई स्कीम है जो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने शुरू की, और ये बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क जिसको हम कहते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये है कि इसमें एक साइंटिस्ट और किसान, वैज्ञानिक और किसान की पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, क्योंकि ये जो बायोटेक स्कीम है, बायोटेक किसान स्कीम, ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो हमारे जितने अलग रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, ये जो हमारे छोटे किसान भाई बहन हैं उनसे जोड़ देते हैं डायरेक्ट, और बेनिफिट उनको मिल सकता है। और खास करके जो इसमें ज्यादा तरह का जो काम हो रहा है वो ग्रास रूट लेवल पर जो चैलेंजेस हैं हमारे पानी को लेकर, सॉयल की स्ट्रक्चर या सॉयल को की हेल्थ को लेकर, या सीड या मार्केट की एक्सेस को लेकर जो इसमें जो चैलेंजेस हैं ग्रास रूट लेवल जो फार्मर्स इसको फेस करते हैं उसके ऊपर इसमें ज्यादा फोकस है और इसको चलते हुए करीब 1,00,000 फार्मर्स को इसमें यील्ड इम्प्रूवमेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स वहां बायोटेक किसान के तहत लगाए गए हैं उसमें करीब 15% से 30% तक की बढ़ोतरी मिली है तो 1,00,000 फार्मर्स को और खुशी की बात यह है कि इसमें स्पेशली वुमेन फार्मर्स को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर ज्यादा एम्फेसिस है कि जो हमारी वुमेन फार्मर्स है उसको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और इसमें और प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी और चल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसको किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
10: डॉक्टर साहब आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर भी रहे हैं एक तरफ भारत इस तरह से तकनीकी क्रांति के जरिए तकनीक और खाद के रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के जरिए खेती कर रहा है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने एक और योजना शुरू की है जो हम कहते हैं जिसे नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग का जिसे हम लोग जीरो बजट भी खेती के नाम से जानते हैं। भारत में जीरो बजट खेती की बहुत चर्चा होती है आजकल ऑर्गेनिक खेती के नाम से भी ये बहुत मशहूर हो चुकी है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन भी शुरू किया है इसे भी मोदी सरकार की कृषि उपलब्धियों का एक सोपान माना जाता है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
14: भारत में खेती को टिकाऊ बनाने मिट्टी की सेहत सुधारने और किसानों की लागत कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत किसानों को ऐसी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों पर निर्भरता कम की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी थी। इसके लिए कुल 2,481 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1,584 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 897 करोड़ रुपए है। प्राकृतिक खेती में स्थानीय संसाधनों पशुधन और खेती से जुड़ी पारंपरिक जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोबर और गौमूत्र से जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक इनपुट तैयार किए जाते हैं। जीवामृत का इस्तेमाल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जबकि बीजामृत का उपयोग बीजों के उपचार में किया जा सकता है। इस पद्धति का उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना खेती में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना और बाहर से खरीदी जाने वाली कृषि सामग्री पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के जरिए जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण और व्यावहारिक जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में प्रदर्शन की व्यवस्था की जाती है। किसान इन स्थानों पर प्राकृतिक खेती के तरीके समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि अपनी फसल तथा मिट्टी की जरूरत के अनुसार इन तरीकों को कैसे अपनाया जाए। इसके अलावा जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाली सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कृषि सखियों और प्रशिक्षित किसान मार्गदर्शकों के जरिए भी किसानों को जानकारी और तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 4,000 रुपए की प्रोत्साहन सहायता 2 वर्षों तक देने का प्रावधान है। इस सहायता का इस्तेमाल प्राकृतिक खेती से जुड़े गतिविधियों सामग्री तैयार करने और जैव इनपुट संसाधन केंद्रों से सामग्री प्राप्त करने में किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय की अगस्त 2026 में जारी जानकारी के अनुसार मिशन के तहत 24,031 समूहों में 11,81,000 हेक्टेयर शामिल किया गया है। इससे 24,69,000 किसानों को लाभ पहुंचने की जानकारी दी गई है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए भी मिशन में प्रावधान किए गए हैं। इनमें सरल प्रमाणन व्यवस्था और साझा ब्रांडिंग शामिल है। इन प्रयासों से उत्पादों की पहचान बनाने और किसानों को बाजार से जोड़ने में सहायता मिल सकती है। हालांकि प्राकृतिक खेती को सफल बनाने के लिए किसानों को सही प्रशिक्षण स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सलाह और उपज के लिए उचित बाजार मिलना जरूरी है। खेती के तरीके में बदलाव करते समय मिट्टी मौसम और फसल की जरूरतों को ध्यान में रखना भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से खेती की ऐसी पद्धतियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है जिनमें उत्पादन के साथ साथ मिट्टी की सेहत और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।
10: ये दोनों परंपराएं एक साथ चल रही हैं, तो इन दोनों में तारतम्य कैसे बिठाया जा सकता है और किस तरह से ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है, आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
11: हाँ, ये किसानों के लिए लाभप्रद हो सकता है और दोनों साथ साथ चल सकती हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां हम ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हमारे सिक्किम की अगर हम बात करें या हिमाचल में बहुत सी और स्टेट्स हैं उसकी अगर हम बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं एरियाज हैं जिसकी हम जिसमें हम बात करें, लेकिन जहां हमें हाई प्रोडक्शन जोन जो हमारे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है या और हमारे मध्य प्रदेश में है या और हमारे महाराष्ट्र गुजरात में है, वहां जो अगर हमें हाई प्रोडक्शन लेनी है तो मैं तो ये समझता हूँ कि नेचुरल फार्मिंग एक अपने भारतवर्ष में कहीं जो अलग स्टेट्स में हो रही है और इन एरियाज में हम लोग जो नई तकनीक को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मुझे लगता है कि दोनों स्कीम्स का भारतवर्ष के अपने फार्मर्स को इसमें फायदा मिल सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह की हम प्रोडक्ट या वैरायटीज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेचुरल फार्मिंग यही है कि जिसमें हम कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें या ना करें, तो हम ये भी एक तरह से रिसर्च चल रही है कि बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स को भी हम जितना ज्यादा उसको यूज करें उससे सॉइल की स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सॉइल में कार्बन कंटेंट इंप्रूव होता है, जो कि एक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ये भी एक हिस्सा है कि हम सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाएं, तो उसमें भी ये नई जो टेक्नोलॉजी है उससे उससे फायदा होगा। और जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीनोम एडिटिंग जो बात कर रहे हैं उसमें हम उसी तरह की क्रॉप्स को बनाना चाहते हैं जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड यूज हो, कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज हो और कम से कम वाटर से या पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम बात करें, तो दोनों टेक्निक्स में मुझे लगता है कि हमारे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि प्रोत्साहन जो दिया गया है नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ में टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना मेरे लिए बहुत अच्छा है और समझता हूँ बहुत जरूरी भी है।
10: हरवीर जी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई थी, मोदी सरकार ने शपथ लिया था, तो उस समय उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, वह लक्ष्य क्या हासिल किया जा चुका है और वो किस तरह से हासिल किया गया है?
12: देखिए, ये जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो घोषणा थी
10: जी,
12: वो प्रधानमंत्री ने 2016 के आसपास की थी कि हम 5 साल में करेंगे, 2022 इसका लक्ष्य रखा गया था। उसके लिए एक अशोक दलवाई जी भारत सरकार में अधिकारी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सारी रिपोर्ट अपनी सबमिट की और इसी तरह से उसका कोई एग्जैक्टली कोई इवेल्युएशन किस पैरामीटर के हिसाब से करेंगे ये अभी ऐसा तो संभव नहीं होता, क्योंकि तमाम किस्म की फसलें हैं, तमाम किस्म के उत्पाद हैं, तो उसमें ये जरूर है कि जो 4.5% की दर जो एग्रीकल्चर ग्रोथ में हासिल की गई है वो अनप्रेसिडेंटेड थी। इसके पहले के जो दशक रहे हैं उनमें 4% से नीचे की ही जो विकास दर कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है उसमें हासिल की गई थी, तो ये एक बड़ा बूस्ट रहा है एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ का लंबे समय के बाद, क्योंकि इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एवरेज जब 10 साल का निकालते हैं वो इससे थोड़ा नीचे ही था जो नंबर्स अवेलेबल है हमारा सरकार के कृषि उत्पादन और जीडीपी को लेकर के
10: जी।
12: तो ये तो बिल्कुल सही है कि तमाम सारे फसलों के दाम बढ़े हैं जिसमें खासतौर से जो दालें हैं और तिलहन है उनके एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है, खाद्यान्न के एमएसपी है वो भी तेजी से बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम सारे जो दाम है वो जब किसानों को मिलता है तो उनकी आमदनी में एक बड़ा बदलाव आया है। उसमें आईसीआर का जो आईआरआई संस्थान है उन्होंने एक स्टडी भी की थी इसके बारे में, जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि किस तरीके से किसानों की आमदनी में लक्षित दिशा में बढ़ोतरी हुई।
10: डॉक्टर बंसल, मोदी सरकार की एक और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन थ्रू NMEO, जिसमें तिलहन और दालों के जो फसल है उसकी प्रमोशन की बात होती है, उसको प्रमोशन करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या इसमें भी कोई बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से रिसर्च हो रहे हैं, क्या जीनोम बदलने की तैयारी हो रही है? क्योंकि भारत में खासतौर पर दलहन की कमी रहती है और भारत का एक पूरा हिस्सा जो है वो दलहन फसलों पर, तो इसमें दलहन की फसलों का बहुत ज्यादा मांग रहती है, बहुत ज्यादा उनकी खपत रहती है, तो भारत को हर साल दाल की आयात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दाल का आयात करना पड़ता है, खासतौर पर ब्राजील और कनाडा जैसे देशों से। तो हमारे यहाँ दलहन की फसलों को उनके जीनोम को विकसित करने के लिए भी कोई काम हो रहा है क्या?
11: हाँ, दलहन की फसलों पर पूरा भारत वर्ष का जितने भी हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज हैं आईसीआर में, खास करके जो हमारे एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, दलहन पर ही फोकस जो रिसर्च करता है, और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी जैसे आईआरआई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, वहां भी पिजन पी पर जो अरहर दाल है उस पर बहुत तरह की रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी एरिया में चल रही है। लेकिन यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो तरह की टेक्नोलॉजी है जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, एक होता है कि हम जीएम फसलें तैयार करते हैं जो बीटी कॉटन जैसे तैयार हुई, दूसरी जैसे मैंने जीनोम एडिटिंग की बात की जहां हम जीनोम में बदलाव करते हैं, खुद जो जो क्रॉप है उसी में हम बदलाव करते हैं। तो पीजीएनपी को लेकर जो हमारे यहाँ पॉड बोरर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कीड़ा खा जाता है और उससे प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए एक जीएम पीजीएनपी अरहर उसके जो जीनोम में बदलाव करके जिसमें एक बैक्टीरिया से उसमें जीन डाला है जैसे कि यू नो बीटी कॉटन में डाला गया था, और वो अभी हमारे रेगुलेटरी सिस्टम में हमारा एक सिस्टम है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, वहां बायोसेफ्टी रेगुलेशन के लिए वो काम आगे प्रोग्रेस हो रहा है। और इन द मीनवाइल जो हमारे बाकी जो पल्सेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो करीब 1 टन पर हेक्टेयर है जो कि बहुत कम है, और उसको बढ़ाने के लिए हम लोग, क्योंकि एरिया बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है जबकि एरिया बढ़ाने से हमारे यहाँ दलहन की प्रोडक्शन बढ़ी है, लेकिन अभी जिससे प्रधानमंत्री जी ने एक दिशा दी है, नीति आयोग ने दलहन पर और तिलहन पर रिपोर्ट्स जारी की हैं स्पेशली

0: पिछले साल ही, जिसमें ये बताया गया है कि हम 2030 तक किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को भी साथ लेते हुए क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज जो और हमारी एफिशिएंट वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, खास करके दलहन और तिलहन दोनों में ही अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसमें हम इनको एक टन से आगे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 40 क्रॉप्स में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट बना है बायोटेक्नोलॉजी को लेकर, जिसमें जीनोम बदलाव की बातचीत बराबर हो रही है, उसमें 40 क्रॉप्स में जो मेजर एम्फेसिस है वो दलहन पर है, तिलहन पर, दोनों पर है। तिलहन को साथ लेते हुए मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं कि हम लोग करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल हर साल इंपोर्ट करते हैं जी। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको चलते हुए हमने जीएम मस्टर्ड भी, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी बनाया है, जिसकी प्रोडक्टिविटी 25-30% ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो हमारे यहाँ अभी रेगुलेटरी सिस्टम से क्लियरेंस मिली है, लेकिन अभी वो लीगल रिव्यू में है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इसके इसको सपोर्ट कर रही है कि हम उसको जल्दी से जल्दी किसानों तक लेकर आएं, ताकि इस नई टेक्नोलॉजी का जब तक हम फायदा नहीं लेंगे हम बहुत ज्यादा आगे शायद बढ़ना मुश्किल होगा। तो मेरा एक ये भी एक पॉइंट रहेगा कि जबकि भारत की बहुत सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो कर रहे हैं, 500 करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जो किस्में तैयार हो चुकी हैं, जो हमें खेतों में जो हमारी बायोसेफ्टी रिसर्च ट्रायल्स हो चुकी हैं, उसको भी हमें आगे बढ़ाने के लिए अगर मौका मिलेगा तो फार्मर्स किसानों के लिए और देश के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के लिए, विकसित भारत की तरफ बढ़ने के लिए बहुत फायदा।
1: केंद्र सरकार की कृषि उपलब्धियों में हाल ही में एक और योजना जुड़ी है, नमो ड्रोन दीदी। आइए सुनते हैं इसी योजना पर एक रिपोर्ट।
2: खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे किसानों को कृषि सेवाएं दे सके और अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश सके। केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराना है। इनका प्रमुख इस्तेमाल खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाना है। योजना के तहत चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए लागत का 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए है। शेष राशि की व्यवस्था के लिए पात्र समूहों के क्लस्टर स्तर के संघ कृषि अवसंरचना निधि के तहत ऋण ले सकते हैं। इस ऋण पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 3% ब्याज सहायता का प्रावधान भी है। ड्रोन उपलब्ध कराने के साथ साथ इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चयनित समूह की एक सदस्य को ड्रोन पायलट का 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया, ड्रोन चलाने का अभ्यास और छोटी मोटी मरम्मत तथा रख रखाव की जानकारी शामिल है। समूह की दूसरी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य को ड्रोन सहायक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करने से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव कम समय में करने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों को कृषि कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है। किसानों को हर बार अपना ड्रोन खरीदने की जरूरत नहीं होती, वे जरूरत के अनुसार महिला स्वयं सहायता समूहों से किराए पर कृषि सेवाएं ले सकते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण महिलाओं को तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ना है। महिला समूह ड्रोन के जरिए किसानों को सेवाएं देकर आय अर्जित कर सकते हैं। योजना को लागू करने में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उर्वरक विभाग और प्रमुख उर्वरक कंपनियों की भूमिका है। इन संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से ड्रोन की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कृषि सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि मंत्रालय की फरवरी 2026 में जारी जानकारी के अनुसार प्रमुख उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में स्वयं सहायता समूह को कुल 1,094 ड्रोन वितरित किए थे। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत दिए गए थे। ड्रोन से मिलने वाले लाभ को बढ़ाने के लिए नियमित काम, उपकरणों का रखरखाव, परिवहन की सुविधा और किसानों को उचित लागत पर सेवाएं मिलना जरूरी है। महिला समूहों को पर्याप्त कृषि कार्य उपलब्ध होने से ड्रोन का उपयोग बढ़ाने और आय अर्जित करने में मदद मिल सकती है।

0: पहले मोटे अनाज कहते थे, उसके बाद उसको कैटेगराइज किया गया।
1: जी
0: जो मिलेट्स हैं उसमें श्री अन्न जो है उनकी
1: जी
0: कैटेगरी ठीक से परिभाषित की गई और उनका एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। और ये न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब एक तरीके
1: जी
0: से ये स्वास्थ्य के लिए बेहतर भोजन है, और इसलिए उसको प्रमोट करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरीके के जो उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ी, उनका जो उनसे बनने वाले जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनकी संख्या बढ़ी, और इनके जो उगाने वाले लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर ये मार्जिनल लैंड्स जहाँ पर है, जहाँ बहुत ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं नहीं है,
1: जी
0: वहां पर इस तरीके के ये खाद्यान्न जो है उनका उत्पादन होता रहा है। तो उन किसानों के लिए ये एक बड़ा मौका लेकर के आया है। और अगर आप देखेंगे कि हमारा जो भोजन है उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और उसमें इस तरीके के जो अन्न है उनकी जो मात्रा है बढ़ी है, और उनको प्रति लोगों का रुझान आया। ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से इनको बेहतर पोषक तत्वों के रूप में एक तरीके से पेश किया गया और कैंपेन चला गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर, तो उसका फायदा किसानों को मिला। आपकी बात सही है कि इस तरह के जो अन्न है उनमें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र में नहीं होते, और उसमें जो उर्वरक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, उनकी भी जरूरत कम पड़ती है, और कीटनाशकों की लगभग ना के बराबर हो जरूरत होती है, उसमें इस्तेमाल ही नहीं होता ज्यादातर मामलों में। तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है, और ये क्योंकि उससे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटती है। अगर जिसमें आप ज्यादा उर्वरक और ज्यादा रसायन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी लागत भी कम रहती है।
1: अब समय चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है। भारत की कृषि और किसानों की हालत बदलने की दिशा में मोदी सरकार की योजनाओं पर इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया मुंशी,
2: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 28वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, किसानों की प्रगति और कृषि उद्यमों की नई क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस से डॉक्टर केसी बंसल और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा का 28वां संस्करण। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। साथ ही श्रोताओं, आप हमारा कार्यक्रम सुन पा रहे हैं FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर भी। शाम के 4:05 हो रहे हैं और इस वक्त आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूँ बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज फिर से हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि लिफ्ट एलिवेटर का उपयोग हमें क्यों सावधानी से करनी चाहिए इसके बारे में।

0: इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग क्या है और इसमें भविष्य की क्या संभावनाएं हैं इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे कंसील्ड जीपर के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा कर लेते हैं कि लिफ्ट एलिवेटर का हमें उपयोग सावधानी से क्यों करनी चाहिए इसके बारे में। अगर आपको किसी 10वीं मंजिल पर जाना हो तो क्या आप सीढ़ियों से जाना पसंद करेंगे या लिफ्ट से? जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग लिफ्ट का ही विकल्प चुनेंगे। कुछ ही सेकंड में आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने वाली ये मशीन वास्तव में आधुनिक तकनीक का एक शानदार उदाहरण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लिफ्ट का इस्तेमाल हम इतनी आसानी और बेफिक्री से करते हैं, उसके उपयोग में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानी का हिस्सा बन सकती है। लिफ्ट सुविधाजनक जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। आधुनिक लिफ्टों में दरवाजों के सेंसर, आपातकालीन अलार्म और संचार की सुविधाएं भी होती हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित रूप से ऊपर और नीचे पहुंचाना है। लेकिन किसी भी मशीन की तरह लिफ्ट का सुरक्षित संचालन उसके सही रखरखाव और उचित उपयोग पर निर्भर करता है। यदि हम जल्दीबाजी करें, निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को अंदर जाने दें या सुरक्षा नियमों की अनदेखी करें तो जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि लिफ्ट में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक हम कुछ बुनियादी नियमों का पालन जरूर करें। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिफ्ट में प्रवेश करते समय दरवाजा खुलते के साथ हमें ये ध्यान देना चाहिए कि लिफ्ट पूरी तरीके से नीचे आ चुका है और तभी हमें अंदर जाना चाहिए। बिना देखे अंदर जाना कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें भारी नुकसान उठाने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि लिफ्ट में पहले से लोग मौजूद हैं और जगह कम है तो धक्का मुक्की करने के बजाय अगली लिफ्ट का इंतजार करना चाहिए या फिर उस लिफ्ट के खाली होकर वापस लौटने का। याद रखिए, कुछ सेकंड बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना समझदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि लिफ्ट की क्षमता केवल व्यक्तियों की संख्या से नहीं बल्कि कुल वजन से संबंधित होती है। इसके अलावा बच्चों के लिए लिफ्ट किसी रोमांचक खेल से कम नहीं होता है। कई बार वे बटन दबाने लगते हैं, दरवाजे के पास खड़े होने या लिफ्ट के अंदर उछल कूद करने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट कोई खिलौना नहीं है। छोटे बच्चों को लिफ्ट में बिल्कुल भी अकेले नहीं भेजना चाहिए। साथ में किसी जिम्मेदार वयस्क व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, जो बच्चों को समझाए कि दरवाजों से दूर खड़े रहें, अनावश्यक बटन न दबाएं, लिफ्ट में शरारत ना करें। कई बार हम इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और दुर्घटना के शिकार बच्चे बड़े सभी हो जाते हैं। इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल जब भी करते हैं तो आप उसे पूरे नियमों के साथ ही उपयोग करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे भी सुरक्षित रहें। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम लिफ्ट का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी। तो अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है मशीन लर्निंग क्या है और इसमें भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है भेंटवार्ताकार के रूप में डॉक्टर प्रियंक सक्सेना, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ईसीई बीआईटी मिश्रा में। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: और सर, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग क्या है और भविष्य में इसकी क्या जो संभावनाएं हैं उसके बारे में, तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आ रहा है और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये मशीन लर्निंग है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनको बताएं।
1: मशीन लर्निंग एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब डोमेन है और आप कह सकते हैं कि उसके अंदर आने वाला एक पार्ट है। और मशीन लर्निंग एक वे है जिससे हम कंप्यूटर्स को या किसी भी मशीन को हम लोग ट्रेन करते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में छोटे बच्चों को ट्रेन करते हैं कि ये एप्पल होता है, जो रेड दिखता है वो एप्पल है, उसका शेप ऐसा होता है, तो फिर बच्चे जो है गेंद और एप्पल में कंपैरिजन कराते हैं, और फिर देखते हैं कि बच्चा गेंद को पहचान रहा है गेंद की तरह या एप्पल बोल रहा है या एप्पल को गेंद बोल रहा है, तो फिर से हम उसको करेक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग जैसे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं, ऐसे ही कोई भी मशीन जो किसी एक चीज पर काम कर रही है, तो आजकल जो भी डेटा आ रहा है, चाहे वो सेंसर डेटा हो चाहे वो ट्रैफिक का डेटा हो, उसके डेटा के निरंतर प्रभाव से, उसमें आने वाली विविधताओं से मशीन लर्न करती है, मशीन सीखती है और एक डिसीजन मेकिंग कर पाती है। तो मशीन लर्निंग, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सभी लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल मैप्स हमें दिखाता है कि अभी कितना ट्रैफिक है क्या है, तो वो एक्चुअली बेस्ड ऑन सम लर्निंग्स, मतलब वो लर्निंग जो उसने प्रीवियस डेटा से लिया है कि अभी शाम का समय है, ऑफिसेज की छुट्टी हुई है, स्कूल्स की छुट्टी हुई है, तो अभी कितना ट्रैफिक होगा, कितना टाइम लगेगा आपको अपने घर पहुंचने में, तो ये एक तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें मशीन लर्निंग का। जी
0: यानी कि पहले से जो चीजें उसमें फीड की गई हैं
1: तो
0: उसको
1: अब
0: सीखते सीखते फिर वो आगे डाटा जो
1: यस
0: है हमारे
1: जी
0: सामने रखता है।
1: तो अब जैसे गूगल मैप्स ही नहीं, अब जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब आप कोई मूवीज देखते हैं तो हम वो आपको आपका चॉइस के हिसाब से, आपकी वॉच पैटर्न के हिसाब से आपको मूवीज का सिलेक्शन
0: सजेस्ट
1: बताता है,
0: करता है।
1: सजेस्ट करता है कि
0: हाँ
1: आपको क्या देखना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जैसे अभी हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, तो वहां पे भी हमारे जैसे हमारी जो चॉइसेस हैं, जैसे अगर
0: जी
1: हम कोई अगर वॉच खरीदना चाहते हैं, स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि निरंतर वो आपको वही उसी तरह की चीजें
0: चीजें
1: आपको
0: दिखने लगती
1: दिखाएगा
0: है।
1: और बताएगा कि अब ये इसमें ये नया मॉडल है, ये है, जब तक आपको मतलब
0: चेंज ना करें
1: बाध्य ना कर दे कि आप खरीद ही लें, तब तक
0: जी
1: वो
0: जी जी
1: आपको दिखाता रहेगा।
0: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग वो प्रक्रिया है जो हमें पढ़ने का काम करती है, या फिर हम जिस भी चीज को कर रहे हैं उसमें जो डाटा फीड किया गया है अगर हम बार बार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एनालाइज करता है और फिर उसी हिसाब से हमें जो आगे जो सूचनाएं हैं या फिर जो भी डाटा है वो हमें दिखाता है।
1: एक्चुअली हम लोग इसमें यहाँ पे कोई कोड लिख के उसको नहीं मतलब बता रहे हैं कि तुमको ये काम करना है, वो एक डेटा के आने से, डेटा से निरंतर प्रभाव से वो उस
0: पढ़कर उसको
1: पढ़कर उसको समझकर ये डेटा में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, उससे चाहे आपका आप जैसे ईमेल्स आते हैं, तो ईमेल में कौन सा मेल आपके काम का है, कौन सा मेल स्पैम है, उसको अलग कर देना।
0: जी अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो इसके कितने प्रकार हैं और ये बड़े स्तर पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर चल रही हैं या फिर अभी तकनीकी स्तर पर बहुत सारी चीजें जो है, जैसे हम बात कर लेते हैं हवाई यात्रा की, तो फ्लाइट्स हो गई या फिर ट्रेन्स हो गए, तो क्या वहां पर भी इन सभी चीजों का या फिर सुरक्षा क्षेत्र में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है या फिर?
1: जी सभी क्षेत्रों में इनका यूज़ हो रहा है मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग जैसे अगर मैं बोलूँ तो तीन तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम बच्चे को बताते हैं कि ये एप्पल है, इसका रंग लाल होता है, तो एक्चुअली किसी भी डेटा से हम उसके फीचर्स को निकालते हैं और उसके ऊपर लर्निंग करते हैं।
0: जी
1: तो सुपरवाइज्ड में जैसे सुपरवाइजर आ गया, जैसे मतलब एक ट्यूटर आ गया, वो बताएगा कि ये डेटा किस चीज का है। अब जैसे अगर मैं मेडिकल की बात करूं, तो जैसे मेडिकल में अगर मैं सिंपली एक एक्सरे या कोई भी एमआरआई स्कैन अपनी मशीन को दे रहा हूं, तो मुझे पहले ट्रेनिंग के दौरान मशीन को बताना पड़ेगा कि ये एक हेल्दी पर्सन का एक्सरे है या एक डिसीज्ड पर्सन का एक्सरे है, तभी वो मेरी मशीन क्लासिफाई कर पाएगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है एनोटेशंस का होता है, जो जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स करते हैं, जो हर कोई नहीं कर सकता है।
0: जी
1: जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वही लोग उस मेडिकल डेटा को एनोटेट करते हैं कि ये हेल्दी पेशेंट है या अनहेल्दी पेशेंट है, और उस डेटा पे अपने मॉडल को ट्रेन किया जाता है, और उस तरह की लर्निंग को हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, जो कोई बता रहा है मॉडल को कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, या ये सही है या ये गलत है। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आपके पास कोई सुपरविजन नहीं होता है, कोई आपको जानकारी नहीं होती है कि ये डेटा किस तरह का डेटा है। तो
0: जी
1: जैसे अब उस केस में जैसे मॉडल खुद से लर्न करता है, तो उसमें जैसे कई सारी अप्रोचेज हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर अप्रोच, तो उसमें जैसे अब कुछ एक समानताएं आपस में डेटा के बीच में ढूंढी जाती हैं, उन समानताओं के आधार पर अपने आप से लर्न करता है बिना किसी सुपरविजन के। और एक तीसरी जो सबसे ज्यादा जैसे अभी आपने बोला इंडस्ट्री के लिए या इसके लिए, तो जैसे उसको बोलते हैं ना री इन्फोर्समेंट लर्निंग,
0: जी
1: जैसे जो रोबोटिक्स रोबोट्स में होती है, क्योंकि
0: रोबोटिक्स।
1: आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारा काम जो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है या और भी बहुत सारे सेक्टर इन सेक्टर्स हैं, तो वहां पे बहुत सारे रोबोट्स का यूज किया जाता
0: जी
1: है जो छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर उनको असेंबल करते हैं। तो उसमें उनको बताया जाता है कि जो है अगर आपका उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग, तो अगर वो रोबोट सही काम करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, अगर वो गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट देते हैं। तो इस बेसिस में उसकी ट्रेनिंग की जाती है।
0: ओके
1: तो
0: तो
1: वो
0: पनिशमेंट मींस कि क्या
1: कुछ एक
0: पनिशमेंट।
1: रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, फिर
0: ओके
1: पॉइंट्स ये होते हैं।
0: ओके ओके
1: तो इस

0: वैसे ये तीन तरह के प्रकार हो गए। और
1: हाँ
0: जहाँ तक आपने अगर एप्लीकेशंस की बात है, तो एप्लीकेशन इनका हर जगह है, कोई भी फील्ड जो है अछूता नहीं है। जैसे चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड हो, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डिसीज डिटेक्शन है, प्लांट के अंदर क्या डिसीजेज हैं उसके बेसिस में उनके ऊपर दवाई का छिड़काव करना है। डिफरेंट तरह के सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं जो बताते हैं कि पीएच लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो उसके बेसिस में जो डेटा आ रहा है उस डेटा से मॉडल ट्रेन होता है और डिसीजन लेता है कि पंप को ऑन करना है
1: जी
0: नहीं करना है,
1: हाँ
0: पानी ऑलरेडी मिट्टी भीगी हुई है या मिट्टी में पानी की ज़रूरत है
1: जरूरत है।
0: या केमिकल का छिड़काव करना है। तो चाहे वो सारे ही क्षेत्रों में, अब जैसे चाहे वो ड्रोन का क्षेत्र हो,
1: अभी तो गाड़ियों में भी ये सारी
0: हाँ
1: चीजें
0: गाड़ियों
1: पीछे
0: में तो
1: सारी
0: बहुत
1: लगी
0: सारे
1: हैं।
0: सेंसर्स हैं।
1: अब जैसा कि मशीन लर्निंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर एक जगह पे इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो लोगों के मन में एक डर भी है और इसका इस्तेमाल हो रहा है तो खुशी भी है। डर ये इस बात की है कि भविष्य में जो है कि रोजगार के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें कमी आएगी इन मशीनों की वजह से, यानी कि इंसानों को छोड़कर मशीनें काम पे लग जाएंगी। तो क्या ये डर सही है और भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो घटेंगी या फिर अच्छी होंगी हमारे लिए, इंसानों के लिए?
0: ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इससे कोई जॉब कट नहीं होंगी, बल्कि नई तरीके की जॉब सृजित होंगी। क्योंकि जैसा कि आप कोई भी चीज़ है, जैसे हम अपने डेली के रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मोनोटोनस होते हैं,
1: जी
0: मतलब जो हम लोग ना चाहते हुए भी हमें
1: हाँ
0: करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि अगर वो काम अगर मशीन कर दे तो हम अपने समय को कहीं और उपयोगी काम में लगा सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं, जैसे डेटा साइंस के लिए या AI ML के फील्ड में बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो रही
1: जी
0: हैं और भी जॉब्स जनरेट होंगी। ह्यूमंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर मैं बोलूं कि डॉक्टर्स को हम रिप्लेस कर देंगे तो डॉक्टर को कभी रिप्लेस नहीं
1: सही
0: कर
1: बात
0: सकते।
1: है।
0: खाली ये है कि हम मशीन लर्निंग का यूज़ करके हम डिसीजंस डायग्नोस्टिक्स को बेहतर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक बेहतर एनवायरमेंट बना सकते हैं।
1: यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह भारत में कंप्यूटर के आगमन के बाद जब वो एक इंडस्ट्री का रूप लेना शुरू किया, तो जो डर था उस समय और आज वो कंप्यूटर्स हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं और ह्यूमंस ही कर रहे हैं उस पे काम,
0: हाँ
1: तो आने वाले टाइम
0: तो
1: पे भी शायद इसमें वही चीज हो।
0: जी ह्यूमन साइकोलॉजी है। जैसे पहले हम लोग जैसे जो है रिक्शा में और उसमें सामान की ढुलाई होती थी, फिर ट्रक आया तो उससे लोग परेशान हुए कि अब इससे होगा, फिर रेलवे से होने लगी, अब जैसे मेट्रो आई,
1: हाँ
0: अभी हाई स्पीड ट्रेन्स आ रही हैं।
1: जी
0: तो जो अब समय के
1: डिमांड है
0: अनुसार हमें बदलना होगा, और अगर हम बदलेंगे नहीं तो फिर मुश्किल होगी। तो
1: मुश्किल होगी।
0: समय के
1: अभी तो ये हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर में इसकी जो डिमांड है वो और बढ़ने वाली है, इसमें रोजगार भी बहुत नए नए आएंगे। तो आज के जो युवा हैं उनको इस फील्ड में जाने के लिए या फिर फ्यूचर में इससे फायदा लेने के लिए लोगों को अभी क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए?
0: एक्चुअली अभी अगर देखें तो जैसे CBSE का अभी जो पैटर्न है, इवन इफ आई मतलब अगर मैं स्कूल लेवल से बताऊं, तो स्कूल में भी अभी बहुत अर्ली स्टेज से ही पाइथन प्रोग्रामिंग और ये सब आ चुका
1: आ
0: है।
1: चुका है।
0: तो अभी जो भी है, जो भी लोग इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्हें इसको ध्यान देना होगा स्कूल लेवल से ही। और अभी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके अपने मॉडल बना सकते हैं, अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मॉडल डेवलप कर सकते हैं।
1: तो सही कहा सर आपने कि भविष्य की तैयारी और भविष्य में इससे फायदा लेना है तो अभी तैयार खुद को करना पड़ेगा, और आपने इतनी सहजता से इन सभी चीजों के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
0: मैं भी आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
1: तो क्यों ना अब इस भेंटवार्ता के बाद आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की। आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं उनका नाम है जॉर्ज कैंटर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में संख्याएं कितनी हैं? एक, दो, तीन, चार या अनगिनत हम गिनते चले जाएं, तो क्या कभी संख्याएं समाप्त होंगी? और अगर संख्याएं अनंत हैं तो क्या सभी अनंत एक जैसे होते हैं? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक महान गणितज्ञ ने इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उस महान गणितज्ञ का नाम था जॉर्ज कैंटर। हम आपको बताते चलें कि जॉर्ज फर्डिनेंट लुडविग फिलिप कैंटर का जन्म 3 मार्च सन 1845 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ। कैंटर का परिवार बाद में जर्मनी चला गया। इनका बचपन ऐसे वातावरण में बीता जहां कला, संस्कृति और बौद्धिक गतिविधियों को काफी महत्व दिया जाता था। बचपन से ही कैंटर की रुचि गणित में थी। इन्हें संख्याओं, गणनाओं और गणितीय समस्याओं को समझने में विशेष आनंद मिलता था। इनकी प्रतिभा को देखकर परिवार ने इनकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया। शुरुआत में इनके पिता चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाए, लेकिन कैंटर की रुचि गणित में अधिक थी और इसलिए इन्होंने गणित को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। जॉर्ज कैंटर ने अपनी उच्च शिक्षा जर्मनी के विभिन्न संस्थानों में प्राप्त की। इन्होंने ज्यूरिख के फेडरल पॉलिटेक्निक संस्थान में भी अध्ययन किया और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में गणित की पढ़ाई की। बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्हें उस समय के प्रतिष्ठित गणितज्ञों से सीखने का अवसर मिला। सन 1867 में इन्होंने गणित में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके बाद इन्होंने अध्यापन और शोध के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर दिया। जर्मनी के हाले विश्वविद्यालय से जुड़े जहां इन्होंने लंबे समय तक गणित पढ़ाया और शोध किया। लेकिन कैंटर केवल पुराने गणितीय सिद्धांतों को लेकर और सीख कर संतुष्ट नहीं थे। ये उन सवालों के उत्तर तलाशना चाहते थे जिन पर गणितज्ञों ने पहले बहुत कम विचार किया था। अब बात करते हैं जॉर्ज कैंटर के उस योगदान की जिसने गणित की दुनिया में एक नई क्रांति लाने का काम किया। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और इसी तरह आगे बढ़ती चली जाती हैं। इनका कोई अंतिम अंक नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत कहा जाता है। लेकिन कैंटर ने एक कदम आगे बढ़कर ये सवाल पूछा कि क्या सभी अनंत समान होते हैं? इन्होंने संख्याओं के समूहों का अध्ययन किया और ये समझाने का प्रयास किया कि अनंत को भी अलग अलग आकारों में समझा जा सकता है। कैंटर ने यह भी सिद्ध करने का काम किया कि वास्तविक संख्याओं का समूह प्राकृतिक संख्याओं के समूह से अधिक बड़ा है, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समूह को प्राकृतिक संख्याओं की तरह क्रमबद्ध करके पूरी तरह सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। जॉर्ज कैंटर को आधुनिक समुच्चय सिद्धांत का संस्थापक भी माना जाता है। समुच्चय का अर्थ है वस्तुओं या संख्याओं का एक समूह। कैंटर ने समुच्चयों का व्यवस्थित अध्ययन किया, इनके आकार की तुलना करने के लिए नई गणितीय अवधारणाएं विकसित की। इनके विचारों ने गणित की अनेक शाखाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज समुच्चय सिद्धांत गणित की बुनियादी अवधारणाओं में शामिल है। इनके जीवन में व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां भी आईं। जीवन के अंतिम वर्षों में इन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा और कई बार अस्पताल भी जाना पड़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी वैज्ञानिक या गणितज्ञ का जीवन केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे संघर्ष, निराशाएं और कठिन परिस्थितियां भी होती हैं। कैंटर का जीवन इस बात का उदाहरण है कि नए विचारों को सामने लाने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि धैर्य और दृढ़ता भी आवश्यक होती है। तो जॉर्ज कैंटर कौन थे, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, आज हमने इसके बारे में बातचीत की। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खोज और आविष्कार में, आज कंसील्ड जीपर के बारे में। कंसील्ड जिपर के बारे में जाने से पहले हमें सामान्य जिपर के इतिहास को समझना होगा। आज हम जिस जिपर का इस्तेमाल कपड़ों, बैग, जूतों और पर्स जैसी चीजों में करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब कपड़ों को बंद करने के लिए बटन, फीते और हुक का सहारा लिया जाता था। 19वीं शताब्दी में कुछ आविष्कारकों ने ऐसे उपकरण बनाने के प्रयास किए जिनसे कपड़ों और अन्य वस्तुओं को जल्दी और आसानी से बंद किया जा सके। 1893 में अमेरिकी आविष्कारक व्हिटकॉम्ब एल जटसन ने एक फास्टनिंग उपकरण प्रस्तुत किया जिसे जूते बंद करने जैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इनके उपकरण को आधुनिक जीपर के विकास की दिशा में एक शुरुआती कदम माना जाता है, लेकिन उस समय ये तकनीक आज के जीपर की तरह सुविधाजनक और भरोसेमंद नहीं थी। अब सवाल उठता है कि आज हम जिस जीपर का इस्तेमाल करते हैं उसका व्यवहारिक रूप किसने विकसित किया? तो हम आपको बताते चलें कि स्वीडिश अमेरिकी इंजीनियर गिडियन सैंडबैक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है इसके विकास में। गिडियन सैंडबैक ने जटसन के शुरुआती डिजाइन में सुधार किया और जीपर को अधिक उपयोगी बनाने में
अपना योगदान दिया। सन 1913 के आसपास इन्होंने जिपर के एक बेहतरीन डिजाइन पर काम किया। सन 1917 में इन्होंने अपने सेपरेबल फास्टेनर डिजाइन के लिए अमेरिकी पेटेंट प्राप्त कर लिया। इनके डिजाइन में दो पट्टियों पर लगे छोटे छोटे दांतों को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि स्लाइडर को ऊपर या नीचे खिसकाने पर ये आपस में जुड़ सके या अलग हो जाए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सामान्य जीपर और कंसील्ड जीपर एक ही चीज नहीं है। सामान्य जीपर के दांत अक्सर बाहर दिखाई देते हैं, जबकि कंसील्ड जीपर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि कपड़ा सिलने के बाद इसके दांत लगभग पूरी तरह छिप जाते हैं। इस जीप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कपड़े में इस तरह सिल दिया जाता है कि बंद करने के बाद इसके दांत कपड़े के अंदर की ओर छिप जाते हैं। बाहर से देखने पर यह आमतौर पर केवल एक पतली सिलाई या जोड़ दिखाई पड़ती है। इसी कारण इसका इस्तेमाल उन कपड़ों में अधिक किया जाता है जहां सुंदरता, सादगी और साफ सुथरा डिजाइन पेश करना हो। आज फैशन की दुनिया में छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव लेकर आ रही हैं। कंसील्ड जीपर इसका एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो आज हमने ढेर सारी बातें कर ली और कंसील्ड जीपर क्या है इसके बारे में भी आज हमने आपको बता दिया और ढेर सारी जानकारियां भी आपके साथ साझा कर ली। तो अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि तकनीक का उपयोग करें, तकनीक का सहारा लें विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करें और दूसरों को इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतने की सलाह आप जरूर दें। तो इन सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: करेंगे हम समझ के सिर्फ बचाएंगे नहीं
1: पैसा बढ़ाएंगे हम
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप
3: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है
4: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर
3: फिर तो नो कंफ्यूजन ओनली कॉन्फिडेंस
5: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत प्रस्तुति प्रभु शरण की थी मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है अगले कार्यक्रम से पूर्व आइए आज के कुछ कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते चलें अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे GST और राज्य की अर्थव्यवस्था संध्या 4:50 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ सरगम में संध्या 5 आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार और संध्या 6 का वक्त भी हुआ करता है प्रादेशिक मुख्य समाचारों का संध्या 7 आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी का ये रांची केंद्र आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम GST और राज्य की अर्थव्यवस्था

0: नमस्कार, आकाशवाणी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त कामिनी। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से देश सेवा के ऐतिहासिक 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रधान सेवक तक का उनका यह सफर सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि साधना का सफर रहा है। एक ऐसी साधना जिसका एकमात्र लक्ष्य है अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। आज की हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको सीधे लिए चलेंगे झारखंड के रत्नगर्भा जिले गिरिडीह और कोडरमा। हम जानेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 25 वर्षों के सेवा काल के दौरान इन खनन बहुल क्षेत्रों में हमारे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने वाले कोयला और मायका मजदूरों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। माइनिंग कल्याण, कार्यस्थल पर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण के धरातल पर जो काम हुए हैं, आज उन्हीं की गूंज इस पूरे क्षेत्र में सुनाई दे रही है।
1: झारखंड का गिरिडीह और कोडरमा जिला, ये वो इलाके हैं जिन्होंने दशकों से अपनी छाती को चीर कर देश को कोयले की गर्मी और अभ्रक की चमक दी है। लेकिन एक समय था जब इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन अंधेरे और अनिश्चितता से घिरा रहता था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ना होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और भविष्य को लेकर चिंता, यही इन श्रमिकों की नियति बन चुकी थी। साल 2014 में जब देश की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली तो उन्होंने सर्वेव जयते के मंत्र को सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की प्रगति की भव्य इमारत खड़ी करने वाले ये श्रमिक भाई बहन देश के असली निर्माता हैं। मोदी सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन DMF जैसी योजनाओं की शुरुआत की ताकि खादानों से निकलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सीधे उसी क्षेत्र के विकास और वहां के खदान मजदूरों के कल्याण पर खर्च हो सके। खुद प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर श्रमिकों के सम्मान और उनकी सुरक्षा को लेकर देश के सामने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है।
2: अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में ये भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। हमें केंद्र और राज्य के ऐसे सभी प्रयासों को पूरी संवेदनशीलता से एक साथ लाना होगा ताकि श्रमिकों को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन का सीधा असर आज गिरिडीह के बनियाडीह CCL क्षेत्र में साफ देखा जा सकता है। यहाँ न केवल कोयला उत्पादन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं बल्कि माइनिंग कल्याण और सुरक्षा के मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। धूल और धुएं के बीच काम करने वाले मजदूरों को अब आधुनिक तकनीक और सुरक्षा कवच दिए गए हैं। इस जमीनी बदलाव और प्रबंधन की प्राथमिकताओं को समझने के लिए हमारे टीम ने बात की बनियाडीह CCL के जनरल मैनेजर कन्हैया शंकर गैवाल से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।
3: गिरिडीह क्षेत्र CCL की एक बहुत ही प्रतिष्ठित इकाई है। हमारा उत्पादन पिछले साल 6 लाख टन था। इस साल हम लोगों ने एक नए माइन को अपने उत्पादन की श्रेणी में जोड़ा है जिससे गिरिडीह ओपन कास्ट का नाम है और उससे हमारा इस साल कोयले और रोडी का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। इस साल हमें उम्मीद है कि गिरिडीह एरिया इतिहास में पहली बार प्रॉफिट करने की दिशा में अग्रसर हो जाएगी। जहां तक सुरक्षा की बात है, जो भी सुरक्षा के उपकरण हमारे वर्कर्स को चाहिए वो हम समय पर उन्हें मुहैया कराते हैं और वो सुरक्षित तरीके से अपना काम करते हैं। हैं। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हम लोग पिछले 10 वर्ष में करीब करीब 520 हेक्टेयर लैंड में और 12 लाख पेड़ हमने लगाए हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर में जो एक पेड़ माँ के नाम पर कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लगाया और अधिक से अधिक पौधे हम लोगों ने लगाए। इस काम के लिए इसी काम को आगे बढ़ाते हम लोगों ने कल्याणडी में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट इको पार्क का निर्माण करवाया, जिससे आसपास के लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी को डेवलप करने की दिशा में हमारे पास अभी 4 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है जो चल रहा है। इससे काफ़ी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और हमें कोयले के उत्पादन को सप्लीमेंट करने के लिए इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। गिरिडीह की एक बहुत ही एम्बिशियस परियोजना है जो इस क्षेत्र के लिए हम लोग करीब करीब 100 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट का प्रपोजल बनाए हैं, जो हमारे कंपनी हेडक्वार्टर में एडवांस स्टेज में डिस्कशन में है। वो फाइनलाइज हो जाने के बाद इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। 100 मेगावाट
1: माइनिंग के क्षेत्र में अक्सर यह आरोप लगता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, लेकिन गिरिडीह में सीसीएल प्रबंधन ने प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को अपना मिशन बना लिया है। जीएम कन्हैया शंकर गैवाल ने हमें आगे बताया कि कैसे कोयला उत्पादन के साथ साथ प्रकृति को भी वापस लौटाया जा रहा है।
3: डिजिटल इंडिया के तहत सीसीएल जो है सो काफ़ी आगे काम कर रही है। हम लोग मेजोरिटी ऑफ द काम ई ऑफिस के तहत करते हैं, जिससे कम से कम कागज़ का इस्तेमाल होता है और सैप का भी इस्तेमाल हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जितने भी हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हैं, जो सामान की खरीद होती कंपनी में, उसमें हम लोग जेम पोर्टल के थ्रू ये सारा काम करते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन और उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग सीसीटीवी एवं आरएफआईडी का इस्तेमाल करते हैं और ये जो है सो कोल ट्रांसपोर्टेशन को अच्छी तरह से मॉनिटर करने में मील का पत्थर साबित होता है। सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना जो थी, जो कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज का शुभारंभ किया गया है। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज को जस्ट कन्वर्ट कर देने के चलते हमारे जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर मिल गया है और जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उनको 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिला है। पिछले 10 साल के अंदर ही हम लोगों ने देखा है कि ग्रेच्युटी में भी काफी एनहांसमेंट हुआ है।
1: बदलाव की अब यार सिर्फ सुरक्षा और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है, माइनिंग क्षेत्रों में सामाजिक न्याय, मजदूरों के बच्चों की आधुनिक शिक्षा और सबसे बढ़कर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक समय था जब खदानों में महिलाओं की भागीदारी ना के बराबर थी या वे सिर्फ असंगठित मजदूरी तक सीमित थी, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। जीएम कन्हैया शंकर गैवाल इस पर विशेष जोर देते हैं।
3: जो एनसीआरपी के तहत कबीरबाग में बहुत सारा काम हम लोगों ने किया, हमने 3 वाटर बॉडी को डेवलप किया है, 2 रोड को बनाया है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो उसके लिए हम लोगों ने स्मार्ट क्लास का व्यवस्था किया है, जिसमें करीब हम लोगों ने 80 लाख रुपए खर्च किए हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत हम लोग आसपास के ग्रामीणों के बीच में स्किल डेवलपमेंट के लिए सिलाई एवं कढ़ाई का प्रशिक्षण चला रहे हैं। हम लोगों ने काफी मात्रा में कम्युनिटी टॉयलेट का भी निर्माण करवाया है। इंटरनेट ऑफ एनर्जी को डेवलप करने की दिशा में हमारे पास अभी 4 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट है जो चल रहा है। गिरिडीह की एक बहुत ही एम्बिशियस परियोजना है जो इस क्षेत्र के लिए हम लोग करीब करीब 100 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट का प्रपोजल बनाए हैं, जो हमारे कंपनी हेडक्वार्टर में एडवांस स्टेज में डिस्कशन में है। वो फाइनलाइज हो जाने के बाद इस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा।
1: अधिकारियों की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या यह बदलाव सचमुच जमीन पर रहने वाले मजदूरों तक पहुंचा है? भारत सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों की जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने गिरिडीह के खदान कर्मचारियों और स्थानीय मजदूरों से सीधी बात की। उनकी प्रतिक्रियाएं आंखें खोलने वाली और दिल को छू लेने वाली हैं।
4: जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से कोल इंडिया के मजदूरों के लिए काफी फायदा हुआ है। जैसे कि कुछ योजना मजदूरों के लिए मोदी सरकार द्वारा दिया गया है, उसमें सर्वप्रथम पहले जो इंश्योरेंस था एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो 40 लाख के करीब था, अब उसे बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया है। मजदूर के बच्चे, जैसे जो बच्चे 12 में 80 से 90% मार्क्स लाते हैं, उस बच्चे के लिए कोचिंग की व्यवस्था, एवं अगर वो बच्चे IIT निकालते हैं, मेडिकल निकालते हैं, तो सरकार की ओर से, कोल इंडिया की ओर से ऐसे व्यवस्था की गई है कि उसकी सारी फीस सरकार बियर।
5: मैं राजेश यादव गिरिडीह CCL में कार्यरत हूँ, बनियाडी में, और मोदी सरकार ने हमारे कर्मियों को, हमारे परिवार को बहुत सारे लाभ दिया है। मेडिकल सुविधा दी है, महिलाओं लोगों को 2 साल का अब मातृत्व अवकाश भी दिए हैं, और मेडिकल सुविधा में आपका 1 करोड़ रुपया हम लोग को मिले।
6: मेरा नाम सुनीता कुमारी है, मैं CCL हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। खास करके महिलाओं के लिए जो सरकार किए हैं वो बहुत बेहतर ही है, और हम लोग को मैटरनिटी लीव भी 2 साल का छुट्टी दिए हैं। बिना प्रीमियम का ही हम लोग को 1 करोड़ का जीवन बीमा है, इसके लिए मैं मोदी सरकार का सदा आभार रहूँगी।
7: मोदी सरकार के बारे में कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है।

0: लोग प्रयास करते रहते हैं और प्रयास में लगे रहते हैं कि देश का ऊर्जा जो है, तो हमेशा हम लोग जो श्रमिक हैं कार्य करते हैं कोयला क्षेत्र में हो, कोयला का उत्पादन अच्छा से हो। और मोदी सरकार जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, हम लोगों को उसका लाभ मिलता है। बहुत अच्छा है जो मोदी सरकार का योजना भी चल रहा है, बहुत सारा हम लोग के साथ साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उसको भी स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है, पेंशन सबको मिल रहा है।
1: गिरिडीह के कोयला अंचल से आगे बढ़ने पर राज्य का कोडरमा जिला शुरू होता है, जिसे विश्व में मायका यानी अवरक की राजधानी कहा जाता है। कोडरमा के सुदूर जंगलों और खदानों में जीवन यापन करने वाले ढिबरा श्रमिकों के लिए लंबे समय तक कोई संगठित सुरक्षा तंत्र नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल के नीतिगत सुधारों ने कोडरमा के इन अवरक और ढिबरा मजदूरों को एक नई पहचान दी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आयुष्मान भारत योजना और श्रम योगी मानधन योजना के जरिए कोडरमा के इन दूर दराज के कामगारों तक कल्याणकारी कदम सीधे पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं कोडरमा के खदान क्षेत्रों की जमीनी हकीकत, वहां के स्थानीय श्रमिकों की जुबानी।
2: मेरा नाम केदार साहू हुआ, मजदूर है, पत्थर टाइम खटते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा पहले खटाया जाता था, 8 घंटा के बजाय 12 घंटा खटाया जाता था, कोई छुट्टी नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी एक मोदी जी का क्या कानून आया है, अब थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा राहत मिला है। अब तो 8 घंटा काम करवाता है, बीच में 1 घंटा रेस्ट भी देता है और दवा दारू देता है, और समय पर हम लोग को जो गर्दा हम लोग खाते हैं उसके लेकर अब गुड़ भी देने लगा है हम लोगों को।
3: हम लोग काम करते हैं पत्थर खदान में, तो अब हम लोग चूँकि नीचे उतरते हैं और ऊपर उतरते हैं बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो अब हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी का व्यवस्था किया गया है, बेंच वेंच का व्यवस्था वहाँ पर किया गया है, किसी को चोट वोट लग जाता है तो वहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था है। फिलहाल तो कोई संगठन नहीं है, लेकिन जहाँ हम लोग काम करते हैं पत्थर खदान में वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है।
1: गिरिडीह के बनियाडी की काली खदानों से लेकर कोडरमा की चमकती हुई अवरक की वादियों तक आज एक नई सुबह का एहसास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा के इस महायज्ञ ने देश के इन दूरदराज के अंचलों में विकास की वो लौ जलाई है जो कभी बुझने वाली नहीं है। आज का श्रमिक सिर्फ पसीना नहीं बहा रहा, बल्कि वह गर्व के साथ देश को ऊर्जावान बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा के साथ रांची से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा से देश सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिलों में माइनिंग कल्याण, सुरक्षा और श्रमिक उत्थान पर आधारित हमारी यह विशेष प्रस्तुति। इस रिपोर्ट से साफ है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया था, वह आज इन खदानों के भीतर और बाहर रहने वाले परिवारों के जीवन को रोशन कर रहा है। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम के संपादक महविश रहमान, प्रवक्ता तथा आलेखकार कुंदन कुमार वर्मा के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त कामिनी को दीजिए इजाजत। आर्थिक सुधारों और विकास के इस महाअभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और जन कल्याण के संकल्प को रेखांकित करते हुए कल फिर एक नए विषय के साथ इसी समय आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: इस समय आप सुन रहे थे माइनिंग लेबर वेलफेयर एंड सेफ्टी विषय पर ये वार्ता। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म अनवर में मिथुन की बनाए धुन पर सईद कादरी की शब्द रचना।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम कंपनियों द्वारा जारी।
3: कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म तेरे नाम में निरंजन लैंगर की शब्द रचना, शंकर एहसान लॉय की संगीत में। इस गीत को स्वर दिया है अमानत अली ने।

0: फिल्म माई नेम इज खान के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जमशेदपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पथराव में घायल कांग्रेस नेता मनोज उपाध्याय से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। तिलक पुस्तकालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पर पथराव की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। NHAI द्वारा आयोजित मीडिया टूर के तहत आज पत्रकारों ने पलमा गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का भ्रमण किया। इस दौरान बेड़ो बाईपास पर उपलब्ध तकनीकी व्यवस्थाओं, नियंत्रण कक्ष के PTZ कैमरों और सड़क सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने पौधारोपण भी किया। लोहरदगा के कृषि विज्ञान केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र प्रमुख डॉ. किरण सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक महिला किसानों ने भाग लिया। इस दौरान महिलाओं को पोषण से भरपूर पारंपरिक कृषि उत्पादों जैसे मड़वा और स्थानीय साग के उत्पादन व वैज्ञानिक खेती के अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही ग्रामीण जलापूर्ति और बल्क वाटर सप्लाई योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को समय सीमा के

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की इस संध्याकालीन सभा में। आज की इस संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए करते हैं आज के संध्याकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी श्रोताओं को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाएंगे युगल गीत। संध्या के 5:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या के 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार और संध्या के 6:02 पर हम आपके साथ होंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग के साथ। संध्या के 6:30 पर प्रसारित होगा संथाली कार्यक्रम और संध्या के 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। संध्या के 7:15 पर आप आनंद लेंगे फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। संध्या के 7:30 का प्रसारण समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि के 8:00 आप आनंद लेंगे फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि के 8:45 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को। गजलों का कार्यक्रम महफिल, इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि के 10:00। 10:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। रात्रि के 11:00 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। यहीं से प्रसारित अंग्रेजी समाचारों को आप सुनेंगे रात्रि के 11:05 पर और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम गुलदस्ता का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता।

कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं युगल गीत। कार्यक्रम का ये पहला युगल गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यस बॉस से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन है जतिन ललित के।

वास्तव कार्यक्रम का अगला नगमा सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन है जतिन ललित की।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म डार्क द फायर से। इस गीत को आवाज़ें दी थी उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के बाद श्रोताओं, आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345 4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से आपकी रेडियो सखी संगीता के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म जमीर से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक की। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है आनंद मिलन की।

फिल्म जमीर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म यादों की बारात से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। इस गीत को के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत गायक कलाकार अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में फिल्म ताल से।

फिल्म ताल से ये गीत आपने सुना गायक कलाकार उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म ताज महल से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला नगमा। गायक कलाकार किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में फिल्म स्वर्ग से सुंदर से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

फिल्म स्वर्ग से सुंदर से ये गीत आपने सुना। आइए कार्यक्रम के आखिर में अब आपको सुनवाते हैं गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म सिंदूर से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं, फिल्म सिंदूर के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। प्यार के लिए जगह ठीक नहीं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी रांची।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जामताड़ा में पीपीपी मोड पर 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में जामताड़ा के साथ ही खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और केपीएमजी द्वारा जारी समग्र जिला रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है। शिक्षा विभाग के 23 सूचकांकों पर आधारित मूल्यांकन में कोडरमा दूसरे और चतरा तीसरे स्थान पर है। लोहरदगा थाना पुलिस ने हिरही नावाटोली मार्ग पर एक अल्टो कार से 53 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से बिहार के कैमूर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। यह खेप बनारस ले जाई जा रही थी। पाकुड़ पुलिस ने मंटू दास हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों ने मृतक के साले की संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से कुल्हाड़ी और हथौरे से मंटू दास की हत्या की थी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में टाटा स्टील UISL द्वारा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। कागज रहित ई बिलिंग अपनाने वाले उपभोक्ताओं के सम्मान में उनके नाम पर पौधे लगाए गए। इस मुहिम के तहत कुल 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में शारदीय नवरात्रि के मौके पर माँ भगवती की एक अनूठी साधना भक्तों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पोचरा के झोपड़ी टोली की रहने वाली रूपा देवी नुकीली कीलों की सेज पर लेटकर 9 दिवसीय निर्जला व्रत कर रही हैं। उनके पेट पर पीतल का कलश और अखंड दीप स्थापित है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का अगला कार्यक्रम संथाली अखड़ा।

जीवन को प्रेरित को रिया। डॉक्टर कलाम तेकिना जहां उहर और विचार तहकना उना मड़ांग से लहाय रिया मेना बयाम सिखो तेहना दिन दो स्कूल कॉलेज और सेचेद आसड़ा कोरे आयमा कार्यक्रम सेमिनार और बाद विवाद हेपराव को हुई हुआ। अबो दिसम लहा से रकाब रे डॉक्टर कलाम तेकिना एनएम अडीगे मोहताना मा सनाम होर को आकिना कुकमु और बिचार बन अपनारा और आकिना मेन आकार हो डहार बन पाजा मा बयाम सिखो गला नित खाटो माचाते गलोच बन आजम किया जेंगेत जकत पुटवा मा इदी कते बयाम सिखो दला नित बन रसका जोगा मित लांगड़े सेरेंग इदी कते सापड़ावा काको रामराय टुडू और सावतेन को।

0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱨᱟᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱨᱟᱢᱨᱟᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱥᱟᱸᱫᱮᱥ
1: चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
2: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800-345-4060 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
4: ब्रो, ये फटा है।
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
6: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
6: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
7: कूल रहो।
8: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है? तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: बोयाम सिखो दिलानित मन आजम संगिया तिरल सेचत निया मोहत नुआ तोतिकिन लई सदर का लक्ष्मी मुर्मू तिकिन
2: अनुतुम दो लक्ष्मी मुर्मू तहनलिन लई आ कुड़ी होपन को लागित बेस ज्ञान अर्जाव जोंग तिना लगतिया ओल पढ़ाव दो नितोगा जुग हिसाब ते अड़ी गे लगती है चेबंग उनी कुड़ी हुयु आर चेबंग कोड़ाए हुयु ओल पढ़ाव दो मनमी जोनोम रे अड़ी तेत गे लगती है जिनिस कना ओल पढ़ाव कोम इदी कते अबो समाज रे चेबंग खन अतु दिशोम रे अड़ी गे अबो होड़ चितान रे अत्याचार को हुयु कना इन साव तेबो नेले आ ओल पढ़ाव कोम इदी कते समाज रे हिस सुय आर अंधा पतियो लेकन कथा को मिना आ नुआ को सनम जाय जोबरा को सफा लगी ते ओल पढ़ाव गे मरंग जिनिस कना मीट कथा लेका ते मेन लेखन हिस हिपिस चे वंखन अंधा पतियो लेकन जाय जोबरा दो कुड़ी आर कोड़ा शिक्षित कते एनांग गे सहा दाड़ेया ओना तिलिन मेना ओल पढ़ाव रे कोड़ा हुपुन को जहां तिने सुविधा बोन एमा को कना उनंगे सुविधा कुड़ी हुपुन को ओल पढ़ाव रे एम लगती कना अबुआ समाज रे सेदाय खोन गे कुड़ी हुपुन को ओल पढ़ाव पश्चा बांगोन भेजा कोआ चिकाते अबुआ अंधा पतियो ताहे कना जे कुड़ी होपन दो इटा ओड़ा ए चला आ चिदा बोन ओल पढ़ा ओचोया

0: ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞ
1: जाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: बुयाम सी को अब नवा जिले रे आयमा ओनकान गिद्रा मेना कोआ जाहे रिन या तो बायो बाबा बनू कोआ आर बखान मेना कोआ मेनखान उनको गिद्रा हा बेस सही देखभाल बांग होयो कना ओनकान गिद्रा को लगी गे सरकार पाटा सेट कोन मिशन बात्सल्य योजना चलाओ कना नवा योजना तहत उनकोआ हाराबुरु लगी माने आयो बाबा इयरे तहन जहाँ आयो बाबा नारे रस्का को इया उनको लगी ते उनका आयो बाबा बना होड़ा उमर जोड़ाओ कते 115 बरस हुई दरकार आर जुदी जहाँ मिड होड़ गे मिनाया एक लागे आर उन्हीं हो गिद्रे असुल लगी आज ये मड़ांग से रहजू ना इनकन उन्हीं आदो कम से कम आयु हुई दरकार 35 बरस आर अबिन पश्चिमी सिंहभूम जिला रिन निवासी तहन लगती है अबिन ठेन मुख्य द्वारा प्रमाण अखन आय प्रमाण पत्र दरकार पुलिस स्टेशन खन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हों लगती है जहाँ आय बाबा नुकु गिद्र आसू लगी को इच्छा है उनका आय बाबा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेस तहन लगती है तो नुआ योजना तहत जहाँ जरूरतमंद इच्छुक परिवार को महीने पीछे 5000 टका कौड़ी गुड़ को जामा नवा रहा जस्ती जानकारी लगी ते जिला बाल संरक्षण इकाई नोडे ना फोन नंबर हुई कना 9955131364 आर मीटर नंबर हुई कना 9090070004899 संपर्क दड़िया।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संथाली अखड़ा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
9: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट्स।

0: बचाएंगे नहीं,
1: पैसा बढ़ाएंगे हम।
2: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 के भारतीय दल से की बातचीत, कहा यह ऐतिहासिक सफलता नए भारत की बढ़ती खेल शक्ति का प्रतीक। राज्य सरकार की बड़ी पहल, जामताड़ा, खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में पीपीपी मोड पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, समझौते पर लगी मुहर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में सीसीटीवी टेंडर की प्रगति पर सरकार से मांगा जवाब, डीजीपी को सशरीर हाजिरी से छूट। झारखंड शिक्षा विभाग की समग्र रैंकिंग जारी, रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले पायदान पर, कोडरमा को दूसरा और चतरा को मिला तीसरा स्थान। और राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद, रांची में ड्रोन से निगरानी, खूंटी में किया गया मॉक ड्रिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल के साथ बातचीत की। इस अवसर पर खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और यह नए भारत की खेल शक्ति को दर्शाता है।
4: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
3: जामताड़ा में पीपीपी मोड पर 100 एमबीबीएस सीटों वाला 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले चरण में जामताड़ा के साथ ही खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
5: जामताड़ा जिलों का जो सपना था वो साकार हुआ। आज हम लोगों ने जामताड़ा जिला को मेडिकल कॉलेज हमने दिया है। जामताड़ा जैसे एरिया में मेडिकल कॉलेज का खुलना वहाँ के मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। आसपास के जो एरिया है उनका भी डेवलप होगा, वहाँ भी जो नियमित हम लोग सेवा दे सकते हैं।

0: के टेंडर की प्रगति पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने डीजीपी को सशरीर उपस्थिति से छूट दे दी। महाधिवक्ता रोहित राय ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके आवेदन 29 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर राज्य के रामगढ़ और लोहरदगा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। रामगढ़ में महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों लोहरदगा में 100 से अधिक महिलाओं को मड़ुआ जैसी पारंपरिक फसलों की वैज्ञानिक खेती के लिए प्रेरित किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और केपीएमजी द्वारा जारी समग्र जिला रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा है। शिक्षा विभाग के 23 सूचकांकों पर आधारित इस मूल्यांकन में कोडरमा दूसरे और चतरा तीसरे स्थान पर रहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में बात पीएम विश्वकर्मा योजना से लोगों के जीवन में आए बदलाव की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र जन सेवा से देश सेवा आज विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। इसी विजन के तहत शुरू हुई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना राज्य के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक नई उड़ान बनकर आई है। कभी जी तोड़ मेहनत कर गुजारा करने वाले शिल्पकार अब इस योजना के माध्यम से आधुनिक मशीनों और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, जिससे उनके चेहरों पर एक बार फिर खुशी लौट आई है। आइए सुनते हैं इसी संकल्प को रेखांकित करता देश के प्रधानमंत्री का ये संदेश।
2: हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। आपको आधुनिक टूलकिट के लिए 15,000 रुपये का टूलकिट वाउचर भी मिलेगा। आप जो सामान बनाएंगे उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग से लेकर मार्केटिंग में भी सरकार हर तरह से मदद करेगी।
1: प्रधानमंत्री के इसी जन कल्याण के संकल्प को पलामू के धरातल पर उतारने में उद्योग विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पलामू के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रघुवर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 18 अलग अलग तरह के पारंपरिक और हुनरमंद व्यवसायों को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ पाकर सदर प्रखंड के सुआ कोरिया निवासी राजमिस्त्री शंभू कुमार और गुड्डा गुड्डी का व्यवसाय करने वाले अलीमुद्दीन अंसारी जैसे अनेक शिल्पकारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
3: भी है हम प्रधानमंत्री योजना का लाभक है। 1,00,000 रुपए लोन लिए हैं और हम उसे अपना रोजगार के लिए कुछ सामान लिए हैं, जैसे कि हम राजमिस्त्री काम करते हैं। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको धन्यवाद देते हैं।
4: और जी हमको 1,00,000 रुपया लोन पास, उसी से मैं कारोबार कर रहा हूँ और घर पर बना के मेला वगैरह में भी जाके बेचते हैं और हम लोग के बाल बच्चा पोस रहे हैं। इसी से धन्यवाद करता हूँ सरकार को।
1: पलामू के इन शिल्पकारों की बदलती जिंदगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनसेवा का ये महाअभियान आज देश सेवा का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए पलामू से जसप्रीत सिंह के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फिरायलाल चौक से सुजाता चौक तक फ्लैग मार्च निकाला और ड्रोन से निगरानी की। वहीं खूंटी जिले में एसपी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल का आयोजन कर जवानों को भीड़ नियंत्रण और सतर्कता बरतने के कड़े निर्देश दिए गए।
5: हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का अभ्यास किया यहाँ पे, जिसमें कि जो लोगों को कैसे लयबद्ध तरीके से कार्रवाई होती है, किस प्रकार से हम लोगों को एक्शन लेना है कि अगर

0: कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उसके बारे में जानकारी दी गई और उसमें सभी ने अच्छे से अपने जो कार्रवाई उनको बताई गई थी उसके द्वारा कार्रवाई किया गया है। हम लोग पर आशा करते हैं कि जो हम लोग की मॉक ड्रिल है इसका हम लोग को वस्तु स्थिति में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपने जिले में जो भी त्यौहार चल रहे हैं उनको संपन्न कराने में कामयाब।
1: सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में टाटा स्टील UISL द्वारा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। कागज रहित ई बिलिंग अपनाने वाले उपभोक्ताओं के सम्मान में उनके नाम पर पौधे लगाए गए। मौके पर SP मनोज स्वर्गियारी और नगर आयुक्त ने इस पर्यावरण पहल की सराहना की। और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले 4 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 16 अक्टूबर को सुबह में कोहरा या कुहासा छाए रहने की संभावना है, जबकि बाद में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 के भारतीय दल से की बातचीत, कहा यह ऐतिहासिक सफलता नए भारत की बढ़ती खेल शक्ति का प्रतीक। राज्य सरकार की बड़ी पहल, जामताड़ा, खूंटी, धनबाद और गिरिडीह में PPP मोड पर बनेंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, समझौते पर लगी मुहर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में CCTV टेंडर की प्रगति पर सरकार से मांगा जवाब, DGP को सशरीर हाजिरी से छूट। झारखंड शिक्षा विभाग की समग्र रैंकिंग जारी, रामगढ़ जिला पूरे राज्य में पहले पायदान पर, कोडरमा को दूसरा और चतरा को मिला तीसरा स्थान। और दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद, रांची में ड्रोन से निगरानी, खूंटी में किया गया मॉक ड्रिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
3: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
2: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
3: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
4: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
6: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
7: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
8: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
9: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
8: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
9: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
8: माहवारी प्रारंभ होती है,
9: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
8: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: दुर्गा पूजा सहित अन्य त्योहारी सीजन को देखते हुए गोड्डा पुलिस तथा प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। इसको लेकर गोड्डा में एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग चलाया जा रहा है। गोड्डा पुलिस विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस एंटी ड्रग्स कैंपेनिंग के दौरान बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर सहित पैसा एवं बाइक बरामद कर पुलिस ने एक बड़े माफिया गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गत दिनों इसकी जानकारी देते हुए गोड्डा SDPO आकाश कुमार ने बताया कि
2: एक गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड्डा जो ब्लॉक थ्री मैदान उसके निकट कुछ व्यक्ति हैं जो ब्राउन शुगर का क्रय विक्रय कर रहे हैं। गुप्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, तलाशी किया गया और पूछताछ किया गया। तो कलेक्टिवली जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने लगभग जो कैश है 58,250 रुपये कैश, 51 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 वेइंग मशीन, एक SUV कार, तो 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है।
1: विश्व मानसिक दिवस के अवसर पर गत दिनों गोड्डा कॉलेज एवं महिला कॉलेज प्रसार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खासतौर पर मनोविज्ञान विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर गोड्डा कॉलेज के सभागार में छात्रा शिखा कुमारी ने अपनी कविता के माध्यम से छात्राओं के बीच पढ़ाई एवं छात्रों को होने वाले आवश्यक दबाव का चित्रण किया। अपनी कविता के माध्यम से शिखा कुमारी ने कहा,
3: ना कहीं निकला खून, ना कोई चोट है, फिर न जाने ये कैसा अंदरूनी खून है, आईने के सामने चेहरा तो मुस्कुरा रहा है,

0: मुझे क्या हुआ जा रहा है। दिन की रोशनी में जो धागे लगाता है वो सब रात को अचानक सहम सा जाता है। हर रात सिसकियों और तन्हाई में बीत रही है। जिंदगी रोज मुझसे मेरा सुकून छीन रही है। चीख नहीं निकलती बस तब घुटता है जब अंदर ही अंदर कोई सपना टूटता है। सपनों के टूटने का दर्द क्या होता है ये सिर्फ वही जानता है जो जाग कर सोता है।
1: चिकित्सा संपर्क से जुड़े डॉक्टरों ने लगातार आंदोलन कर रखा है। राज्य चिकित्सा संगठन के आह्वान पर गोड्डा में भी चिकित्सकों की ओर से आंदोलन करते हुए काला बिला लगाकर अपनी मांगों को बुलंद किया है। इस दौरान गोड्डा एमए सचिव डॉक्टर आकाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि
2: डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट पिछले कई सालों से हम लोग हर बार आश्वासन मिलता है लागू हो जाएगा, लेकिन वो ठंडे बस्ते पे ही पड़ा हुआ है। इस बार आर या पार की लड़ाई है, हम लोग इसको पूरा पूरी प्रोटेक्शन को लागू करवाएंगे।
1: गोड्डा में दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि को लेकर माहौल भक्तिमय हो गया है। हर तरफ मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। इस बीच गोड्डा में पर्व को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है। गोड्डा में लगातार 3-4 वर्षों से गोड्डा गुरुकुल डांस अकेडमी की ओर से होने वाले डांडिया नाइट्स का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर संस्थान की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। इस वर्ष खरीफ फसल की तैयारी को लेकर किसान काफी खुश है। किसानों के खेतों में लहलहाते धान को देखकर सभी किसान प्रसन्नचित होकर मां दुर्गा भगवती की आराधना में लीन है। गोड्डा के किसानों का कहना है कि इस वर्ष बेहतर बारिश के कारण उनके फसल बेहतर है तथा फसल में कीट पतंग नहीं लगने के कारण उन्हें इस बार फसल के बेहतर होने की उम्मीद है। गोड्डा के जिला कृषि पदाधिकारी ने भी लक्ष्य निर्धारित करके बताया कि इस बार किसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
3: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित जिले में आजकल। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में इस समय संध्या के 7:16 हो चुके हैं। वक्त है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद इस कार्यक्रम आपकी पसंद में। श्रोताओं, आजकल नवरात्रि की धूम हर जगह मची हुई है। पूरे शहर में जगमगा रही है रोशनी, पंडालों से आ रही है खुशबू और हवा में एक अलग ही भक्ति का रंग घुला हुआ है। आज आप सभी को आज के इस पावन पर्व और पंचमी तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी श्रोताओं को जय माता दी। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि की पंचमी तिथि है, यानी वो पावन दिन जब माता रानी के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय और उनकी माता होने के कारण ही देवी को स्कंद माता कहा जाता है। माँ का यह रूप ममता और वात्सल्य से भरा हुआ है। जिनकी गोद में बाल रूप में भगवान कार्तिकेय बैठे हैं। कहते हैं कि जब माँ स्कंद माता की आप आराधना करते हैं तो आपको न सिर्फ माँ का आशीर्वाद मिलता है बल्कि उनके प्रतापी पुत्र कार्तिकेय की कृपा भी प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपको अपने आप ही मिल जाता है। जो लोग अपने कैरियर, पढ़ाई या जीवन में सही दिशा की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आज की शाम माँ के इस ज्ञान और बुद्धि वाले स्वरूप को याद करने का सबसे उत्तम समय है। तो कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है ग्राम नवागांव मुढ़ई पार से राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से। और हमें खत लिखा है सोहन साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर, टाकेश्वर कुसाल और तुलेश साहू ने। ग्राम बनभगेरा राजनंदगांव से योगेश सारवा, श्रीमती आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवांडकर, श्रीमती सरिता गवांडकर और प्रिंस एकांश गवांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर के श्रीमती वैशाली शैलेश गवांडकर, श्वेता सुमित गवांडकर और कुमारी ध्वनि गवांडकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बदलापुर मुंबई से अपनी फरमाइश हमें भेजी है सिद्धांत गवांडकर, प्रणीता गवांडकर और टुकटुक गवांडकर ने। बड़ा बाम्बू गोपालपुर के संतोषी महतो और जय कुमार महतो ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। छोटा निमड़ी चायबासा के बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार ने भी हमें अपनी फरमाइश खत के माध्यम से भेजी। सद्भावना रेडियो श्रोता संघ पीएम सिटी बनारस यूपी के आजन कुमार सिंह, वंदना, विनती, विनायक, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित और पुलकित की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष। चंदा रेडियो श्रोता संघ चंदा चौक अंधरा ठाड़ी मधुबनी बिहार के सोविकान झा सज्जन, हेमलता सज्जन, मोहित, मनोज सज्जन, लकी सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एस के सज्जन ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। नांगलोई दिल्ली से हमें खत लिखा है मदन चक्रवर्ती और राजेंद्र चड्ढा ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म क्रांति का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी है गायक कलाकार महेंद्र कपूर और साथियों ने। तो श्रोताओं, आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म क्रांति के इस गीत को आपने सुना गायक कलाकार महेंद्र कपूर, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों के स्वरों में। इस गीत के बोल लिखे थे संतोष आनंद ने और धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म लव यात्री से। आवाजें हैं गायक कलाकार उदित नारायण, नेहा कक्कड़, पलक मुच्छल और राजा हसन की। बोल लिखे हैं सबीर अहमद ने और धुन है तनिष्क बागची की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं बड़ी बाजार चायबासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। अलगीडाट कोरबा छत्तीसगढ़ के जोहित यादव, विपिन यादव, आयुष यादव, श्रीमती फुलजी यादव और समस्त यादव परिवार की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं कुचाई विद्री से केपी सोए, सरिता दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना सोए और सनी सोए। ग्राम सूराबेड़ा के भा सिंह सरदार, धनी सरदार, कमल सिंह सरदार, सुखमती सरदार, रमेश, अंशु और वीरू सरदार ने भी इसी गीत की फरमाइश की। इचल करंजी महाराष्ट्र से हमें खत लिखा है बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म लव यात्री से।

फिल्म लव यात्री के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM की 101.7 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 7:30 हो चुके हैं। वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ᱛᱟ ᱥᱟᱠᱲᱟᱭᱩᱢ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟ ᱥᱟᱜᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱟᱱᱤᱢᱤᱛᱮᱱ ᱟᱭ ᱩᱲᱤ ᱟᱭ ᱜᱩᱲᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱦᱚ ᱵᱟᱥᱤᱠᱟᱭᱱᱟ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟ ᱥᱟᱠᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱨᱤᱴ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱮᱱᱮᱱ ᱪᱟ ᱥᱟᱠᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱤᱨᱤᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱰᱚᱵᱨᱚ ᱵᱩᱲᱤ ᱩᱞᱤ ᱚᱰᱚᱜ
1: ᱟᱥᱟᱢᱤᱱᱤ ᱜᱩᱯᱠᱟ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱪᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱩᱨᱤᱴ ᱫᱚ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱠᱟᱞᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱟᱞᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱜᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱮᱥᱩ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱛᱮᱱᱮ ᱢᱟᱥ ᱢᱟᱛᱮ 2016 ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱪᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱱᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱥᱮᱥᱮᱱ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱬ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮ ᱠᱚᱦᱚᱱ ᱠᱚᱢᱟ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱩᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱤᱢᱤᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱮᱸᱜᱟ ᱚᱰᱚᱜ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱪᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱯᱟᱹᱭᱴᱤ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱟᱢᱟᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱚᱰᱚᱜ ᱵᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱹᱭᱮ ᱱᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱱᱤᱛᱤᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱱᱮᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱛᱮᱱᱮ ᱚᱰᱚᱜ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱫᱤᱱ 15 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱨᱮᱭᱚᱜᱮ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟᱛᱤᱝ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱩᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱩᱲᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱚᱰᱚᱜ ᱢᱤᱥᱮ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱵᱩᱲᱤ ᱚᱰᱚᱜ ᱟᱥᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱮᱛᱮ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱮ ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱡᱤ ᱦᱟᱢ ᱥᱟᱵᱷᱤ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟᱣᱟᱝ ᱠᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱠᱮ ᱩᱯᱞᱚᱠᱥ ᱯᱚᱨ ᱵᱚᱦᱚᱛ ᱵᱚᱦᱚᱛ ᱥᱩᱵᱠᱟᱢᱱᱟ ᱫᱮᱛᱮ ᱦᱮᱢ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱡᱤ ᱥᱟᱞ 2016 ᱥᱮ ᱭᱟᱦ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱢᱟᱱᱟᱭᱟ ᱡᱟ ᱨᱟᱦᱟ ᱦᱮ ᱚᱨ ᱥᱟᱵᱷᱤ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟᱭ ᱟᱜᱮ ᱦᱮ ᱯᱩᱨᱩᱥᱚᱝ ᱠᱮ ᱥᱟᱛ ᱠᱟᱸᱫᱷᱮ ᱥᱮ ᱠᱟᱸᱫᱷᱮ ᱢᱤᱞᱟᱠᱟᱨ ᱪᱚᱞ ᱨᱤᱦᱤ ᱦᱮ ᱯᱩᱨᱩᱥ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮ ᱢᱮ ᱯᱮᱦᱞᱮ ᱥᱮ ᱟᱜᱮ ᱛᱷᱮ ᱟᱵ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟᱭ ᱵᱷᱤ ᱥᱟᱵᱷᱤ ᱪᱷᱮᱛᱨᱮ ᱢᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱟᱨᱡᱮ ᱢᱮ ᱵᱷᱤ ᱵᱚ ᱟᱯᱱᱤ ᱭᱳᱜᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱨᱤᱦᱤ ᱦᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱷᱟᱫᱮ ᱥᱩᱨᱚᱠᱥᱟ ᱚᱨ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱢᱮ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟᱣᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱚᱠᱨᱤᱭᱚ ᱵᱷᱟᱜᱤᱫᱟᱨᱤ ᱫᱮᱠᱷᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱤᱞ ᱨᱤᱦᱤ ᱦᱮ आज महिलाएं पशुपालन कृषि इसके साथ ही जो आधुनिक समय में बहुत सारे तकनीक आ गए हैं उनका भी उपयोग हमारी महिलाएं कर रही है इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी उन्हें बहुत सारा योगदान मिल रहा है
0: ऐसो सारी का जी आसाम आई तिकिन की हिंदी आयाम तिकिन जगरत बुआ नुइला जोगरिया टेनेट पिटिका रिया देंगा ते कोई हन को इसो पूरे सिलाई कढ़ाई अंडो के चास वास लुगेम आना सुतेम बोर इमन इमन टेनेट पैटरे इस पूरे देंगा को ᱮᱢᱮᱛᱟᱱᱟ ᱚᱰᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱤᱱᱤᱛᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱮᱛᱚ ᱠᱮᱱᱮ ᱛᱮ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱨᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱮ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱱᱤᱛᱟᱹᱜ ᱨᱮᱜᱮᱞᱤᱧ ᱛᱩᱱᱰᱩᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱥᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱠᱟᱣ ᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱨᱤᱭᱚ ᱞᱟᱝ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱞᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱟᱝ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱨᱜᱤᱭ ᱥᱟᱵᱡᱚᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱚ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱤ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟᱣ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱩᱱᱰᱤ ᱠᱤᱭᱟᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱭᱟᱞᱟᱝ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱡᱤ ᱟᱡ ᱦᱟᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱨᱮᱝᱜᱮ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱞᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱵᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱤ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱡᱤ ᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱞᱚ ᱵᱷᱟᱨ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮ ᱞᱟᱜᱮ ᱨᱮᱦᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱤᱥᱢᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱠᱮ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱟᱞᱟᱜ ᱟᱞᱟᱜ ᱥᱟᱜ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱞᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚᱝ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱠᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱤᱥᱢᱮ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱢᱩᱞᱤ ᱥᱟᱠᱟᱨᱠᱟᱱᱫ ᱥᱟᱞᱡᱟᱢ ᱚᱨ ᱪᱩᱠᱚᱱᱫᱚᱨ ᱦᱮᱸ ᱤᱱᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱴᱷᱚᱱᱰ ᱠᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱢᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱛᱤ ᱦᱮᱸ ᱟᱵᱷᱤ ᱤᱥ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱢᱮ ᱨᱚᱵᱤ ᱠᱮ ᱢᱚᱥᱚᱢ ᱢᱮ ᱤᱱ ᱥᱚᱵ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱤ ᱵᱷᱤ ᱟᱵ ᱥᱩᱨᱩ ᱦᱚ ᱜᱮᱭ ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱞᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚᱝ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱦᱱᱮ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱱᱚᱨᱚᱢ ᱣᱟ ᱜᱟᱦᱨᱤ ᱢᱤᱴᱴᱤ ᱪᱟᱦᱤᱭᱮ ᱤᱥᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱤᱥᱠᱤ ᱠᱷᱮᱛᱤ ᱠᱮ ᱞᱤᱭᱮ ᱥᱚᱵ ᱥᱮ ᱯᱮᱦᱞᱮ ᱛᱚ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨᱤ ᱵᱚᱦᱚᱛ ᱦᱤ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱦᱮᱸ ᱛᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱟᱪᱷᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱤ ᱜᱟᱦᱨᱤ ᱡᱩᱛᱟᱭ ᱠᱟᱨᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱜᱚᱵᱚᱨ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱫ ᱰᱟᱞᱮ ᱤᱱᱠᱤ ᱵᱩᱣᱟᱭ ᱥᱤᱫᱷᱮ ᱵᱤᱡᱚᱝ ᱠᱮ ᱢᱟᱫᱷᱭᱚᱢ ᱥᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱛᱤ ᱦᱮ ᱚᱨ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱥᱮ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱠᱤ ᱫᱩᱨᱤ ᱠᱟᱨᱤ 20 ᱥᱮ 30 ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱟᱠᱷᱱᱟ ᱪᱟᱦᱤᱭᱮ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱪᱤ ᱤᱱ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱞᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱚ ᱢᱮ ᱦᱟᱢᱟᱨᱤ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱟᱦᱱ ᱭᱟ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱨᱟᱠᱷᱮ ᱠᱤ ᱟᱵᱚᱥᱚᱠᱛᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱤᱭᱚᱝᱠᱤ ᱚᱛᱭᱟᱫᱷᱤᱠ ᱯᱟᱱᱤ ᱠᱮ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚ ᱵᱷᱤᱛᱟᱨ ᱢᱮ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱞᱤ ᱥᱚᱵᱡᱤᱭᱟ ᱩᱱᱢᱮ ᱥᱚᱲᱚᱱ ᱦᱚᱱᱮ ᱠᱤ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲ ᱡᱟᱛᱤ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱤᱥᱞᱤᱭᱮ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱨᱟᱠᱷ ᱠᱟᱨ ᱟᱵᱚᱥᱚᱠᱛᱟ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱠᱟᱨᱮ ᱚᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱯᱚᱛᱣᱟᱨ ᱱᱤᱭᱚᱱᱛᱨᱚᱱ ᱠᱟ ᱵᱷᱤ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱨᱟᱠᱷᱮ ᱠᱤᱭᱚᱝᱠᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱯᱚᱛᱣᱟᱨ ᱩᱜᱟᱛᱮ ᱦᱮ ᱵᱟᱲᱛᱮ ᱦᱮ ᱛᱚ ᱮᱥᱮ ᱢᱮ ᱡᱚ ᱯᱷᱚᱥᱞᱚᱝ ᱠᱟ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱦᱮ ᱵᱚ ᱥᱟᱦᱤ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱱᱟᱦᱤ ᱦᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱦᱮ
0: ᱤᱭᱟ ᱮᱥᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱟᱥᱟ ᱛᱮᱠᱤ ᱵᱮᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱠᱮᱰᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱥ ᱟᱜᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱲ ᱵᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱞᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱫᱟᱠᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱩᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱴ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱮᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤᱞᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱛᱟᱜᱼᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱱ ᱜᱚᱰᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱥᱤ ᱵᱩᱥᱟᱹᱨ ᱞᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱟᱱᱤᱝ ᱱᱚ ᱨᱮᱵᱚ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱨᱚᱣᱟᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱩᱰᱤ ᱠᱤᱭᱟᱨᱤ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱫᱟᱭᱮ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱱᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱛᱮᱨᱤᱭᱚ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱱᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱱᱰᱚ ᱠᱟᱠᱮᱲᱤ ᱚᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱫᱩᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱮᱥᱚ ᱠᱚᱢ ᱡᱤᱭᱮ ᱱᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱴᱟᱭ ᱚᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱟᱱᱰᱚ ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱵᱤᱛᱮᱨ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱵᱩᱜᱤ ᱱᱮ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱜᱤᱛᱤᱞ ᱢᱤᱥᱮ ᱠᱮᱱ ᱚᱛᱮ ᱨᱮᱵᱚ ᱨᱩᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱞᱮ ᱠᱚ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱤᱴ ᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱵᱟᱣᱟ ᱟᱱᱰᱚ ᱚᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱪᱟᱥ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱥᱟ ᱡᱤᱵᱚ ᱞᱮᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮ ᱟᱞᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱤᱭᱚ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱞᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱰᱚ ᱚᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱲᱣᱟᱞᱤ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱠᱟᱱᱟᱜ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱤᱥᱤᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱩᱜᱤᱣᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱵᱷᱟᱣ ᱪᱮ ᱦᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱚ ᱵᱮᱠᱟᱨ ᱠᱟᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱵᱚ ᱱᱟᱢᱤᱭᱟ
1: ᱵᱤᱞᱠᱩᱞ ᱰᱚᱵᱨᱩ ᱡᱤ ᱦᱟᱢᱟᱨᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱚᱦᱚᱱ ᱵᱤᱡ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱪᱩᱱᱟᱣ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱦᱮᱸ ᱵᱚ ᱟᱪᱷᱮ ᱚᱨ ᱥᱚᱥᱛ ᱵᱤᱡᱚᱱ ᱠᱟ ᱦᱤ ᱪᱩᱱᱟᱣ ᱠᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱡᱟᱫᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱦᱮ ᱚᱨ ᱩᱱᱱᱚᱛ ᱠᱤᱥᱢᱚᱱ ᱠᱟ ᱪᱩᱱᱟᱣ ᱠᱟᱨᱮ ᱠᱤᱭᱚᱠᱤ ᱤᱥᱥᱮ ᱡᱚ ᱩᱱᱠᱟ ᱵᱟᱲᱵᱷᱟᱨ ᱦᱮ ᱵᱚ ᱵᱷᱤ ᱥᱟᱦᱤ ᱨᱩᱯ ᱥᱮ ᱦᱚᱜᱟ ᱚᱨ ᱡᱚ ᱩᱯᱚᱡ ᱦᱮ ᱵᱚ ᱵᱷᱤ ᱠᱟᱯᱷᱤ ᱟᱪᱷᱟ ᱦᱚᱜᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱮ ᱠᱤᱥᱟᱱ ᱵᱷᱟᱭ ᱵᱚᱦᱚᱱᱚ ᱠᱚ ᱡᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟ ᱢᱩᱞᱭᱚ ᱦᱮ ᱵᱚ ᱥᱟᱦᱤ ᱢᱩᱞᱭᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱞᱮᱜᱟ ᱡᱤᱥᱥᱮ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱡᱟᱭ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱤ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱤᱞᱮᱜᱟ
0: ᱤᱭᱟ ᱥᱚ ᱥᱟᱨᱮ ᱠᱟ ᱡᱤ ᱟᱥᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱮᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱪᱟᱥᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱮᱞᱟᱢᱤᱭᱟᱱ ᱦᱚ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱫᱚᱨᱟᱝ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱵᱮᱞᱢᱟᱛᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱭᱛᱮ

0: किसान भाई बहनों, अभी हम आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का, बेलमती माई हास्ता और साथियों के स्वर में।
1: निंदुरा चनाम चासागे को एलामियन बरिया संदेश को वो आयोम लिया।
2: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
4: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
3: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
5: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
3: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
6: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें हैं, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
3: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
7: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी, जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
3: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
8: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
3: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
9: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
3: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
0: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है।
1: निन संदेश को जन्म चाचा के को एलामियन बेपटा जपगर वो आयुम लिया मिश्रित बागवानी से लाभ विषय रे सफल महिला कृषक लोते जपगर गुंजा मांझी अंडो अकिंग लोते बेपटे जपगर हम नाकिंग आसामानी गो।
10: किसान भाई बहनों, आज हम आपकी मुलाकात एक अनुभवी महिला कृषक से करवा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए।
11: हाँ आशा जी, मेरा नाम गुंजा मांझी है और मेरा गांव का नाम बिरामचंद्रपुर है, रेकला खरसा जिला।
10: जी, आपका हम कार्यक्रम में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
11: जोहार, मेरे तरफ से सबको जोहार।
10: जी गुंजा जी, आप कृषि कार्य कब से कर रही हैं?
11: आशा जी, बहुत पहले से ही करते हैं, जब छोटे थे उसी टाइम से करते हैं। ससुराल में भी खेती ही करते थे, खेती से ही सब कुछ होता था।
10: जी
11: और अभी तो मेरा हस्बैंड का तो नौकरी हो गया, तो वो नौकरी करते हैं, तो मैं अकेले संभालती हूँ, खेती बाड़ी करती हूँ। हाँ, और इस बार धान भी लगाए हैं हम लोग का बाड़ी में ही।
10: जी जी।
11: हाँ, खेती में तो जो होता है वो होता है, तो खेत बाड़ी में लगाए हैं वो TRS के विधि से, जैसे वो एक एक बीज एक एक फुट के पीट के दूरी में बीज डाले हैं, और जुलाई के महीने में ही 22 जुलाई को डाले हैं बीजा, तो उसको निकोनी करना पड़ता है और उसमें एक कोड़ना होता है, जैसे खेते में हम लोग लगाते हैं।
10: जी।
11: हाँ वैसा नहीं, इसको पूरा रोप के मिट्टी को अच्छा से गोबर डाल के रखते हैं, अच्छे से पूरा घास उस हटा देते हैं, उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन उसको बीजा डाल देते हैं एक फीट के ये दूरी में, और उसके बाद घास होता है तो उसको साफ करते हैं, साफ करने के बाद थोड़ा गोबर डालते हैं, उसके बाद उसको कोड़ते हैं।
10: अच्छा, किस तरह के किस्म का धान लगाई है?
11: मोटू धान, मोटू पतलू जो होता है, मतलब 140 दिन में होता है। पानी वगैरह नहीं देना होता है, जो बारिश होता है उसी से हो जाता है।
10: जी जी।
11: हाँ,
10: तो लगभग अभी आपका ये पक के तैयार हो गया है?
11: हाँ, पक के तैयार हो गया है, अभी कटने ही वाले हैं।
10: जी। इसके अलावा आप फलदार वृक्ष भी लगाई हुई है, बागवानी भी की हुई है, फूलों की भी आप खेती की हुई है?
11: हाँ, फूल भी अभी सीजन वाला है, और सीजन वाला तो अभी ठंडा के टाइम में जैसे डलिया पिटूनिया हो गया, जेरबेरा, बहुत सारा उसका वेराइटी आता है, वो सब अभी लगाएंगे। और फ्रूट का गाछ हो गया, लीची, आम, अमरूद, अनार, नींबू, एप्पल बेर, बहुत सारे इसका भी वैरायटी है, उसको भी लगाए हुए हैं। साल में 2-3 बार उसको निकोना होता है, साफ सफाई करना होता है, और गोबर वोबर डाल के उसको अच्छा से कोड़ देते हैं, तो बढ़िया फल आता है। और इस बार तो आम में वो कवर भी डाले थे, आम को कवर किए थे, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, दाग नहीं होगा, तो उसमें अच्छा से कलर भी आएगा, तो वो अच्छा से मतलब उसका ये भी अच्छा से दाम अच्छा से मिलता है।
10: कि आप किस तरह का अनुभव प्राप्त किए हैं कृषि कार्य में, जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दे दी।
11: अनुभव पहले से ही मेरे साथ ससुर करते थे, सब चीज का फलदार वृक्ष भी किए हैं और बागवानी भी करते थे, टमाटर, बैगन, मूली, गाजर, सब चीज करते थे, उसी से सीखे हैं, देखे हैं।
10: जी।
11: हाँ,
10: तो ये करते करते लगभग बहुत साल हो गए हैं।
11: हाँ, बहुत साल हो गया। और अभी तो अकेले संभालते हैं, सब पानी वगैरह देते हैं, कभी कभार मतलब वो लेबर लगाते हैं डेली।

0: खुद का है
1: जी। आप इस कृषि कार्य में किस तरह की योजना का आपको लाभ मिला है?
0: हाँ, टाटा स्टील फाउंडेशन के तरफ से लाभ मिला है और बहुत सारा गाछ दिए हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, यही सब मिला है और बाकी सब सामान भी मिलते रहता है, खाद वगैरह हो गया
1: जी।
0: हाँ, उसमें से वो कैसे कटिंग होता है, कैसे मतलब ये करना पड़ता है, वो ट्रेनिंग भी होता है, उन लोग ट्रेनिंग भी देता है, तो टाटा स्टील की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प मिला है, नहीं तो इतना सारा नहीं कर पाते, इतना सारा गाछ नहीं लगा पाते
1: जी।
0: हाँ,
1: तो ये जो आपको प्रशिक्षण मिला है ये आपका निःशुल्क मिला है आपको?
0: हाँ
1: जी। और इसके अलावा जो खाद बीज ये भी आप स्वयं से खरीदती हैं या ये भी आपको वहाँ से प्राप्त होता है?
0: कुछ कुछ वहाँ से प्राप्त होता है और कुछ कुछ हम लोग खरीदते हैं
1: जी। कृषि कार्य से आपको किस तरह का लाभ मिल रहा है?
0: लाभ मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, सब चीज में अच्छा मार्केट भी है और असल में हम लोग केमिकल वगैरह जैसे कार्बाइड आम में सबको डाल के पकाता है, केला भी पकाता है, हम लोग अपने से पकाते हैं, केमिकल नहीं देते हैं, कार्बाइड वगैरह नहीं देते हैं, खुद से पकाते हैं, वो मीठा भी होता है, स्वाद भी रहता है, बहुत अच्छा और आमदनी भी मिलता है, घर से सब खत्म हो जाता है, आम तो लूटपाट मतलब होता नहीं है, सब कोई ऑर्डर दे देता है।
1: अच्छा, आपको ऑर्डर आता है?
0: ऑर्डर आता है हाँ। अच्छा। तो अभी तो गच सब गच बड़ा नहीं हुआ है, कुछ कुछ गच है, कम गच है, अभी जैसे 120 गच लगाए हैं आम और अमरूद मिला के, अभी वो 2-3 साल में वो निकल जाएगा, इस साल से ही मतलब 1-2 ठो करके रखेंगे हम लोग गच में, गच हम लोग का बहुत अच्छा हो गया है, बड़ा बड़ा हो गया है, मात्र 13 महीना हो रहा है, पिछले साल 2025 में 2 सितंबर को लगाए थे
1: जी।
0: तो अभी तक हम लोग का 13 महीना है मात्र हो रहा है, तो इतना बढ़िया बढ़िया हम लोग गच बना लिए हैं, मतलब मेहनत किए उसको, गच को देखभाल किए, तो अच्छा अच्छा गच सब बड़ा हो गया है।
1: बिल्कुल, ये तो सही बात है, अगर सही देखभाल किया जाए तो पौधा है वो भी काफी अच्छा होगा,
0: अच्छा होता है हाँ। और कटिंग वगैरह भी करते हैं, कटिंग करने से उसमें और ज्यादा फल आता है, अमरूद भी 12 महीना मतलब होते रहता है, खाने का होता है, बेचने का 12 महीना नहीं होता है, बट खाने के लिए, घर में खाने के लिए, सबके लिए होता है।
1: ये जो आम है, आम में तो अलग अलग किस्म है,
0: बहुत सारा वेरायटी है, मालदा हो गया, अमरपली हो गया, मलिका हो गया, दशहरा हो गया, और बहुत कुछ है, अभी नहीं बता पा रहे, इतना सारा बहुत सारा वेरायटी है हाँ। मैम मियाजाकी भी है, मियाजाकी जो बहुत महंगा आता है।
1: अच्छा
0: हाँ, वो तो 1 kg में ही 2.5 लाख रुपया जो विदेश में।
1: अच्छा,
0: तो इस बार हम लोग का फला था 10-12 गो मियाजाकी, तो टाटा स्टील की तरफ से ही बोल रहा था 1 पीस का 500 रुपया देगा, तो हम लोग बोले नहीं घर में ही खा के देखते हैं, तो इस बार नहीं बेचे।
1: अच्छा,
0: और ब्लैक जो ब्लैक आम होता है और जो दो बार फल देता है वो सब भी है, बहुत वेरायटी है मैम। जामुन में भी, जामुन में हम लोग का वो KG 10 है, व्हाइट वाला जामुन है, उसमें हम लोग का 2-3 गाछ है, पहले से उतना नहीं पता था, तो अभी फिर हम लोग लगाने शुरू किए हैं, जामुन तो कोई लगाता नहीं है हाँ, जामुन में हम लोग का मतलब शरीर में इतना फायदेमंद है, तो इस बार छोटा सा हम लोग का गाछ है, तो उसमें से हम लोग 2000 रुपया का बेचे हैं, छोटा सा गाछ है, ज्यादा बड़ा नहीं है।
1: अच्छा, देखा जाए तो आप पूरा मिश्रित बागवानी की हुई है
0: हाँ, जैसे हर सीजन में मतलब हर महीना कुछ ना कुछ निकल लेगा तो बढ़िया है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: सालों भर आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो इसमें आप किस तरह की खाद का उपयोग करती हैं?
0: खाद वो ओरिजिनल जो गोबर होता है बकरी का, गैया का, जो ये वाला गांव देहात वाला, जैसे कि ग्वाला वाला तो खाली वो ये खिलाते हैं पोवाल, उसमें उतना अच्छा नहीं होता है, जो हम लोग गांव देहात में गैया वाला, गाय बकरी वो सबका गोबर यूज करते हैं, सार वगैरह कम डालते हैं।
1: अच्छा, तो ये खाद भी आप खुद से तैयार करती हैं?
0: नहीं, वो खरीद के लाते हैं गांव देहात से
1: जी,
0: थोड़ा बहुत खुद का भी होता है घर में जो।
1: अच्छा
0: हाँ, गाय रखे हुए हैं
1: और इसकी सही देखभाल भी तो बहुत ही जरूरी है, आप जो लगाई हुई है।
0: हाँ हाँ, बहुत जरूरी है
1: जी,
0: वो तो सब दिन मेहनत करना नहीं है, अभी छोटा है तो 1-2 साल,
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उतना नहीं करना है, पानी भी मतलब उतना नहीं देना होता है, जैसे कि गर्मी के टाइम में 15 दिन में एक बार।
1: इनको कहीं बाजार में बेचती हैं या ग्राहक आपके घर ही पहुँचते हैं?
0: ग्राहक मेरा घर ही पहुँच जाते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, उन लोग ऑर्डर दे देता है, होता नहीं है।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है, तो देखा जाए तो आपका समय का भी बचत हो रहा है।
0: हाँ, समय का भी बचत हो रहा है
1: जी। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर लेडीज चाहेगी तो कर सकती है, जैसे मैं अकेले रहती हूँ, सब कुछ संभाल रही हूँ, खेती बाड़ी भी करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बच्चा लोगों को भी संभालती हूँ, और मेरे पास गाय भी है, मुर्गी है, बत्तख है, वो सबको भी मैं देखभाल करती हूँ, अगर लेडीज चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है
1: जी।
0: और मेहनत करने से तो शरीर भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: और बागवानी कीजिएगा तो अच्छा से मतलब खाने को भी अच्छा से मिलेगा, साग

0: जी भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। जैसे हम लोग का जमीन सब पड़ा रहता है, कोई करने नहीं खोजता है, लेकिन करने से बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल, इससे जो जमीन का उपयोग है वो भी सही तरह से हो जाएगा।
0: हाँ, वो भी सही तरह से हो जाएगा, बंजर नहीं रहेगा। हम लोग का यहाँ बहुत बंजर था, पूरा पत्थर मत्थर था, पूरा एकदम झड़ी उड़ी था। मतलब अभी जैसा है ना, पहले वैसा नहीं था, लेकिन इतना सुंदर अभी हम लोग बना लिए। अभी अच्छा लगता है घूमने के लिए भी, कहीं से आते हैं तो एकदम शांत, अच्छा मन को शांति मिल जाता है।
1: बिल्कुल, हम लोग भी आपके यहाँ देख चुके हैं, बहुत ही सौंदर्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: और अभी तो आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा करते जाएंगे। मतलब पूरा पार्क जैसा सब कुछ, सब वैरायटी रहेगा, हर महीना हर सीजन में निकलते रहेगा कुछ ना कुछ। बागवानी में आप घूमिएगा तो मतलब खाने को मिलेगा ही मिलेगा।
1: बिल्कुल, मिश्रित बागवानी से होने वाले लाभ, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए। इसके लिए हम आपका, पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
0: जोहार।
2: निन बेपटा जपगर जनम इलाउंडोमियन बारिय संदेश को वायुम लिया।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बीमा करें।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
2: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा का
4: बचाओ। जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
5: तिसिंगे चासकड़रिया का मिकुरिट को निंतारगे चबाव तना आयुम संगे कैंसर नाम चासगिया को अलेन डोबरो बुड़ियोली ओंडो
6: आश्रमनी गुप को दिशेविता
5: जोहार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है।

श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त है फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आइए श्रोताओं, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है पाकुड़ झारखंड से। और हमें खत लिखा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद ने। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल के मुन्ना भगत और गुटी भगत की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बेरेडी से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। बंसाई चायबासा के परमेश्वर कुमार, दयावंती देवी, नीलम कुमारी, रचना कुमारी, अमृता कुमारी, पंखुड़ी कुमारी, मीना कुमारी, शिवा खंडायत, शिवम खंडायत और सोनाली खंडायत की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। डोंडी लोहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ के देवशंकर तामोरिया, अजय, रोशनी, पूजा, तुसार और प्रभा देवी तामोरिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से हमें खत लिखा है नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोधरा, अर्जुन बोधरा और रवि बोधरा ने। ग्राम जामटी वरुण अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकर कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है मॉडल टाउन पानीपत से और हमें खत लिखा है संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा, आन्या, अनाया, नेहा सागर कुंभर, हिमांशु गुगलानी, इम्बुग्रेसी और सुधीर नूतन ने। आम कोंडरा रेंगाखार से हमें खत लिखा है राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम ने। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद के प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्रांजक्ता प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार श्रेया घोषाल और स्वरूप खां के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म पद्मावत से। इस गीत के बोल लिखे हैं AM तारुज ने और धुन है संजय लाल लीला भंसाली की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा के अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोमर और विक्रमजीत ग्रोवर। ग्राम खेरियागढ़ प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जयमनी और जयंती की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। ग्राम

अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाठी किशन लखविंदर संधु महावीर संधु और गुरुचरण ग्रोवर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कोर्ट रोड बागपत से हमें खत लिखा है यूसुफ आज़ाद, साहिल आज़ाद, अंजुम नाज और वसीला ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, पहला फरमाइशी गीत गायक कलाकार श्रेया घोषाल और स्वरूप खां के स्वरों में फिल्म पद्मावत से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म पद्मावत के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म सरबजीत से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार अमाल मलिक फीट अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की। इस गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराज और धुन है अमाल मलिक की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर पांधा गोलूका को और जे एस रामगढ़िया। महाराष्ट्र हिंगोली से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पुरानी भिलाई 3 चरौदा छत्तीसगढ़ से नौसाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीउद्दीन सिद्दीकी, जिसान अहमद सिद्दीकी, सहनवाज अहमद सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोगों ने। ग्राम अमलेश्वर से हमें खत लिखने वाले श्रोता है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सुरेश ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। चायबासा के आर के सिन्हा, दीपक ठाकुर, प्रकाश कुमार गुप्ता, सुशील मुंद्रा, रमेश दत्तानी, राजा राम गुप्ता, त्रिशानु रॉय, कैसर परवेज और सुनील प्रजापति की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। पुणे से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप राजनगर मधुबनी के सरदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। इस बाग पीली कॉलोनी लखनऊ से हमें खत लिखा मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और पंखुड़ी गुप्ता ने। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन के मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमें खत लिखा है बत्ता परिवार के मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। सरायकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर के शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरामणि मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कोसल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धिबोस, सोना बाबू सोना और FM सिवा मुंडरे की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र के नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार ने। आमला टोला चायबासा के गौरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। प्रयागराज से पीयूष प्रताप सिंह, स्नेहा सिंह, फट्टन सिंह और शिवनाथ सिंह की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप और अनिल शर्मा की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। कालका से सुपचंद बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। ग्राम सौगा मंगरलोड धमतरी छत्तीसगढ़ के मोहित कुमार चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और सावित्री देवी चंदन की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिवा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर और परवीन आजमा फकीर ने भी हमें खत लिखा है। बुलंदशहर से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता है वद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। फिल्म सरबजीत के इसी गीत के लिए एक और फरमाइश हमें प्राप्त हुई विलासपुर देवरी खुर्द से और हमें खत लिखा है संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह, गुड्डू भाई और रामदास ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा कुमारी, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवींची। ग्राम गेलिया लोहार के कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म सरबजीत से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म सरबजीत के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए लेते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी खत। और ये खत हमें लिखा है तालुका बुरहानपुर मोहद मध्य प्रदेश से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र के अरसद तड़वी, आरिस अरसलान और यूनिस तड़वी ने भी अपनी फरमाइश में भेजी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से हमें खत लिखा है मुशर्रफ खा तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, रोजमिन तड़वी, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सभी लोगों ने। लक्षनपुर से जीवनलाल रजक, सरोजनी रजक और रामजी साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बाबा कुटी रायगढ़ के शिव कुमार चौहान और संक्रांति चौहान, भड़गांव बलौदा बाजार के रामदुलार साहू और नीलिमा साहू ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है तोरी टोला चायबासा से। और हमें खत लिखा है मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, संगीता देवी, खुशी कुमारी, अर्पिता कुमारी, सुमित ठाकुर, लाडो और भोला रजक ने। बरेली कैंट रेलवे केविन के पास चनहेटी बरेली से हमें खत लिखा है विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान ने। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी के मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद की फरमाइश भी हमें मिली है। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमें खत लिखा है आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म मित शिवाय का ये गीत जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार मिथुन ने, बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और इस गीत को धुन दी है मिथुन ने ही। और इस गीत के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजी है ग्राम इचाहतु कुचाई के गुलाराम लोवादा, लुधरी, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी, बिंजाना और लोवादा परिवार के सभी लोगों ने। ग्राम लोसोदिकी के कोमल महतो प्रेमी गोविंद और जीतू साइमन ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। बोर्डसरा नैला से हमें खत लिखने वाले श्रोता है प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू ने। मेरी टोला चायबासा के विशाल कच्छप और दुलारी बिरुली ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। गाँव हंडीरा के मानताराम सिंह कुंटिया ने भी हमें खत लिखा है। फाजिलका पंजाब से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है विशुन खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, तिवानशी खेड़ा, सालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार के सभी लोग। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे और मेहराज रहा ने। टावर चौक गुमला के एसएम जावेद, सगुफ्ता अंजुम और जेनिस चोहरी ने भी अपनी फरमाइश में भेजी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, रमापुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी और आरएसपुरी ने भी हमें खत लिखा। मझगाँव से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अहमद हुसैन, शाह हुसैन, मजहर हुसैन, रहमत अली, अब्दुल्ला, आजम भाई, विरंची गोप और सपा गोप। बेरेडी के हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार और तनु कर्मकार की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कोटडा बहादुर जिला मानसौर के नेपाल डांगे, राहुल डांगे, पप्पू लाल और विके डांगे की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा सिमधर पार्क गुरम गांव गुजरात से। और हमें खत लिखा है अजीत प्रेमिला, भावेस्तानी भासार, हेतल कृष्णा और जैमिन भासार ने। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म शिवाय से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है जमशेदपुर से। और हमें खत लिखा है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया ने। जरूर वरुण महाराष्ट्र के, बाबा साहब बाड़ोदेव, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। खरसवा पतिसाई के सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और सोनवा गांव पोड़ाहट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। डबावली हरियाणा के जेके बाकोलिया, श्रीमती सुनीता बाकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बाकोलिया की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। भाटापाड़ा से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सोहन जोशी, हरविंदर चावला और पुणेंद्र लहरे। छत्रपति संभाजी नगर के राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीपति शीतल राजेश की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बागपत यूपी से हमें खत लिखा है एहसान अली ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी है गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चीर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने भी अपनी फरमाइश हमें इसी गीत के लिए भेजी। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है पीपरपारा पालचू मुंगेली के उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर के प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, अशोक श्याम कुंवर और दीपक श्याम कुंवर ने भी हमें खत लिखा। लालपुर मारो से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत और हमें खत लिखा है कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश, विनय ध्रुव, निम्मी, पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव ने। रेलवे कॉलोनी बटिंडा पंजाब के जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोगों की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा ग्राम हतनांग टोडांग टोला महाली साई से और हमें खत लिखा है बिरबल महली, सरस्वती महली, फूलवंती महली, शकुंतला महली, सुमांती महली और यशोदा महली ने। रामभाटा संजय मैदान रोड रायगढ़ के रोहित लक्ष्मी, ऋषभ लक्ष्मी, अंश लक्ष्मी, रानी दीपा लक्ष्मी, सुनीता लक्ष्मी और लक्ष्मी लक्ष्मी की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए ये आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म दूसरा आदमी से। आनंद लीजिए श्रोताओं आपके पसंद के इस गीत का।

फिल्म दूसरा आदमी के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत जो कि हमें लिखा है छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दत्तरिंगी से। और हमें खत लिखा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छविंद्र कुमार वर्मा ने। बड़का काना से अफजाल ताज और साहिल सुल्ताना ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। मुंबई से महेंद्र मोदी और राजा बाबू ने भी हमें खत लिखा। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है वसुंधरा कॉलोनी से इंटूला चायबासा से। और हमें खत लिखा है भोला राम मधुर, अंबर मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने। मोहल्डिया सोनवा झारखंड के नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। मेन रोड सोनवा झारखंड से हमें खत लिखा है गुरचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नीलपाणी प्रधान और नीकपाणी प्रधान ने। कार्यक्रम का ये अगला खत हमें मिला है हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और अर्जुन धीमान। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। चितलवाड़ी अकोला से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधिरा इंगले और इंगले परिवार के सभी लोग। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म सर से। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम बठेना पाटन से बलकरण अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम, चटौदा सारा गांव से सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा की फरमाइश भी इस गीत के लिए प्राप्त हुई। बड़वेल ओडिशा से हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है गांव कैरो पंजाब से। और हमें खत लिखा है गुरदूषण लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरशब्द ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडावा ग्राम लोहारी के रमेश, राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे की फरमाइश भी इसी गीत के लिए मिली। खुर्दी रोड मानपुर से हमें खत लिखा है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। मैं रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली आलिका डबावली से। और हमें खत लिखा बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी ने। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने भी हमें खत लिखा है। किशनगंज बिहार से अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु। खरसावा दलाई किला के लक्ष्मण सोए, आयुष सोए, सोनू हरजन, गीता सोए, सरिता सोए, सारिका सोए, हारिका सोए, तनुजा सोए, विमी सोए, मनीषा सोए, शीतल सोए और सिनेमाए सोए ने भी अपनी फरमाइश हमें भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म सर से। आनंद दीजिए श्रोताओं आपकी पसंद के इस गीत का।

श्रोताओं, गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में गाए हुए फिल्म सर के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीकंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीकंधा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का, तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। कहा, देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। इस सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब 73 करोड़ था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
2: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। जन सेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी माध्यम से
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ। खाना सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
4: इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन seeking the cooperation of the public in voluntary giving of cooking gas subsidies. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazards of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
3: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
5: पहले जब चूल्हा पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे पे एलर्जी हो जाती, अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
3: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व खेल वर्ष 2026 के एशियाई खेल में लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत, प्रधानमंत्री उपलब्धियां दिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
4: हमारी हॉकी की महिला और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम

0: दूसरी बार मैच जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग राजस्थान में भारत को मिली सफलता वाकई सुखद।
1: खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 रुपये पर बंद हुआ।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
3: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के होटल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार। 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव

0: सब्सिडी छोड़ने की मुहिम ने शहरियों में समाजी जिम्मेदारी के एहसास को फरोग दिया है और सभी लोगों को माहौलियात के लिए साजगार ईंधन फराहम करने की सरकार की कोशिशों को तकवीत बख्शी है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: आज शेयर बाजार में काफी तेजी रही। घरेलू हिस्स इशारिया जबरदस्त इजाफे के साथ बंद हुआ। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सेंसेक्स 1534 पॉइंट्स यानी 2.11% के इजाफे के साथ 74,316 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 375 पॉइंट्स यानी 1.66% इजाफे के साथ 22,997 पर बंद हुआ। नई दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
1: पाकिस्तान के शहर पिशावर में आज एक प्राइवेट स्कूल की छत मुनहदिम होने के वाके में 34 बच्चों और एक टीचर की मौत हो गई। पिशावर कैपिटल सिटी पुलिस के सरबराह मियां सईद ने कहा है कि ये वाकया शहर के अंदरूनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाके दीर कॉलोनी में पेश आया। अल खैर स्कूल की छत जिस वक्त मुनहदिम हुई उस वक्त ऊपरी मंजिल पर वाके क्लास रूम्स में 30 तालिबे इल्म मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि 3 मंजिला इमारत की छत सही तौर पर तामीर नहीं की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत खेलों का एक आलमी पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने एशियन गेम्स के फातिहीन की सताइश की और कहा कि उन्होंने तिरंगे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों से जोश इस्तिक्लाल और यकीन की अक्कासी होती है।
3: साथियों इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
1: एशियन गेम्स में तारीखी संग मील को याद करते हुए वजीर आजम ने मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों की जानिब से सोने का तमगा जीतने का जश्न मनाया। खवातीन हॉकी टीम की जीत से 44 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नौजवानों की उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खटसे के अलावा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा भी इस मौके पर मौजूद थीं। जापान के आईची नागोया में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मजहब से इस्लाम या किसी दूसरे गैर हिंदू मजाहिब में तब्दील होने वाले अफराद खुदकार तौर पर पसमानदा तबकात के जुमरे में रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि किसी शख्स को उसकी साबिका जात की बुनियाद पर हासिल समाजी पसमानदगी का फायदा मजहब तब्दील करने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फेरिस्ट की खसूसी जाम नजर सानी में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फेरिस्ट से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए G-SAT-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: नमस्कार श्रोताओं, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जिसे हिंदी में कहें न्यूनतम समर्थन मूल्य बारे में वो इससे पूरी तरह से परिचित ही हैं कि जो खेतों में फसल की पैदावार होती है जब वो पूरी तरह से फसल बनकर तैयार होती है तो उसका एक मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है जिससे किसानों की आमदनी सुनिश्चित हटाकर कई महत्वपूर्ण अन्य फसलों पर भी फोकस करते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी की गारंटी दी है और इससे देश भर तो वो बढ़ा है, खासतौर पर तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पर अन्य फसलों पर और फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर सरकार लगातार फोकस कर रही है, वो कैसे हमारे देश में खेती के एक नए प्रारूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण है। और हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों को लेकर विभिन्न फसलों में एमएसपी की घोषणा की है उस पर भी आज हम विस्तार से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: हम कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के हाल ही में जो रबी फसलों को लेकर एमएसपी को लेकर घोषणा हुई है, मंजूरी हुई है, उस पर ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा जैसे दो बड़ी महत्वपूर्ण फसलें की हम चर्चा करें जिस पर की है, एक तो सैफलावर जिसे कुसुम कहते हैं हम, इसमें प्रति क्विंटल 675 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और इसी तरह से सरसों पर भी 413 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। तो इतनी अच्छी बढ़ोतरी सैफलावर और सरसों जैसी फसलों को लेकर सरकार ने दी है, आप कैसे देखते हैं इस मंजूरी को और खासतौर पर जो हमारे देश में फसलों के डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को लेकर ये किस तरह से अहम फैसला है?
2: हर साल भारत सरकार की फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और जूट और कोपरा की भी एमएसपी अनाउंस होती है और उसके बाद से जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है जो खरीदारी करती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं जो अनाज और मोटे अनाज है उसकी खरीदारी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है और इसमें राज्य की एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती है और दलहन और तिलहन की खरीदारी एक हमारी स्कीम है पीएम आशा स्कीम, उसके अंतर्गत किया जाता है और इसमें खरीदारी करने वाली एजेंसी है वो नैफेड और एनसीसीएफ है और हर साल इन सारी खरीदारी से जो किसान के खाते में भुगतान होता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है और उससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित होते हैं। अभी 30 सितंबर को 6 रबी की फसलों की एमएसपी अनाउंस हुई है, मैं उसका डिटेल बता देता हूँ जिसमें गेहूं की एमएसपी अब 2610 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 25 रुपए ज्यादा है। बार्ली जौ इसकी एमएसपी अब 2286 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 136 रुपए ज्यादा है। ग्राम चना इसकी एमएसपी अब 5958 रुपए कर दी गई है जिसमें पिछले साल की तुलना में 83 रुपए की वृद्धि की गई है। मसूर की एमएसपी अब 7390 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 390 रुपए ज्यादा है। मस्टर्ड सरसों इसकी एमएसपी अब 6113 ज्यादा है और सफलावर कुसुम की एमएसपी अब 7215 रुपए कर दी गई है जो पिछले साल की तुलना में 675 रुपए ज्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो दलहन और तिलहन की एमएसपी है वो ज्यादा रखी गई है तो इससे जो विविधीकरण जैसा आपने जिक्र किया डाइवर्सिफिकेशन में को प्रोत्साहित करने में काफी मदद मिलेगी।
1: तो आपने जैसा कि विभिन्न फसलों के बारे में बताया कि किन किन फसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की है तो कहीं अगर देश में बढ़े और जो हम आयात पर हमारी निर्भरता है वो हमारी कम हो, मसूर की दाल का आपने जिक्र किया 390 रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार और अगर हम देखें तो मसूर की दाल पर अब एमएसपी 92% तक एमएसपी का लाभ किसानों को मिल रहा है यानी जो हमारा 50% तक से ज्यादा का लक्ष्य था उससे लगभग 42% ये ज्यादा है। कैसे आप देखते हैं कि अब दालों की अपनी आत्मनिर्भरता को हम और मजबूत कर रहे हैं और किसान भी इसमें रुझान दिखा रहे हैं उत्पादन में, कितना ये जरूरी है?
2: देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पल्सेज हैं दाल हैं उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी हमारे देश में ही होता है।
1: बिल्कुल।
2: सबसे ज्यादा खपत भी हमारे देश में ही होता है।
1: बिल्कुल। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा साधन दाल है और खासतौर पर एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है।
2: और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट भी हम ही लोग करते हैं। एमएसपी का अधिक रखना दालों का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिलता है, इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे किसान अधिक से अधिक दलहन की उत्पादन करें। और जिसके अंतर्गत जो तीन तूर उड़द और मसूर है इसकी खरीदारी अब 100% भारत सरकार करेगी, नेफेड करेगी। तो इन सारे बढ़ी हुई एमएसपी और जो दलहन मिशन है इससे पल्सेज को प्रमोट करने में काफी मदद मिलती है और इससे हमें उम्मीद है कि किसान भाई भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारा देश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा और किसान को भी अपनी फसल का उचित लाभ मिलेगा।
1: क्योंकि गेहूं जो ऐसी फसल है भारत की, हमारी कहें तो भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है। और आप किसानों को गेहूं की जो लागत है उसका रिटर्न अगर हम देखें तो 106% के आसपास अब मिल रहा है
2: जी।
1: तो गेहूं किस तरह से भारत की खाद्य सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आधार है और सरकार के जो प्रोत्साहन लगातार है किसानों को लेकर, एक पारदर्शिता है, उससे देश की खाद्य सुरक्षा और कैसे मजबूत हो रही है?
2: जैसा आपने बताया कि जो गेहूं और चावल है इस साल जो मार्जिन रखा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वो 106% का, जैसा अभी आपने बताया, और पिछले साल भी आप देखें तो 109% का इसमें मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन रखा गया था। तो लगातार सरकार वीट को भी प्राथमिकता दे रही है और उसको अधिक से अधिक इसमें किसान भाई को हमारा लाभ मिले उसका भी प्रयास रहता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। इस प्रोत्साहन का असर ये है कि पिछले साल 2025-26 में जो हमारी खरीदारी हुई है 350 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हुई है
1: जी,
2: और उसके पिछले साल 2024-25 में लगभग 300 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी। और इसकी वजह से जो हमें फूड मिनिस्ट्री ने बताया है कि 1 अगस्त 2026 तक जो हमारा गेहूं का स्टॉक था वो 505 लाख मैट्रिक टन पे जो एमएसपी अनाउंस हुई है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उससे उसका उत्पादन कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे देश की फूड सिक्योरिटी श्योर हो रही है।
1: बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा पब्लिक फूड मिशन,
2: बिल्कुल,
1: अब हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे चने और जौ की फसलों पर बढ़ी एमएसपी को लेकर, क्योंकि सरकार का भी फोकस है जो जौ की अगर हम बात करें तो 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और चने में 83 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, जो कि हमारे खाने पीने में बड़े महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में इनका इस्तेमाल होता है, तो इनकी मांग को और किसान भी इन फसलों को लेकर, उपजाने को लेकर प्रोत्साहित हो, कितना जरूरी है इन फसलों पर एमएसपी का बढ़ना?
2: देखिए, मतलब जैसा आपने बताया भी और सरकार दलहन को प्रोत्साहित तो कर ही रही है, उसके अलावा जो फसलें जिसका उत्पादन कम होता है उसको भी एमएसपी के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। जैसे दलहन के लिए अभी मैंने बताया कि दलहन मिशन चल रहा है और उसकी एमएसपी भी अधिक रखी गई है बाकी फसलों की तुलना में। इसकी वजह से जैसे आपने चने का जिक्र किया, इससे प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है। मैं जस्ट आपको आंकड़े बताऊं, 2024-25 में जो चने का प्रोडक्शन 111 लाख मैट्रिक टन हुआ था जो 2025-26 में बढ़कर 125 लाख मैट्रिक टन हो गया है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, एमएसपी अनाउंस होती है जो, और प्रोत्साहन की हमारी स्कीम्स होती है, बढ़ाने में निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर उसका असर पड़ रहा है। जैसे आपने बार्ली का जिक्र किया, तो बार्ली में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है देश में उतना उत्पादन नहीं होता है
1: जी।
2: हमारी इम्पोर्ट पे निर्भरता है और इस निर्भरता को कम करने का एकमात्र माध्यम यह है कि आप अधिक से अधिक उस फसल को प्रोत्साहित करें। इसी क्रम में बार्ली का एमएसपी 136 रुपए बढ़ाया गया है जो 58% मार्जिन के साथ फिक्स किया गया है।
1: जब हम एमएसपी की बात करते हैं तो हमें 2018-19 का केंद्रीय बजट की सरकार की वो प्रतिबद्धता याद आती है, जब सरकार ने यह तय किया था कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो फसलों का 1.5 गुना स्वीकृत मंजूर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। तो सरकार की जो ये प्रतिबद्धता थी और उसको लगातार सरकार ने पूरा भी किया है, आप कैसे देखते हैं सरकार की इस कमिटमेंट को? और जिस तरह से हमेशा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों में हमने देखा है कि समय समय पर एमएसपी को लेकर बढ़ोतरी की जाती रही है समय की मांग के हिसाब से, और साथ में जो किसानों की आय है उसको लेकर कैसे इससे स्टेबिलिटी आई है, स्थायित्व आया है कि लगातार किसानों को उनकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है उसको न सिर्फ बरकरार रखा गया है बल्कि बढ़ाया भी गया है।
2: जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था 2018-19 में, 1 फरवरी 2018 को अनाउंसमेंट हुआ था कि एमएसपी अब जो फिक्स होगी वो कम से कम लागत मूल्य पर 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स होगी। उसके बाद से जितनी एमएसपी फिक्स हुई है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ ही फिक्स की गई है। मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी का काफी जिक्र होता है, उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि भाई जो एमएसपी फिक्स होती है वो लागत मूल्य पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ होनी चाहिए, तो उसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है और इससे आप देख सकते हैं कि लगातार उसके बाद से एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है और प्रोक्योरमेंट खरीदारी भी बढ़ी है, तो उसमें भी काफी वृद्धि हुई है। इससे किसान की इनकम को बढ़ाने में काफी मदद मिली है।
1: बिल्कुल। और जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये फैसले आए हैं रबी फसलों को लेकर, तो जैसे किसान अपनी हमेशा योजना तैयार करते हैं कि कौन सी फसल की बुआई करनी है, तो अब रबी फसलों को लेकर ये कितने प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में किसानों को कितनी सहायता होती है ऐसे निर्णयों से कि अब रबी फसलों की बुआई से पहले वो अपनी योजना बना सके।
2: भारत सरकार हर साल 4 बार एमएसपी अनाउंस करती है, एक खरीफ की, दूसरी रबी की, उसके बाद कोपरा और जूट की एमएसपी अनाउंस होती है। जो एमएसपी अनाउंस होती है उस सीजन से पहले की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि खरीफ की एमएसपी इस साल मई में अनाउंस हो गई थी, खरीफ सीजन से पहले। रबी की एमएसपी 30 सितंबर को अनाउंस हो गई है। हम सबको पता है कि 1 अक्टूबर से रबी स्टार्ट होता है, तो एमएसपी जो सरकार अनाउंस करती है वो सीजन स्टार्ट होने से पहले करती है। इससे क्या होता है कि किसान भाई हमारे अपने फसल के बारे में सही फैसला ले पाते हैं कि किस फसल को हम ज्यादा प्राथमिकता दें, किसी को कम दें, किसको प्राथमिकता देने से उनको अधिक लाभ मिलेगा। इससे किसान को लेने
1: में करें तो जो हमारा कंज्यूमर मार्केट है उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो खाद्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर लगातार उतार चढ़ाव होते हैं। हो सकता है कभी कभार महंगाई की वजह से या दूसरी कई वजहों से, चाहे वो आटा हो, दाल हो, लेकिन ये कितना जरूरी है कि किसानों को पहले ही उसकी गारंटी मिल जाए उसकी फसल की। जैसे गेहूं को लेकर ही हम अगर उदाहरण लें तो गेहूं की 25 रुपए की प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में किसान किस तरह से आश्वस्त रहता है अपनी फसल के उत्पादन को लेकर एमएसपी की वजह से कि उसको उसके फसल का मूल्य पहले ही मिल रहा है, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सकें।
2: जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस हो जाता है, उसमें किसान अपनी फसल के बारे में उचित फैसला पहले ही कर लेते हैं। जहां तक गेहूं का आपने जिक्र किया है, तो गेहूं का प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है और इससे इसमें हमारी खरीदारी भी काफी बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो किसान को अपनी फसल का, खासकर गेहूं का, उचित मूल्य भी इनको मिल रहा है और फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो रही है। और एक और चीज आपने पूछा कि इससे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी अनाउंस होती है मार्केट में एक बेंचमार्क प्राइस फिक्स हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: उससे क्या होता है कि आप देखेंगे इन सारी जो एमएसपी की फसलें हैं उनका मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास ही रहता है। अभी हम लोगों ने गेहूं और मैं पैडी की बात करूं, उसमें धान की बात करूं, इसका पिछले 10 साल का हम लोगों ने डेटा को एनालाइज किया था और हम लोगों ने देखा कि जो एमएसपी है उसी के आसपास ही उसका मार्केट प्राइस भी है। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग सेम है। तो इससे क्या होता है जो एमएसपी अनाउंस होती है और खास करके गेहूं और धान की, इसमें मार्केट प्राइस भी स्टेबलाइज होता है।
1: अब सरकार का जैसे कि आपने भी बताया कि ध्यान फसलों के डाइवर्सिफिकेशन पर है, गेहूं चावल के अलावा तिलहन दलहन जैसी फसलों को लेकर एमएसपी पर सरकार का ध्यान है और उनके प्रोडक्शन और उनके प्रोत्साहन पर सरकार फोकस कर रही है। तो हमारे देश में जो एक क्रॉप साइकिल है या हिंदी में कहें फसल चक्र है या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा क्षमता है, तो उसकी बेहतरी के लिए कितना जरूरी है कि जो दूसरी फसलें हैं उनकी तरफ किसान रुख करें और एक वैकल्पिक फसलों के तौर पर अपने खेतों में उनको उपजाएं, तो कितना जरूरी है तिलहन दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को लेकर ये प्रोत्साहन?
2: निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है कि आप अपने खेत में एक ही फसल को आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, उसका असर उसकी जमीन की उर्वरता पे भी पड़ता है, वहां पर फर्टिलिटी भी काफी डिस्टर्ब होती है। हमारे देश में नेचुरली बन रहा है। आप देख लें कि गेहूं और धान के अलावा जो एमएसपी बढ़ रही है हमारी दलहन और तिलहन की, इससे किसान भाई को प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो दलहन तिलहन की खेती भी वो ज्यादा से ज्यादा करें और वो कर भी रहे हैं। और इन दो फसलों दलहन और तिलहन की हमारी इम्पोर्ट पर निर्भरता भी है। इससे क्या होता है कि जो अभी आपने जिक्र किया कि उसकी फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो जब अलग अलग फसल हमारे किसान भाई ग्रो करेंगे तो निश्चित तौर पे एक बैलेंस बना रहेगा। तो बार बार अपना एक जिक्र होता है कि भाई उसका ऐसा कुछ ना हो कि ऐसी फसल ही आप ग्रो करते जाएं कि उसकी फर्टिलिटी ही बिल्कुल खराब हो जाए। तो जब इस चक्र बना रहेगा तो फर्टिलिटी भी उसकी बैलेंस रहेगी।
1: अगर हम जो सरकारी खरीद की बात करें गेहूं की फसल को खासतौर पर अगर हम लें, तो हमारे पास बड़े बेहतरीन आंकड़े हैं। जैसे 2004 से 14 के बीच में अगर गेहूं की सरकारी खरीद को हम देखें तो ये जो लगभग पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 50% से ज्यादा है। तो आप कैसे देखते हैं कि जो सरकारी खरीद बढ़ती है जब किसी फसल की, तो उसमें सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जाता है खासतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उसकी बढ़ोतरी का वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है?
2: देखिए, अभी आपने जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में खरीदारी में क्या असर पड़ा, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में गेहूं की खरीदारी 14 से 26 के बीच में बढ़कर के 37 करोड़ 15 लाख मैट्रिक टन हो गया है। दलहन की बात करें तो 4 से 14 के बीच में 6,29,000 मैट्रिक टन था, जो बढ़ करके 2,20,00,000 मैट्रिक टन हो गया है। 35 गुने की वृद्धि हुई है। इससे आप साफ दे सकते हैं कि जो खरीदारी है हमारी दलहन की पिछले 10 सालों में काफी बढ़ गई है।
1: बिल्कुल।
2: और तिलहन की बात करें तो 2004 से 14 के बीच में 47,75,000 मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी और 14 से 26 के बीच में 1,58,00,000 मैट्रिक टन की हुई है। 3.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो तिलहन का में भी खरीदारी हमारी काफी हुई है। तो इन दोनों फसलों को, दलहन और तिलहन को, हमारी एमएसपी के माध्यम से काफी बढ़ावा मिल रहा है और खरीदारी भी हो रही है।
1: बिल्कुल। तो अगर किसानों के फसलों के उपजाने के को लेकर उनके कॉन्फिडेंस को देखें तो वो कितना बढ़ा है इससे, क्योंकि आपने जैसा कि आंकड़े शेयर किए, और जब आंकड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों उसका तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अब किसानों का इन अलग अलग तरह की फसलों को उपजाने में?
2: देखिए, इसमें कुछ आंकड़े जो अभी आपके पास हमने रखे दलहन और तिलहन की, तो काफी खरीदारी, इससे साफ साफ दिख रहा है कि इन फसलों की तरफ हमारे किसान भाई का झुकाव भी हो रहा है और इसकी सरकार खरीदारी भी कर रही है। जहां तक विश्वास की बात करें तो मेरा अपना मानना है कि एमएसपी अनाउंसमेंट की प्रतीक्षा किसान भी करते हैं और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि वो सीजन शुरू होने से पहले ही अनाउंस कर दें, जिससे किसान को हमारी एमएसपी के बारे में जानकारी रहे और अपने फसलों के बारे में सही वो डिसीजन ले सकें। निश्चित तौर पे किसान का भरोसा तो एमएसपी पर है और प्रिक्वायरमेंट भी काफी हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ रहा है।
1: तो अगर हम किसानों के आर्थिक लाभ की बात कर ही रहे हैं तो गेहूं किसानों की अगर मैं बात करूं, आपने भी एक आंकड़ा शेयर किया था कि कैसे 5,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक इजाफा हुआ है किसानों, गेहूं किसानों की जो एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है और उसका आर्थिक लाभ जो किसानों को मिला है, तो आंकड़ा ये है कि 256,00,000 करोड़ रुपए से लेकर ये बढ़कर 731,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में, यानी हम कहें तो दोगुने से भी ज्यादा का एक आर्थिक लाभ किसानों को सीधा मिला है, ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा आंकड़ा है?
2: जो दो आंकड़े आपने रखे हैं, इनफैक्ट पहला आंकड़ा आपने 2004 से 14 के बीच का था और दूसरा आंकड़ा 2014 से 26 के बीच का था, तो इसमें जो वृद्धि हुई है जो मैं देख पा रहा हूँ वो तीन गुने की वृद्धि हुई है। तो तीन गुना लाभ हमारे किसान को मिला है और ये उनके अकाउंट में गया है, तो उनकी इनकम को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। इसी संदर्भ में मैं आपको दो और आंकड़े बताना चाहूंगा कि 2004 से 14 के बीच में और दलहन खरीदारी में 1900 करोड़ रुपए का भुगतान किसान के खाते में हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में देखें तो 1,25,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और ये 65 गुने ज्यादा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दलहन की जो खरीदारी हुई वो भी ज्यादा हुई है और क्योंकि एमएसपी लगातार बढ़ रही है इसलिए उसका लाभ भी हमारे किसान भाई को अच्छा मिल रहा है। इसी संदर्भ में मैं तिलहन का जिक्र करूं,
1: बिल्कुल,
2: तो 2004 से 14 के बीच में 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसान भाई को हुआ था और वहीं 14 से 26 के बीच में 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, तो 9.3 गुने की वृद्धि हुई है। तो ये सारे जो भुगतान हो रहे हैं इससे किसान को लाभ मिल रहा है और उससे किसान की इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है।
1: बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर गेहूं चावल ये गेहूं के अलावा जो छह बड़ी रबी फसलें हैं इनमें भी आंकड़े को हम देखें तो 265 लाख से बढ़कर 831 लाख का ये हमारे पास आंकड़ा है। ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं ये किस तरह से आप इन्हें देखते हैं और कैसे जो एक पूरा तंत्र है कृषि तंत्र उसमें जो खासतौर पर ये बात सरकार की ओर से कही जाती रही है कि किसानों को जो आर्थिक आय है या उनका जो इनकम है उसमें किसानों को प्रोत्साहन मिले और लगातार उसमें बढ़ोतरी हो, तो किस तरह से ये पूरा होता हुआ दिख रहा है और इसमें लगातार प्रक्रिया जारी है?
2: जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके दो बिंदु हैं जिसके जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो 2018-19 में जब अनाउंसमेंट हुआ था बजट में कि एमएसपी कम से कम 50%, अभी भी 50% कप तो फिक्स हुई नहीं है। इससे क्या होता है, एमएसपी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले क्या था कि कुछ फसलों की 2018-19 से पहले की बात करें तो कुछ फसलों की एमएसपी जो फिक्स होती थी वो लागत मूल्य पर 50% नहीं मिलता था। एमएसपी में एक तो लगातार वृद्धि हो रही है और जो खरीदारी हो रही है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। ये सारे जो अमाउंट पैसा जा रहा है अकाउंट हमारे किसान के खाते में जा रहा है पहले। अब आप एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ।
1: बिल्कुल,
2: अभी जो एमएसपी का पैसा है वो किसान के खाते में जा रहा है, वो आधार से लिंक किया हुआ है,
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के,
2: हाँ, डीबीटी के थ्रू जा रहा है। तो इसमें अब बिल्कुल किसान को डायरेक्टली उसका फायदा मिल रहा है। तो इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार हुआ है।
1: एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं की समझ के लिए, जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उसका तय करने का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इसका आधार यही है कि जैसे किसानों की लगातार बढ़ती हुई बीज की, खाद की, मशीनरी की या जो मजदूरी या श्रम की लागत है वो जैसे जैसे बढ़ती है तो किसानों को उसी तरह से उस आधार पर उसका लाभ दिया जाता है, तो कैसे तय होता है?
2: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये अभी हम लोगों ने काफी जिक्र की फिक्स जाती है, तो जो लागत मूल्य है उसमें जो उसके कंपोनेंट है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो किसान उस फसल को उगाने में जो भी खर्च करता है वो सारे खर्च इसमें जोड़े जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो लेबर हायर किया किसान ने, जितना खर्च किया उस फसल को उगाने में उसको काउंट किया जाता है। यदि दिया हुआ है उसका भी इम्प्यूटेड वैल्यू जो अपना लेबर कॉस्ट है वो भी ऐड किया जाता है। यदि मशीनरी किसान ने हायर किया है उसका खर्चा भी ऐड होता है। यदि मशीनरी खुद की है तो उसका खर्चा भी उसमें ऐड होता है। और सीड्स पे जो खर्च हो रहा है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में जो खर्च हो रहा है, फर्टिलाइजर पे खर्च हो रहा है, ये सारे खर्चे उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़े जाते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई किसान जमीन लीज पे लिया हुआ है,
1: जी जी,
2: तो उसका खर्चा बहुत आता है।
1: बिल्कुल,
2: तो यदि कोई किसान लीज पर लेकर खेती कर रहा है तो उसमें जो लीज का कॉस्ट होता है वो भी उसमें ऐड किया जाता है, और इरिगेशन है, बाकी जो कंपोनेंट मैंने बताया वो तो सारे खर्चे जोड़े ही जाते हैं इसमें।
1: और जैसे जो छोटे और सीमांत किसान है, क्योंकि अगर किसी के पास बड़ी जमीन है तो उसमें से तो अगर ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो उसका एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, लेकिन जो खासतौर पर छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनको अगर एमएसपी मिलता है तो उनके लिए कितनी बड़ी गारंटी होती है, कैसे उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन होता है?
2: मैं थोड़ी प्रक्रिया और बिल्कुल बता देता हूँ।
1: बिल्कुल,
2: कि जो हम लोग इसका आंकड़ा इकट्ठा होता है इसमें हम लोग गांव में जो प्लॉट्स होते हैं तो उसमें तीन कैटेगरी में प्लॉट्स डिवाइडेड होते हैं जिससे कि डेटा इकट्ठा होता है। पहला कैटेगरी है कि एक हेक्टेयर से कम वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, एक से दो हेक्टेयर वाले प्लॉट कौन कौन से हैं, और दो हेक्टेयर से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं। तो जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो तीनों कैटेगरी से होते हैं। तो इसमें जो एक हेक्टेयर से कम वाले जो कैटेगरी है इसमें हमारे छोटे किसान में जो खर्च हो रहे हैं वो सारे उसमें काउंट हो जाते हैं। और जो एमएसपी है उसका लाभ हर किसान लेता ही है, जैसा कि आपको हम सबको मालूम है।
1: बिल्कुल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब खेती का तरीका है वो एक तकनीकी तौर पर अब अलग होता जा रहा है, उन्नत और स्मार्ट खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर हमें खेती में बहुत सारे उपकरणों की भी जरूरत होती है, तो किसान अपनी लागत को पूरा कर सके, उपकरणों के खर्च को पूरा कर सके, ऐसे में लगातार जो उनको प्रोत्साहन है वो एमएसपी के जरिए बढ़ोतरी के रूप में दिया जाता रहा है, वो भी क्या इनमें जोड़ा जाता है उनके खर्च को भी?
2: जैसा कि मैंने बताया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसान जो भी खर्च करते हैं वो सारा कॉस्ट उसमें जोड़ा जाता है। अभी आपने मशीनरी का जिक्र किया, मान ली कि आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, आप उसको हायर करते हैं मार्केट से,
1: बिल्कुल,
2: तो जो आपका हायरिंग कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। मान ली आपके खुद का मशीनरी है, उसको आप यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू भी उसमें ऐड किया जाता है। तो जो भी मशीनरी हमारा किसान यूज करते हैं उसका खर्च इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडेड रहता है।
1: तो अब कार्यक्रम में हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, आखिर में हम आपसे यही समझना चाहेंगे अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए, जैसे ये फैसला रहा इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का और समय समय पर केंद्रीय कैबिनेट के फसलों के एमएसपी को लेकर फैसले भी आते रहते हैं, कैसे हमारे देश का जो बफर स्टॉक है वो बिल्कुल स्थिर रहे, बढ़ोतरी होती रहे उसमें, और साथ में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती रहे, किसानों की आय भी लगातार बढ़ती रहे, इन तीनों कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से एमएसपी की का ये प्रोत्साहन कितना जरूरी है और सरकार इस ओर कितना ध्यान दे रही है?
2: देखिए, इसमें जहां तक फूड सिक्योरिटी की बात है, इसमें गेहूं और धान में तो हमें कोई इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
1: उसमें तो आत्मनिर्भर हैं हम पूरी तरह से,
2: और जिसमें हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है दलहन और तिलहन में, उसमें भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एमएसपी में भी लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें जो भुगतान हुआ है वो भी काफी ज्यादा हुआ है, और हमारे पल्सेज मिशन भी चल रहे हैं और तिलहन मिशन भी चल रहे हैं, इनके माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे मुझे प्राथमिकता देंगे, इसको अधिक से अधिक इसका उत्पादन करेंगे और बढ़ी हुई एमएसपी का उनका लाभ मिलेगा, जिससे उनका इनकम बढ़ाने में भी काफी मदद मिलेगी और देश को भी इन फसलों पे आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े, और केंद्रीय कैबिनेट का जो हाल ही में रबी की फसलों को लेकर एमएसपी की जो मंजूरी है और साथ में किस तरह से लगातार किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोत्साहन और बढ़ोतरी के रूप में सरकार द्वारा विभिन्न फसलों पर दिया जाता रहा है और उसमें लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है, इस पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस चर्चा हमसे
0: रबी फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एमएसपी के अपर महानिदेशक डीपी श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है गजलों के कार्यक्रम महफिल का, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक ही फनकार गुलाम अली के स्वर से सजी चंद चुनिंदा गजलें। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस गजल के साथ।

आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं गज़लों के कार्यक्रम महफिल का। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फनकार गुलाम अली को।

फनकार गुलाम अली के स्वर में गाई हुई इस गजल के साथ ही हमारा आज का ये गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल, यह आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। आइए श्रोताओं, करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। गायक कलाकार लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

गायक कलाकार भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म सितारा से। आकाशवाणी चायबासा से आप इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में फिल्म शक्ति से।

फिल्म शक्ति के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गायक कलाकार शब्बीर कुमार और रणराधा पौडवाल के युगल स्वरों में फिल्म तेरी मेहरबानियां से।

फिल्म तेरी मेहरबानी की इस गीत के बाद श्रोताओं हमारे स्टूडियो की घड़ी ने अभी इशारा कर दिया है कि कार्यक्रम सुरों के रंग से विदा लेने का वक्त हो चला है, तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग।

एफएम के 101.7 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ ही देर में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राथमिक 50 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी

0: नई ताकत मिलेगी।
1: ये 4,000 करोड़ से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अंबारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करने का निर्देश दिया है। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वालों के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने जाने और अनियमितताओं के आरोप को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। निर्वाचन आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर करने का निर्देश दिया है। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू की हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी नेहा यादव ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की कि वे ऐसे किसी भी भीड़ में शामिल न हो जो धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क अगले 2 दिनों तक बंद रहेगा। महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation 5 major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
0: Ladakh ki pragati aur vikas mein ek aur adhyay jud raha hai. आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
2: The Prime Minister said a center of excellence is being established in Leh to provide quality education and technology training to youth of Ladakh. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varun Astra heavyweight